0: क्या रहा, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन। खूबसूरत दिन तो नहीं है, खूबसूरत मौसम कह सकता हूँ, बारिश हो रही है बाहर, बट अगेन डिपेंड्स कि आप इस चीज को कैसे लेते हैं। आज वेडनेसडे है, हफ्ता बीच में है, फ्राइडे भी नहीं है कि ताकि आप एंजॉय कर सके। बढ़िया, इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग डे एज वेल। व्हाई? बिकॉज ऑफ कोर्स आपने ट्यून इन कर लिया होगा डेफिनेटली, और आप मेरा शो सुन रहे हैं हम 104.2 एफएम के जरिए, जहां पे हम चलाते हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने। वेल यस, और भी चीजें यहाँ होगी, और भी चीजें शेयर करेंगे हम यहाँ पे, आप बस कहीं मत जाइए, आप बस बने रहिए, बिकॉज थोड़ी देर में होम सिक रेमेडीज के लिए मैसेज में पढ़ूंगा, आप जल्दी से फोन उठाइए और मुझे भेज दीजिए कौन सी ऐसी चीज है जो आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं आज के दिन, या फिर अभी, या फिर यूजली। सो यस, 555 इज द नंबर। और एक्चुअली कॉल कर, इस बार कॉल करने का मौका देता हूँ मैं, लेकिन थोड़ी देर में आप कॉल करिए मुझे। ये गाने चलाता हूँ पहले, तो सबसे पहले सिंग इज ब्लैंक रैप बादशाह फीचरिंग अक्षय कुमार, और उसके साथ दासता है ये वाला गाना। उसके बाद हम होमसिक रेमेडीज के लिए आपके लिए फोन लाइन ऑन करेंगे, तो यस लेट्स सी कौन मुझे फोन करता है और कौन मुझे कुछ ऐसी बातें बताते जो सच में आप मिस करते हैं। बट यस, ओवरऑल द डे गोना बी सो अमेजिंग। फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है, और काफी अलग स्पोर्ट्स भी चल रहे हैं, तो उनके सारी बातें होगी, बॉलीवुड की भी यहाँ पे बातें होती रहेगी। बट यस, डू फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया एज वेल, क्योंकि वहां पे मैं आर्टिकल्स भी डालता हूँ रोवा ऐप के जरिए, उसे भी चेकआउट करिएगा।
1: बचाओ क्या,

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। और यस, होम सिक रेमेडीज के लिए फोन लाइन हो चुकी शुरू, और आप मुझे कॉल करिए 0800-004-866 पे। क्या बात है, कॉल फट से आ भी गया। हेलो
1: हेलो,
0: यस वेलकम टू हम। किससे बात हो रही है?
1: इट्स अ सरप्राइज।
0: सरप्राइज,
1: दिस इज मी आयुष दिस साइड।
0: ओह, तो सरप्राइज इतना जल्दी कैसे खोल दिया?
1: अरे यार, मैंने कहा चलो आज आपको कॉल करते हैं। केतन भाई, आपका शो सुन रहा था मैं।
0: अरे क्या बात है,
1: एंड इट्स रियली अमेजिंग, एंड इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्चुअली। तो आप अभी डिस्कस कर रहे हो रिगार्डिंग होम रेमेडीज एंड ऑल।
0: हां हां, तो व्हाट डू यू थिंक?
1: आई वाज लाइक, ओह इट्स एक्चुअली ग्रेट यार। आई रियली रियली मिस कपल ऑफ होम रेमेडीज जो मेरी मम घर पे बनाती थी।
0: uh-huh.
1: और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा, एंड आई वाज लाइक कि नहीं, डेफिनेटली आई विल गिव अ कॉल एंड आई विल शेयर द सेम थिंग विद अदर पीपल एज वेल, ताकि उनको बेनिफिट मिल सके।
0: अरे क्या बात है।
1: तो जैसे नॉर्मली काफी ऑफ्टन, इनफैक्ट यंगस्टर्स में आजकल काफी ऑफ्टन होता है कि पीपल हैव कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल दीज बाउल प्रॉब्लम्स, राइट?
0: राइट।
1: तो मेरी एक मम्मी की ना बहुत अच्छी रेसिपी होती थी, जो ऑब्वियसली वो हमेशा बना के रखती थी। उसमें क्या होता था, जैसे सौंफ होती है ना, तो एक सौंफ होती है उसमें, और फिर आप मिश्री लेते हो, और मतलब मिश्री, सौंफ, और एक यार आई विश आई कुड हैव कॉल्ड राइट नाउ, बट ऑब्वियसली वो लोग सो रहे होंगे। मैं आपको पक्का बताऊंगा ताकि आप वो शेयर कर सको। एक काइंड ऑफ लीव्स होती है, जो लीव्स को तीनों को मिक्स करके ना आप उसको पूरा काइंड ऑफ एक पाउडर टाइप उसको बना लेते हो।
0: राइट राइट।
1: तो देन यू हैव इट विद वार्म वाटर एंड इट वर्क्स सो वेल, इट लिटरली वर्क्स लाइक अ लैक्सेटिव, कंप्लीटली नेचुरल, नो आर्टिफिशियल थिंग, नथिंग एट ऑल।
0: राइट।
1: तो मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था कि मैं कॉल करूँ ना करूँ, बट क्योंकि मुझे वो लीव्स का नाम याद नहीं है, बट मैं आपको 100% अपडेट करूंगा।
0: Perfect.
1: तो उसमें डेफिनेटली सौंफ और मिश्री जरूर होती है।
0: For sure. वैसे अगर आपको पता नहीं हो तो yes, my show finished at 3, so before that अगर आप मुझे बता सके, and I'm sure तब तक तो आपके mom dad उठ चुके होंगे, right? क्योंकि early उठने के होते हैं, like you know mom dad की आदत इंडिया में, यहाँ पे भी actually, यहाँ पे भी mom dad जल्दी उठते हैं, but वहाँ के हिसाब से तो I think somewhere around before 3, if you can let me know the name, then I can definitely share
1: definitely
0: with my listener as well over here.
1: 100% I'll do that.
0: But actually this is very nice topic कि हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए हमारे होम जितने भी जो होती है ना चीज़ें जो अपनी मॉम बताती है या फिर अपनी दादी बताती है कि आपको ये कर लो इससे सही हो जाता है, तो एक्चुअली ये काम काफ़ी हद तक करता है। ऐसा नहीं कि भाई क्या है, डॉक्टर ने तो मना कर दिया फिर क्यों बोलते हो, ये सब कहने की बात है, बट एक्चुअली कहें
1: नहीं। देखो पता है, पेरेंट्स हमेशा एक्सपीरियंस के साथ बात करते हैं, और जब हमारे अपने बच्चे होते हैं ना, तो हम तब ज्यादा रियलाइज करते हैं कि यार जो हम उनको बता रहे हैं, व्हाई आर दे नॉट लिसनिंग टू इट, वी आर टेलिंग बाय एक्सपीरियंस।
0: ट्रू।
1: तो पेरेंट बनने के बाद ना आपको ये चीज ज्यादा रियलाइज होती है कि पेरेंट्स कितना सही बोलते हैं।
0: ट्रू ट्रू ट्रू।
1: तो आई रियली होप कि जो भी मुझे इस समय सुन रहे हैं, मेरी सबसे बेस्ट एडवाइस सबको यही रहेगी, अगर पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं उसको सुन लो, दे आर नॉट जस्ट टॉकिंग, दे आर टॉकिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस।
0: क्या बात है। आपका बेटा है, बेटी, आर यू पेरेंट?
1: मेरा बेटा है भाई।
0: राइट।
1: आईव गॉट अ सन, ही इज 3 years old।
0: 3 years old,
1: एंड आई थिंक जैसे जैसे ही इज ग्रोइंग अप, आई विल स्टार्ट रियलाइजिंग दिस इवन मोर।
0: राइट राइट। वेल वेरी वेल वेरी वेल, थैंक यू सो मच आयुष भाई आपके कॉल के लिए, एंड बहुत अच्छी बात भी बताई है, एंड आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे जितने भी लिसनर्स हैं डेफिनेटली दे मस्ट हैव नोटेड डाउन एंड दे मस्ट बी वेटिंग ईगरली टू नो द नेम ऑफ द लीफ एज वेल। सो जैसे आपको पता पड़ता है अपने लिसनर्स के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू ब्रो, थैंक यू, यू हैव अ लवली डे, एंजॉय द डे, बाय बाय, टेक केयर।
1: यू टू।
2: लंच बॉक्स विद केतन।
3: मुझे पसंद है लड़का।
2: हम Keep calm because Punjabi swag is on.
4: Hey, hey, maje liye, maje liye, mobatti hai hai. Pehle dinon tere utte aankh rakhiye hai. Tere bina area ch, aur kudi da na dil mangiye te na.

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: Reliance Ventilation System.
3: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि drying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
2: Moisture और ventilation का problem लगता है.
3: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
2: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
4: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
5: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला.
6: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
5: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है.
6: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं. इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड. ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर. अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव. नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू.

0: Oh, don't slip up on a banana skin. Throw it in your food scraps bin instead of the rubbish, because every scrap counts. Tāmaki Tūtaki, All Together Auckland.
1: MediaWorks complaints. How can I help?
2: I've got this ad going around and around and around in my brain, and it's all because of you guys.
1: Thank you.
2: It's all I can think about.
1: What does it sound like?
2: Yeah, I'd rather not.
1: Go on, why don't you have a crack?
2: Okay, got a plumbing problem.
1: Oh, I need a bit more than that.
2: They've got your back.
1: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
2: Oh, okay.
3: There's no better plumber to give it a crack.
1: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
2: No, I want a plumber.
4: Advertise with
5: MediaWorks.
4: New Zealand listens to us.
6: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
7: Lunchbox with Ketan.
8: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na to bhi isse better ladka nahi milega tujhe.
7: Hum. Office shout out.
9: ऑफिस शॉट आउट के सेगमेंट में आपका स्वागत है। आप बस जल्दी से फोन उठाइए 5599 पे, आप मुझे मैसेज भेज दीजिए एंड बताइए कि अभी एग्जैक्टली आप क्या खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, वेदर यू आर ईटिंग एट होम और ईटिंग आउटसाइड और ईटिंग समवेयर एट द गार्डन और या यस ऑफ कोर्स आप अगर वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हैं तो वहाँ पे लंच कर रहे हैं तो क्या क्या खा रहे हैं और कहाँ से अगर आपने मंगाया बाहर से तो कहाँ कहाँ से मंगाया। तो यस आप जल्दी से मुझे उसके लिए मैसेज भेज दीजिए 5599 पे। बट यस मीन टाइम आपको मैं फटाफट से पॉडकास्ट के बारे में बता देता हूँ। काफ़ी पॉडकास्ट काफ़ी मेहनत करते हैं हम और आपके लिए तरह तरह के पॉडकास्ट लेके आते हैं, जिसमें से एक सबसे ऊपर है थैलेसीमिया, जहाँ पे हमने बात की है निवेदिता विज से और काफ़ी अच्छे से डिस्कस की है उन्होंने उनसे और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से थैलेसीमिया और उसके जो इम्पैक्ट है साउथ स्पेशली साउथ एशियन कम्युनिटी को लेके वो बात उन्होंने बताई है। सो यस आप मुझे ड्राइव लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए ताकि फुल आपका ऑडियो जो पॉडकास्ट है वो आपके पास पहुंच जाए। बट यस काफ़ी प्रोफेशनल वाली बातें की हैं, क्या सिनेरियो हो सकते हैं और कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। काफ़ी चीज़ों में ऐसा होता है दैट यू मे डोंट नोटिस इट बट डेफिनेटली दैट कुड बी द फर्स्ट सिम्टम, फर्स्ट साइन ऑफ हैविंग अ थैलेसीमिया। जी हाँ, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं तो कहता हूँ एंटरटेनमेंट से ज़्यादा ये एजुकेशन वाला पॉडकास्ट है और मैं हर एक शख्स को बोलूँगा कि आपको डेफिनेटली ये चेकआउट करना चाहिए। बट यस आई जस्ट रिसीव फ्यू मैसेजेस, पढ़ लेते हैं फटाफट से। आवर ऑफिस हैज़ नो डेस्क लंच रूल एवरी वेडनेसडे, सो वी आर स्टिल सिटिंग टुगेदर इन द लंच रूम टुडे। गुड फूड, गुड लाफ एंड योर शो ऑन द स्पीकर। अरे वाह, नाइस, क्या बात है, थैंक यू सो मच। One more thing, I am working on a construction site today. My wife packed hot aloo parathas this morning and the boys have already asked if she's taking extra lunch order tomorrow. Dinesh bhai ka ye message hai. But thank you so much for all the messages. And Neha ne kaha hai, I'm having butter chicken today. Arre kya baat hai, nice, very nice. Botany se inhone mujhe message kiya hai. But thank you so much, aap bane rahiye. हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड पे बात होगी थोड़ी देर में। इट गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज हम कोशिश करते हैं आपको आप तक हिस्ट्री के बारे में पहुंचाने बात और देखते हैं आज क्या स्पेशल घटना घटित हुई थी। न्यूजीलैंड ट्रुथ हेड्स द न्यूज स्टैंड, जी हाँ ये टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में।
6: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes, build your dreams.

What a song! Who am I? Raghav Chaitanya, जिसने अभी माशू का भी गाना गाया है कॉकटेल 2 में, बहुत ही अमेजिंग सिंगर है. उनका जो रेंज है ऊपर जाने का, इट इज अमेजिंग यार, अमेजिंग. एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड. आज के दिन 1905 को न्यूजीलैंड ट्रूथ न्यूज़पेपर लॉन्च हुआ था. इससे ऑस्ट्रेलियन पब्लिशर जॉन नॉर्टन ने शुरू किया था. शुरू के सालों में ये न्यूज़पेपर आम लोगों के हक में आवाज उठाता था और करप्ट बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस को एक्सपोज भी करता था. 1950s-60s तक ये बहुत पॉपुलर हो गया और लगभग हर दो घरों में से एक घर इसे खरीदता था. बाद में न्यूज़पेपर के जरिए जो उसका नजरिया था ज्यादा कंजर्वेटिव हो गया और इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई. आखिरकार 2013 में इसका पब्लिकेशन जो था वो हो गया बंद, यानी कि न्यूजीलैंड ट्रुथ न्यूज़पेपर ये हो चुका था 2013 में बंद. उसकी वजह भी ऑफकोर्स मैंने आपके साथ शेयर की है. वैसे कितने लोगों ने ये न्यूज़पेपर पढ़ा है, न्यूजीलैंड ट्रुथ न्यूज़पेपर कितने लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, डू लेट मी नो 5599 पे.

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
4: Sorry to interrupt, but we know someone who's perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They've got so much going for them. Can we set you up with Auckland?
5: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
6: Before you can vote, you need to be enrolled. We're making it easy, with electoral commission teams popping up at events and venues across Aotearoa New Zealand, so you can enrol, check or update your details without any fuss. Find out where our teams will be at vote.nz.
7: As a baby, I was burnt in hot water.
8: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
9: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
10: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
11: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
12: Sorry about that.
11: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
12: Kogan Mobile, true Aussie value.
11: Terms and conditions apply.
13: Lunchbox with Kethan.
14: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
15: Chutney Shots.
16: चटनी शॉट्स के सेगमेंट में आपका स्वागत है। फटफट से यहाँ पे न्यूज आपको मैं बता देता हूँ। दैट सबसे पहले क्राइम से शुरू करते हैं। बड़ी खबर है, न्यूजीलैंड के सबसे बड़ी इलीगल लॉटरी चलने वाले ऑर्गेनाइजर्स को कोर्ट ने सेंटेंस सुना दिया है। और ये ऑपरेशन सिर्फ एक साल में लगभग $11 मिलियन जनरेट कर चुका था और अथॉरिटीज ने इसे देश का बिगेस्ट इलीगल लॉटरी केस बताया है। वेल, एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयमेंट न्यूज में माइग्रेंट वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करने का केस भी सामने आया है। उसमें रेस्टोरेंट ओनर को $400,000 यानी कि $400,000 से ज्यादा का पेमेंट और पेनल्टीज देने का ऑर्डर दिया गया है। अथॉरिटीज ने कहा है कि वर्कर्स के राइट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑकलैंड में एक डिस्प्यूटेड माओरी रिजर्व लैंड पर फुटबॉल गोल पोस्ट इंस्टॉल किया गया है। इसके बाद लोकल कम्युनिटी और लैंड ओनर को लेकर नया कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। क्रिकेट अपडेट में इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम, न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकलम ने रूमर्स को खारिज करते हुए कहा है कि उनके और कैप्टन मेनस्टॉक के बीच किसी भी तरह का रिफ्ट नहीं है। इंटरनेशनल न्यूज में हंगरी पुलिस ने एक आदमी को अरेस्ट किया है जिस पर सिमेट्री से ह्यूमन बॉडी पार्ट चुराने का आरोप है और ये शॉकिंग केस अब इन्वेस्टिगेशन के अंडर है। स्पोर्ट्स से एक और बड़ी खबर, मोआना पैसिफिका को 2027 सुपर रग्बी सीजन में जगह नहीं मिलेगी। वहीं ऑकलैंड एफसी ने ऑल वाइट्स के एक मिडफील्डर को साइन किया है और क्लब अब भी अपने नए हेड कोच की तलाश में लगी हुई है।
13: दिल से

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है. Throwback.
2: वेलकम बैक. वेल, एक सवाल काफी कंसर्निंग है. कंसर्निंग तो क्या, काफी लोगों के जहन में ये होगा ही कि किसी का अगर मैसेज आपको नहीं देखना है तो आप फिर भी मतलब पढ़ना चाहते हैं, बट सामने वाले को नहीं पता लगना है कि भाई वो आपने मैसेज कर लिया. बिकॉज व्हाट्सएप पे क्या होता है कि आप ब्लू टिक आ जाता है जैसे आप देखते हैं मैसेज. तो इसका सुझाव क्या है आप बताइए यहाँ पे. आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी लिसनर्स होंगे वो या तो इस चीज़ को ढूंढ रहे होंगे या फिर उन्हें पता होगा. तो यस, मुझे बताइए और ये चीज़ बताइए कि बिना मैसेज को खोले व्हाट्सएप पे आप कैसे किसी का मैसेज पढ़ सकते हैं. So yes, 5599 is the number. आप मुझे भेजिए जल्दी से. I would love to hear your feedback.

0: ढूंढेगी ना, तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi, क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं, और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: येलो वार्निंग मिल चुकी है यहाँ पे। वेदर जो है बहुत ही बारिश वाला होने वाला है पूरे दिन, 100% चांस दिखा रहा है। 16 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 12 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है, और 5:14 पे आज का होगा सनसेट।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मेरा नाम केतन है और यस, यहाँ पे बहुत सारी बातें करनी है। अगर आपने मुझे अभी ज्वाइन किया तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, और अगर आप मुझे सुन रहे हैं पिछले एक घंटे से यानी कि 12 बजे से, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे बने रहिए, बिकॉज SR में भी आपको मैं मौका दूंगा जहां पे आप मुझे कॉल करेंगे, कुछ लंच टाइम रेमेडीज के बारे में बताएंगे, लंच टाइम रेंट लाइन के बारे में बताएंगे। दो चीजें मिक्स कर दी यहाँ पे मैंने, बट यस, लंच टाइम रेंट लाइन के साथ साथ आपको बॉलीवुड की खबर भी दूंगा, और आज किसके बीच मैच होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप में, उसके बारे में भी बात होगी। और यस ऑफ कोर्स, हमारे देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज उससे अपडेटेड रहना इज मस्ट। Yes, that is so true. वैसे आपका अभी तक का वीक कैसा जा रहा है, बिकॉज वी आर स्टैंडिंग इन मिडवे, तो यस आप मुझे बताइए कि आपका अभी तक का जो टाइम है, आपका जो दो दिन गए हैं मंडे एंड ट्यूजडे, वो कैसे गए आप मुझे बता सकते हैं। बट यस, आज एक्चुअली मैच है 2 बजे, 1 बजे नहीं 2 बजे है, कोलंबिया वर्सेज कॉन्गो रियर, जो कि ग्रुप के लिए ग्रुप के से मैच होगा, ग्रुप के में फर्स्ट स्टेज वाला मैच होगा, जो कि हो रहा है ग्वाडालाजारा, वहाँ पे ये मैच हो रहा है। तो यस, आप उसके लिए बस अपडेटेड रहिए, और मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि लंच टाइम रेंट लाइन के लिए क्या क्या कुछ भेज सकते हैं आप।
0: बचाओ क्या,

0: वेलकम बैक, खलबली ए आर रहमान और मोहम्मद असलम की आवाज़ में आपने ये गाना सुना है, बहुत ही अमेजिंग है। वैसे रिसेंटली सोनू निगम ने कहा भी था ये चीज़, पता नहीं कितना आप उस चीज़ में एग्री करेंगे या नहीं, बट एक कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था कि हाउ वुड यू रेट ए आर रहमान इन सिंगिंग, तो सोनू निगम ने कहा कि ही इज़ नॉट अ सिंगर, ही इज़ नॉट अ गुड सिंगर। तो काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, थोड़े मिक्स्ड रिएक्शन आए लोगों के, काफ़ी जो फैंस हैं उसके, ऑफ कोर्स हेटर्स, आई डोंट थिंक सो ए आर रहमान के कोई हेटर्स होंगे, बट ये सपोर्ट्स जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है उनका, और कहा था कि ये क्या बोल दिया आपने, एंड या आई थिंक सोनू निगम भी कुछ कंट्रोवर्सीज में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बट लेटर ही ट्राई टू कीप हिज पॉइंट एज वेल पब्लिकली। बट यस, आप मुझे लंच टाइम रेंट लाइन के लिए मैसेजेस भेजिए 5599 पे, जहाँ पे आप मुझे बताएंगे कौन सी ऐसी चीज़ है जो सच में आज यू नो आप यू फील वेरी वेरी इरिटेट अबाउट, बट यू मे और मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। उसके साथ ही अगर आपने आज भी कुछ ऐसी चीज़ फेस की है तो मुझे बता सकते हैं। बट यस, कुड यू बाय एनी एक्सचेंज ऑफर स्टारिंग द लेजेंडरी सिद्धार्थ रंदेरिया, वो होने जा रहा है 3rd of July, बहुत ही कम टाइम बचा आपके पास, लेस देन 10 डेज, 7:30 बजे के बाद ये शुरू हो जाएगा विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर, premiertickets.co.nz पे जाके आप टिकट खरीद लीजिए। सिद्धार्थ रंदेरियाज गुज्जू भाई प्रोडक्शंस आप सभी के लिए लेके आए बहुत ही अमेजिंग शो, जहां पे एक एक्सचेंज ऑफर होता है और उस एक्सचेंज ऑफर के चक्कर में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग में फंस जाते हैं, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी आते हैं, और ऑफकोर्स जोक्स और डायलॉग्स और ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली हंसाएंगे, सो आपको ये शो मिस नहीं करना चाहिए। गुज्जू भाई नी एक्सचेंज ऑफर जो सिद्धार्थ रंदेरिया लेके आ रहे हैं, एंड उनकी एक बात भी है कि उनके शोज़ जो है ऑलमोस्ट फुल जाते हैं, सो यस डोंट कीप इट ऑन द लास्ट बिकॉज ये शो कभी भी सोल्ड आउट हो सकता है।
1: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे
3: The Breakfast Show with VJ and Pooja।
4: बुरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
5: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
6: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप, west side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather.
5: कौन है?
6: Hunua और Waitakere।
5: अच्छा Hunua west में?
6: किधर है Hunua?
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
7: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
3: Weekdays 6 to 10 a.m.
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
7: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
8: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
7: Available at selected branches. T's and C's apply.
9: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
10: High five! High five? Anybody? No? Ah, that's right. It's $5 week at Pack and Save. Low five! Ah, that's more like it. Although this would make a lot more sense if I had fingers. $5 week, on now at Pack and Save.
11: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
12: Indelible Homes, your building expert.
13: Hi there. Sorry to interrupt, but we know someone who is perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They love kids and animals, sports and culture, food and fashion. They've got so much going for them. So can we set you up with them? They're called Auckland, and we think you'll really hit it off.
14: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
3: Lunchbox with Ketan.
15: मुझे पसंद है लड़का।
3: हम। Lunchtime Rant Line.
0: Well, yes, मुझे अभी तक वैसे रिस्पॉन्ड तो खास मिले नहीं है, बट आई विल स्टिल वॉन्ट टू आस्क कि अगर आपको पता हो और इफ़ यू वॉन्ट टू शो दैट विदाउट ओपनिंग द मैसेज, अगर कोई भेजता है हम कैसे मैसेज को पढ़ सकते हैं विदाउट लेटिंग देम नो कि हमने पढ़ लिया है. मुझे लगा शायद इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, बट यहाँ पे लग रहा है मुझे कि शायद लोगों को अपनी अपना जो टैलेंट है, अपनी जो यू नो ये जो क्या बोलते हैं उसको, उस डायलॉग को क्या बोलते हैं कि छोटा सा अरे क्या था अभी एकदम याद था, एकदम दिमाग से निकल गया. खूबी कह सकते हैं या फिर ऐसी यू नो यूएसपी कह सकते हैं. सो यस, ये हो सकता है आप शेयर नहीं करना चाहता हूँ, बट यस डू लेट मी नो अगर आप इफ़ यू आर स्टिल कीन टू शेयर, आप मुझे 5599 पर बता सकते हैं. बट यस, लंच टाइम रेंट लाइन के लिए मुझे मैसेजेस आए हैं. आशीष भाई कहते हैं टाकानीन से, व्हाई डू पीपल लिव एग्जैक्टली 10 सेकंड्स ऑन द माइक्रोवेव टाइमर इंस्टेड ऑफ क्लियरिंग इट. एवरी टाइम आई वॉक इन टू द ऑफिस किचन इट इज फ्लैशिंग 10 सेकंड. ये मेरे साथ भी होता है यार, पता नहीं क्यों, लाइक क्या मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता या मैं वेट नहीं कर सकता, पेशेंस नहीं है, आई एम नॉट श्योर, बट एंड पे आते आते एंग्जाइटी इतनी बढ़ जाती है, नहीं नहीं भाई निकल निकल निकल, और उसको पूरा होने तक. और कुछ कुछ लोग तो मैंने देखा है कि जो हो भी जाता है उसके बाद जो ब्लिंक करता है 5 बार टीट टीट टीट वो बोलता है, उसको भी जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक वो निकालते नहीं है. एंड देन समवन हैज टू से भाई हो गया निकाल ले अब. बट यस ये होता है, मेरे साथ भी होता है, दैट यू नो पता नहीं क्यों, रीजन तो मेरे को पता नहीं है, बट आई फील मेरे साथ भी हुआ ही है. सो यस, आप भी मुझे बताइए इफ यू आर वन ऑफ देम, 5599 इज द नंबर जहां पे आप मुझे भेज सकते हैं. एंड यस, पूजा भी कहती है बॉटनी से, कैन वी प्लीज रेंट अबाउट पीपल हु सेज आई एम ऑन माय वे व्हेन दे हैवंट इवन लेफ्ट द हाउस. होपफुली यू आर नॉट टॉकिंग टू मी. नहीं, जोक्स अपार्ट, मैं वैसे ऐसा नहीं करता हूँ, बट कुछ हद तक तो करता हूँ, कुछ हद तक तो करता हूँ. आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे काफी लोग होंगे जो ऐसा करते ही होंगे. क्या लगता है आपको, आर यू वन ऑफ देम जो झूठ मूठ का टाइम, एंड यू नो पता है क्या है, मैंने लोगों से पूछना भी शुरू कर दिया कि अगर कोई टाइम बोलता है 5 मिनट में आ रहा हूँ, मैंने कहा तेरा 5 मिनट या मेरा 5 मिनट. वहाँ पे उनका जवाब मिल जाता है. बट यस, थैंक यू सो मच फॉर मैसेज आशीष एंड पूजा. ये जो नेक्स्ट गाना है आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, एंजॉय करिए तुझको, टॉप हिट ऑफ द आवर वाला सॉन्ग.
3: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: चोरी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
2: वेल यस, अभी की लेटेस्ट खबर यह है कि न्यूजीलैंड के डिजिटल फायर आर्म्स रजिस्ट्री में अब तक 680,000 से ज्यादा गन्स रजिस्टर हो चुकी है और ये रजिस्ट्री जून 2023 में शुरू हुई थी और इसका प्रपोजल जो मेन पर्पस था वो लीगल फायर आर्म्स की ट्रैकिंग को बेहतर बनाना और उनके क्रिमिनल हैंड्स में जाने को रोकना। वैसे अथॉरिटीज के मुताबिक लगभग 60% लाइसेंस फायर आर्म्स ओनर्स अपने फायर आर्म्स रजिस्ट्री में ऐड कर चुके हैं। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2028 तक सभी लाइसेंस्ड गन ओनर्स अपने फायर आर्म्स और रिलेटेड आइटम्स रजिस्टर कर दें। वैसे रजिस्ट्री को 2019 के क्राइस्टचर्च मॉस्क अटैक के बाद फायर आर्म्स रिफॉर्म्स का हिस्सा के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था और सपोर्टर्स का कहना है कि इससे पुलिस को फायर आर्म्स ट्रेस करने में मदद मिलेगी, जबकि क्रिटिक्स इसकी इफेक्टिवनेस पर सवाल उठा रहे हैं।

0: Well, sunrise views, सुबह उठते ही आप एकदम sunrise के beautiful views देख रहे हो, नए दोस्त बना रहे हो, एक बहुत ही बढ़िया road trip playlist आपके लिए ready हो चुकी है और बहुत सारा खाना, साथ में of course endless laugh. Well, yes, ये कोई movie नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये story हो सकती है आपकी खुद की. जी हाँ, कैसे? It could be your Easter 2027. कैसे? Of course, आपको क्या करना है? आपको सिर्फ stay tuned रहना है to know more and keep listening to us. हम 104.2 FM के.
1: Lunchbox with Ketan. हीरा लड़का है. Telescope लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
2: हम

0: चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स। फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
1: If you've got an injury like a sprain or strain, don't just think that rest is best. Staying active can support your recovery and help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
2: Sydney is on sale now at Flight Centre. Experience iconic attractions, harbour views and savings of up to $500 on Sydney City stays. Book online or in store today. T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
4: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
3: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
4: Available at selected branches. T's and C's apply.
5: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
6: Lunchbox with Ketan.
7: Iske piche na 3-4 ladkiyan padi hui hain.
6: Iske piche? Lunch ke munch pe.
8: चलिए बॉलीवुड की बात कर लेते हैं। बॉलीवुड में कुछ कलेक्शंस देख लेते हैं, बट उससे पहले आपको बता देता हूँ कौन सी फिल्में हैं जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं। वेल यस, वेलकम टू द जंगल 26 यानी कि परसों रिलीज होने वाली है फाइनली। इतने टाइम से इसकी टीजर्स और इसका ट्रेलर आए जा रहे हैं, प्लस कुछ ना कुछ हिंट भी देते आ रहे हैं, लेकिन यस फाइनली ये फिल्म अब रिलीज होने वाली है 26 जून को। अल्फा इज ऑल्सो कमिंग ऑन 3rd of July, जी हाँ, जिसमें सरवरी और आलिया भट्ट काफ़ी बढ़िया रोल में दिख रहे हैं और अभय देओल भी हैं उसमें, सॉरी बॉबी देओल भी हैं उसमें, और ऋतिक रोशन की हल्की सी ग्लिम्प्स भी देखने को मिली है। सो दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग यार, आप जाइए अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में और वहाँ पर देख सकते हैं। धमाल 4 भी आ रही है 4th July को, उसे भी आप देख सकते हैं। और बंटवारा 1947 जिसमें सनी देओल फिर से आ रहे हैं एक हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के, तो यस ये आप देख सकते हैं 13th August को। चलिए बात करते हैं कलेक्शंस की। कलेक्शंस भी कुछ खास नहीं रहे इस हफ्ते भी, कुछ मूवी जो काफ़ी प्रॉमिसिंग थी बट उतना अच्छा नहीं कर पाई, जबकि कॉकटेल 2 का वर्डिक अभी भी पेंडिंग है। 19 जून को रिलीज हुई थी, 5 दिन हो चुके हैं, 58.65 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। टॉय स्टोरी 5 6.55, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं फ्लॉप रही, समर्पित भी फ्लॉप रही, फ्यूरियस 0.74 भी फ्लॉप रही, वॉइस ऑफ हिंद राजब ये भी फ्लॉप ही रही, यानी कि कोई खास हुई नहीं है फिल्म। मैं वापस आऊँगा 27.07 पे लगी हुई है, आई थिंक शायद हिट हो सकती है या फिर एवरेज हो सकती है, मेरे को लगता है ज़्यादा लोग देखने नहीं गए हैं। आप भी जाइए अगर आप इफ़ यू वॉन्ट टू गो एंड वॉच द फिल्म, काफ़ी बढ़िया स्टोरी लग रही, काफ़ी अच्छे फीडबैक्स भी सुनने को मिल रहे हैं, तो यस डेफिनेटली आप जाइए। मैं वीकेंड में पक्का जाऊंगा देखने और जब देख के आ जाऊंगा देन आई लेट यू नो कि फिल्म मुझे कैसी लगी। बट कॉकटेल 2 हाईएस्ट रही है अभी तक, 58.65 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है इंडिया से।
6: दिल से

0: να μας κουντζέκει. Throwback.
1: Well, yes, welcome back. आप अगला जो गाना है भोली सी सूरत वो सुने, उदित नारायण लता मंगेशकर. ऑफ कोर्स इतना बढ़िया गाना, ये वन ऑफ द सॉन्ग है जो यू नो प्लेलिस्ट में हर एक मिलेनियल के रहा ही होगा फॉर श्योर. बट एक सवाल यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा, कोई ऐसा गाना आपको पता है जो सचमुच गाना जो है वो तो लड़कियों का हो एज इन फीमेल वर्जन हो बट बॉयज़ भी काफ़ी एंजॉय करते हैं उस गानों पे? बताइए मुझे 5599 पे आप बता सकते हैं. एक गाना है मुझे याद है, बचपन की मेरी याद है, साजन जीगर आए तुझको, क्या है, साजन जीगर आए दुल्हन क्यों शर्माए. हाँ जी, सो ये जो गाना है ये बेसिकली ऑब्वियसली मैं बहुत ही छोटा था जब ये फिल्म आई थी, लेकिन मुझे और मेरे दोस्त को, हम शायद 6 या 7 साल के होंगे, और हमें रखा पता किसके लिए था, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे जो उस टाइम सर्कल था, मैं अपना क्या सर्कल बताऊँ, जो मेरी दीदी का जो सर्कल था, दीदी का और जो नेबर्स का सर्कल था, उसमें कोई वैसी बहुत ज़्यादा फीमेल नहीं थी जो एड ऑन कर सके, तो उन्होंने मुझे और मेरे दोस्त को ही रख दिया था साजन जीगर आए दुल्हन क्यों शर्माए करने को. तो पूरे गाने में हम यही कर रहे थे बस, साजन जीगर, जब जब ये पार्ट आता हम ऐसे डांस करने लग जाते थे. और उसके बाद ऑफकोर्स वही मेरी दीदी और जो दीदी के फ्रेंड्स होते थे बड़े, वो लीड लिया करते थे. बट यस, ऐसे कुछ आपके भी जहन में हो, कुछ ऐसी कहानी जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री 5599 नंबर जहाँ पे आप मुझे कर सकते हैं.

0: approving the transfer of the team's participation licence to any new party for 2027. Super Rugby Pacific has acknowledged the decision, saying details of next year's 10-team format will be shared in the coming weeks. And Croatia has eliminated Panama from the FIFA World Cup. The 1-0 win pushes Croatia up to third in Group L, a point behind England and Ghana, who drew nil-all this morning.
1: Sports News.
2: Brought to you by Sona Sensar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
3: वेदर के हाल चाल जान लेते हैं. आज 16 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है और 11 डिग्रीज मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है. वैसे सनसेट आज 5:14 को होगा, बट यस आज बारिश के आसार ओवरऑल बहुत ही ज्यादा है. 12.4 mm रिकॉर्ड होने के आसार हैं आज.

0: खास गूंजेगी।
1: क्या ना नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। वेलिए साहब, बने रहिए, बिकॉज बहुत सारी बातें इस आर में भी होने वाली हैं। दो बज चुके हैं, यानी कि अभी थोड़ी देर में मैच भी शुरू हो जाएगा बिटवीन कोलंबिया एंड कॉन्गो। वेलिए साहब, कहीं मत जाइए, उसके भी अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। बट अगला जो मैच है, वैसे आज और भी मैचेस हुए, जैसे कि पोर्चुगल वर्सेज उज्बेकिस्तान के बीच में भी हुआ, जिसमें पोर्चुगल बहुत ही आसानी से जीत गई। इंग्लैंड वर्सेज गाना के बीच में मैच हुआ जो ड्रॉ हुआ है, देयर वाज नो गोल स्कोर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द टीम। पनामा वर्सेज क्रोशिया भी हुआ है, जिसमें क्रोशिया जीत चुकी है, टोरंटो स्टेडियम में ये मैच हुआ था। सो यस, नाउ लेट्स सी कोलंबिया और कॉन्गो के बीच में क्या स्कोर रहता है आज के इस मैच में। बट बने रहिए अंटिल थ्री, मैं यहाँ पे हूँ एंड देन सैंडी विल बी जॉइनिंग फॉर द ड्राइव कॉफी ब्रेक एंड देन उसके बाद द ड्राइव शो में उनका साथ देंगे रुस्बे।
2: बचाओ क्या?

0: विद केतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना, कभी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम
2: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Massif Rovapa.
1: At Bunnings, costs are kept low by buying in bulk, so you save more. And that means low prices for all kinds of useful supplies, like all-set 50-litre modular storage container, only $8.99. Finished Quantum dishwashing tablets, 72-pack, $34.99. Philips LED Cool Daylight 19-watt globe, only $24.95. Where you find a competitor's lower price and the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Lowest prices are just the beginning.
2: Say hello to the Club Plus Smart Shopping Buddies. They're here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. They'll help you scan, score and save on all the stuff you love. And there's a Smart Shopping Buddy for everyone, even you. So join Club Plus to meet yours and get the best of New World, Pack and Save and Foursquare. Find out more at clubplus.co.nz.
3: Hi New Zealand, this is Siddharth Randeria Gujubai.
4: And who Tejal Vyas?
3: Ame avi rahya chhe amaru navu nakkor super hit comedy natak Gujubai ni
4: exchange offer.
5: Friday 3rd July Victory Convention Center par Lending HQ, Sona Sansar and Tulip Financial Services presents Siddharth Randeria nu navu natak Gujubai ni exchange offer. Hasi hasi ne lotpot thaywa taiyar thai jao. Tickets jaldi book kari lejo. Phone karo 021-244-6278 par.
6: Oh my, oh my, Braysouth Road, greater than ever.
7: South Auckland's buses just became a lot better.
6: Weymouth Road, way better buses.
7: With better bus routes, more frequent buses, more early morning and late night buses and more.
6: Woody, no worries, MIT, A-OK.
7: Search AT Better South Auckland Buses for details.
6: Airport, got your transport.
7: Then turn up and go.
8: The King Living Winter Sale is on now. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale on now. Shop online or visit a King Living showroom today.
9: JB Hi-Fi is celebrating its stunning new store at Newmarket this Thursday from 5pm with cost plus GST on products store-wide for 4 hours only. Don't miss out on huge savings only at JB Newmarket this Thursday, 5 to 9pm. JB, you've done it again.
10: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
11: Kabhi bhi, kahi bhi. Mast malang jo. Lunchbox with Ketan.
12: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
11: इसके पीछे?
10: हम।
11: Skip your replay.
13: Welcome back. You are listening to Lunchbox. Well, yes, सभी के लेटेस्ट खबर ये है कि न्यूजीलैंड के बेल ब्लॉक एरिया में एक डिस्प्यूट माओरी रिजर्व लैंड पर नए फुटबॉल गोल पोस्ट लगाए गए हैं जिस पर लोकल माओरी लीडर्स ने कंसर्न जताया और ये ज़मीन पहले गवर्नमेंट ने पब्लिक वर्क्स के लिए ली थी लेकिन अब उसे ओरिजिनली माओरी ओनर्स को वापस देने पर डिस्कशन चल रही है. वैसे पुकेटापू हापू के पीटर मोयहू को लगा कि गोल पोस्ट लगाने से जमीन का स्पोर्ट्स ग्राउंड के रूप में ज़्यादा यूज दिखा जा सकता है जिससे लैंड रिटर्न प्रोसेस प्रभावित हो सकती है. एंड बट यस, उसके साथ उनका ये भी कहना है कि इस फैसले से पहले माओरी कम्युनिटी से कंसल्टेशन नहीं लिया गया. काउंसिल ने कहा है कि गोल पोस्ट टेम्प्ररी है और सितंबर में हटा भी दिया जाएगा. साथ ही काउंसिल और पुकेटापू हापू के बीच लैंड के फ्यूचर को लेकर डिस्कशन जारी रहेगी. वैसे यस, ये खबर जो है आप ऑनलाइन जाके भी पढ़ सकते हैं पर अभी के लिए बने रहिए बिकॉज बंधु 2.0 टॉप हिट ऑफ द आवर सुनने वाले हैं थोड़ी देर में.
11: Top hit of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

This is one of the song which I have performed in many shows, many events, और बहुत ही करीब है मेरे लिए. इस शो ने मुझे first runner up भी बनाया था ऑस्ट्रेलिया के कंपटीशन में. जी हाँ, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है मेरा वहाँ पे. पर यस, चलिए अभी फ़ोन उठाइए और मुझे कॉल करिए 0800-004-866 पे, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए मैं ये लेके आ चुका हूँ कॉम्पिटिशन. Well, something चलता रहता है. Yes, आप मुझे कॉल करिए और मुझे बताइए कि इस कंपटीशन में आप कैसे हिस्सा लेंगे. राहत फतेह अली खान, जी हाँ, राहत फतेह अली खान के कॉल के लिए आप मुझे उनके इवेंट जो होने वाला है उसके लिए आप मुझे कॉल करिए जल्दी से 0800-004-866 पे, बिकॉज यहाँ पे सवाल आपसे मैं करने वाला हूँ. और आपका यही सवाल अगर आप सही रहता है तो आप मुझे ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं इस कंपटीशन में, और आप जीत सकते हैं डबल पास जो कि इनका इवेंट होने वाला है जुलाई में. सो जल्दी से फोन करिए 0800-004-866 पे और इस शो का हिस्सा बनिए फॉर फ्री हमारी तरफ से. बट यस, आपका वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग कौन सा है राहत फतेह अली खान का? डू लेट मी नो. आप मुझे बता सकते हैं ये भी. बट मेरा अगर पर्सनल बताऊं तो मेरा अभी हाल फिलहाल सांसों की माला पे, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है. और आपका भी अगर कोई फेवरेट सॉन्ग है तो डू लेट मी नो. आप मुझे मैसेज भेज रहे हैं, मैसेज नहीं, आप मुझे कॉल करेंगे तो ही इस कंपटीशन में जा पाएंगे. 0800-004-866 पे कॉल करिए, जहाँ पे मैं आपको रैपिड 3 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ. अगर आपने सही जवाब दिया तो आप ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं और जीत सकते हैं डबल पास. लगता है डबल पास नहीं जीतना है, विच इज़ गुड. लगता है ये खरीद के ही मानेंगे, खरीद के ही ये शो आप इवेंट में जाएंगे. बट यस, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, दैट्स कम्प्लीटली फाइन. बट यहाँ पे मौका है उन लोगों के लिए जो सचमुच शो में जाना चाहते हैं. एक बार ट्राई कर लीजिए लक, क्या पता अगर आप जीत जाए तो आप डबल पास जीत सकते हैं. सो यस, 0800-004-866 इज द नंबर जहाँ पे आप मुझे कॉल करेंगे और मुझे बताएंगे. मैं आपसे 3 सवाल करने वाला हूँ जहाँ पे आपको जवाब देने फटाफट से विद इन 5-10 सेकेंड, और जैसे ही आपने दिया तो ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे और आप जीत सकते हैं डबल पास. लगता है आज किसी का डबल पास जीतने का कोई मन नहीं है. बट यस, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो यस, आप मुझे ये 3 सवाल के जवाब दीजिए फटाफट कि राहत फतेह अली खान जी जो हैं वो कौन से शहर में पैदा हुए थे पाकिस्तान के, पहला क्वेश्चन ये रहा. सेकंड क्वेश्चन है उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आखिरी सवाल है उनका सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ व्यूज जो ऑडियो में आते हैं वो कौन से गाने की हैं. आप मुझे 5599 पे बता सकते हैं, यानी कि मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग ऑफ राहत फतेह अली खान इन टर्म्स ऑफ द व्यूज. आप मुझे इसका जवाब दीजिए 5599 पे.

0: Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: For a limited time, ventilate four or more rooms in your home and you'll get one vent for free. That's right, one vent for free when you purchase a DVS home ventilation system. T's and C's apply.
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz।
5: गाड़ी चलती रहे, टेंशन बिल्कुल।

0: Tutoy plus 24-hour mobile service. For bulk orders, call Ron on 022-175-3941 or visit rpstires.co.nz or their Facebook page. RPS Tires. Drive safe, drive smart.
1: Non-stop Bollywood. Playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
2: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम
1: टेक टॉक।
4: टेक टॉक के सेगमेंट में आपका स्वागत है। वैसे मुझे कुछ कंप्लेन नहीं है दैट दे आर अनेबल टू हियर मी। वेल अभी जस्ट मुझे पता पड़ा है यस दिक्कत तो है थोड़ी, ये शायद कुछ आरएफ यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी में थोड़ी दिक्कत है बिकॉज ऑफ द वेदर। वेदर बहुत ही गंदा है अभी हाल फिलहाल, उस वजह से कुछ फ्रीक्वेंसी कहीं कहीं जगह शायद दिक्कत दे सकती है। बट यस पुके को साउथ की तरफ से शुडंट बी अ प्रॉब्लम, बट थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो। आप बस बने रहिए, होपफुली ये जो सिचुएशन है वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए बाय वेदर एंड हमारी टीम लगी हुई है उस पर। बट यस एआई कंपनी एंथ्रोपिक, ये टॉकटेक की न्यूज़ है जहाँ पे क्लॉड टैग नाम का नया एआई फीचर्स लॉन्च किया गया है जो अब रिसर्च प्रीव्यू के रूप में स्लैक यूजर्स के लिए अवेलेबल है। और इस फीचर को ग्रुप चैट में क्लॉड टाइप करके बुलाया जा सकता है, बिल्कुल एक टीममेट की तरह। वैसे क्लॉड टैग कन्वर्सेशंस को समझ सकते हैं और टास्क को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट अपडेट को प्रोडक्टिविटी प्रोएक्टिव हाईलाइट भी कर सकते हैं। इसका मेन एम है वर्कप्लेस कोलैबोरेशन को और भी एफिशिएंट बनाना ताकि एम्प्लॉइज एआई के साथ टीम में काम कर सके। एंथ्रोपिक के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर्स कंट्रोल कर सकते हैं कि क्लॉड टैग किस डेटा और टूल्स तक एक्सेस रख सकता है। यह फीचर फिलहाल क्लॉड एंटरप्राइज और टीम कस्टमर्स के लिए बेटा में है और कंपनी इसे जल्द ही दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी एक्सपैंड करने की प्लानिंग कर रही है। वैसे यस जस्ट इफ यू डोंट नो टैग क्लॉड जो है वो बेसिकली काफ़ी हेल्पफुल है आपके बिजनेस के लिए। सो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट कि आप कैसे अपने सोशल मीडिया के यूज़ को इन्हेंस कर सकते हैं अपने बिजनेस में तो एक बार क्लॉड यूज़ करके देखना, क्या पता आपके यू नो क्लॉड आपका एक फ्रेंडली सोशल मीडिया मैनेजर बन क्या साबित हो। सो यस एक बार आप ट्राई करिएगा एंड सी हाउ दिस वेबसाइट कैन हेल्प इन योर बिजनेस।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। सो वेल, कुछ मैसेजेस मिले हैं जो मैंने सवाल किया था रिगार्डिंग राहत फतेह अली खान। मुझे कॉल्स भी आए हैं, वो बता लगे उनके कॉल जो है मुझे ऑफ एयर के टाइम आए थे, बट फिर भी उन्होंने जवाब जो है सही दिए और वो हो चुके हैं रजिस्टर फॉर द ड्राइव शो, सॉरी फॉर द ये जो शो होने वाला है राहत फतेह अली खान का, उसमें उन्हें मिलेगा एक डबल पास। जी हाँ, आई मीन ड्रॉ में शामिल हुए अभी तक, तो अभी तक उनका नंबर नहीं लगा है, बट यस, अगर वो जीतते हैं तो वो जीत जाएंगे और वो शो देखने जाएंगे फॉर राहत फतेह अली खान, जो होने वाला है बहुत ही जल्द। तो यस, कंग्रेचुलेशन। वैसे यहाँ पे मैंने एक सवाल किया था, मैं बाकी के दो तो नहीं बताऊंगा, ऑफकोर्स कुछ अभी भी आ रहे हैं मैसेज, आधे सही हैं आधे नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं सकता, बट यस, एक सवाल का जवाब जो है वो सबने सही दिया है और वो है कि विच सॉन्ग इज द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग एज पर द व्यूज फॉर राहत फतेह अली खान। और उनका ये गाना है ज़रूरी था, तेरी बाहों में न न न न न न न न, हमें वो गाना याद नहीं एग्जैक्टली बट यस, इसी तरीके से न न न न न न न न न न न न न न न न, ऐसा कुछ है, राइट। वेल यस, उसने 1.75 बिलियन व्यूज कलेक्ट किए हैं। वाओ, यानी कि इतनी बार उस गाने को सुना गया है, देखा गया है। 2014 में ये रिलीज हुआ था, राइट आफ्टर द बिग बॉस, जो उस टाइम का एडिशन था वो हुआ था, जिसमें गौहर खान जीती थी और उसके जस्ट बाद ऑफ कोर्स दे वर द मोस्ट पॉपुलर कपल, तो उन्हीं के ऊपर फिल्माया भी गया। यस, बहुत ही बढ़िया यार। उसके बाद जो उनका जो सेकंड गाना है जो मोस्ट पॉपुलर है, वो रहा है सिम्बा का तेरे बिन, रणवीर सिंह और सारा अली खान की पिक्चराइजेशन में ये फिल्म आया गया है। सो यस, 664 नहीं कितना हुआ, ये 644 मिलियन व्यूज उसको मिले हैं, 644, दैट इज सो कूल, दैट इज सो कूल। बट यस, अभी कुछ और भी चीज़ें बात करते हैं। एक आर्टिकल मुझे मिला है, जाने से पहले मैं उस आर्टिकल पर भी थोड़ी नज़र दे देता हूँ कि आप जब खाना खरीदते हैं या फिर खाना जस्ट देखते ही हैं, सडनली आपके दिमाग में उसका टेस्ट क्यों आ जाता है, कभी सोचा है आपने? वेल, डेफिनेटली आपके साथ हुआ ही होगा ये। वेल, रिसर्च के अकॉर्डिंग ये हमारे ब्रेन की पावर की वजह से होता है, बिकॉज जब हम किसी फूड को इमेजिन करते हैं तो ब्रेन टेस्ट, स्मेल और टेक्स्चर को एक मेंटल एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकता है। और साइंटिस्ट ने भी ये पाया कि जब लोग भूखे होते हैं यानी कि हंगरी, तो उनका ब्रेन जो है फूड के फ्लेवर को ज़्यादा क्लियरली इमेजिन कर पाता है। हंगर से फूड की क्रेविंग नहीं बढ़ाता, बल्कि ब्रेन को फूड की जो फूड का जो एक्सपीरियंस है उसका भी सिनेरियो जो है वो क्रिएट करता है, सिमुलेट करता है। वैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो के रिसर्चर्स ने कहा है कि एक्सपेरिमेंट्स में हंगरी पार्टिसिपेंट्स को फूड का टेस्ट और ईटिंग एक्सपीरियंस इमेजिन करना ज़्यादा इजी लगा कंपेयर टू जब वो पेट भर कर खाते हैं। जी हाँ, यानी कि अगर उनका पेट फुल है उसके बाद वो फूड देखते हैं तो शायद उन्हें इतना नहीं हो, बट जब आप भूखे हो तब आपको जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाता है आपके ब्रेन को। वेल यस, इसका रीज़न ये होता है क्योंकि ब्रेन पहले ही से ही फूड को एन्जॉयबल एक्सपीरियंस बना लेता है, इस वजह से ये सिचुएशन क्रिएट होती है। बट यस, रिसर्चर्स ने ये भी बताया कि बार बार फूड को इमेजिन करने से उसकी अट्रैक्शन थोड़ी कम भी हो सकती है, लेकिन ये एक्चुअल ईटिंग एक्सपीरियंस को कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं करता। मतलब ब्रेन फूड का आइडिया बना सकता है लेकिन असली टेस्ट जो है वो खाने का एक्सपीरियंस से ही आता है। जी हाँ, वेल, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को आर्टिकल ये। एंड यस, ICC, अभी फुटबॉल की भी अगर बात करें तो मेजर चेंजेस तो नहीं दिख रहे हैं। अभी हाल फिलहाल मैच चल रहा है बिटवीन कोलंबिया वर्सेस कॉन्गो, 45 यानी कि हाफ टाइम होने वाला है थोड़ी देर में, और अभी तक एक भी गोल नहीं हुआ है दोनों तरफ से, 3 मिनट एक्स्ट्रा उन्होंने किए हैं, बट लेट्स सी। मैचेस की अगर बात करें तो आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में भी मैच था जिसमें पाकिस्तान 113 रन से जीत चुकी है और लग रहा है काफ़ी इजी हो चुका है उनका रूट फॉर सेमीफाइनल। श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड के बीच में मैच हुआ जिसमें श्रीलंका जीत गई, एंड देन न्यूजीलैंड स्कॉटलैंड के बीच में भी मैच हुआ था जिसे न्यूजीलैंड ने 6 विकेट से जीत लिया, यानी कि आगे बढ़ने की होड़ में अभी भी न्यूजीलैंड बरकरार है। अगर स्टैंडिंग की अगर बात करें तो अभी ग्रुप ए में ज़्यादा मेजर डिफरेंस आया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया 4 खेली 4 जीत चुकी है, और जवाब में अगर देखें तो उधर भी न्यूजीलैंड 3rd नंबर पे ही है, उनको भी 1-2 मैच और जीतने पड़ेंगे अगर टॉप 2 में आना है तो। बट यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आप बने रहिए क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप क्योंकि और भी अपडेट आपको नेक्स्ट शो में मिलते रहेंगे, यानी कि कॉफ़ी ब्रेक में एंड ड्राइव शो में, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बने रहिए एंड सुनते रहिए उनका अमेजिंग शो। द
तब तक ले मैं निकलता हूँ, आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम 12 से 3। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।

0: brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हल काफी बवाल. आज के दिन ढेर सारी बारिश हो रही है. डाउनपोर्स है पॉसिबल इन नॉर्थ ईस्ट दिस आफ्टरनून. गस्टी नॉर्दर्लीज का भी साथ रहेगा. फील्स लाइक 12 डिग्रीज राइट नाउ. ओवरनाइट इज गोइंग टू बी अराउंड सिमिलर टेम्परेचर 12 के आसपास. 5:14 पे होगा सनसेट.
0: द बीट ऑफ बॉलीवुड.
2: वर्ल्ड्स बेस्ट. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
3: कॉफी ब्रेक विद सैंडी.
0: With Sandy and Rizbe.
4: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
1: आज है बुधवार, वेनसडे 24th of June, एंड वाई शुड सैंडी हैव ऑल द फन एंड वाई शुड यू हैव ऑल द फन. आपके फन को भंग करने आ गया हूँ मैं.
5: या गुड आफ्टरनून गाइस. गुड आफ्टरनून रुज़बे. कैसे हो तुम?
1: वेरी गुड सैंडी. हाउ आर यू डूइंग?
5: आई एम गुड एज वेल. थैंक यू सो मच पूछने के लिए. यहाँ
1: कैसा लग रहा है आराम करके साइड में बैठ के?
5: अच्छा लग रहा है.
1: अच्छा लग रहा है ना?
5: या तुम्हें पता नहीं कैसा फील होता है.
1: मुझे नहीं पता ना, मैं हमेशा यहाँ पे होता हूँ ना.
5: या ओके.
1: मेरे शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ हो रहा है.
5: ओ, उससे याद आया केतन भी यहाँ पे है. हाय केतन.
1: एक मिनट. इससे याद आया तो कौन सी बात से याद आया आपको?
5: मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल.
1: मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है क्या? ऐसे मतलब
5: ये केतन काफी बार बोलता है
1: गलत इस्तेमाल कर रहा है वो.
5: नहीं, केतन का ऐसा बहुत वो रहता है ये कि उसकी शक्तियों का बहुत गलत इस्तेमाल होता है.
1: अच्छा, ऐसा
5: उसको उसका मानना रहता है काफी सालों से.
1: प्लीज एक्सप्लेन.
6: मैंने कब बोला?
5: अरे तुमने बहुत बार बोला है.
6: मेरे पे ही क्यों आपको याद आया? मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है.
5: मुझे बताओ तुम्हारी शक्ति क्या है?
6: मैं पता आज क्या नोटिस किया गया, आज थोड़ी सी ना पावर जो है ना सैंडी की.
1: हाँ.
6: जो ऑरा है वो थोड़ा वीक लग रहा है.
1: क्या बात
5: वीक
1: कर
5: लग रहा है?
6: द रीजन इज वो हर छोटी डॉ में फंसते जा रही है. हर थोड़ी थोड़ी बात में तेरे को या तो तेरे को या मेरे को या प्लीज हेल्प. आई एम स्टक हियर.
5: पकड़ी जा रही हूं. नहीं मुझे ये बताओ ना तुम्हारी शक्ति क्या है, पावर क्या है तुम्हारी?
6: मेरी शक्ति?
5: हाँ, तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? नॉट इन लाइफ स्ट्रेंथ क्या है तुम्हारी, एज इन की एबिलिटी या फिर स्किल कह लो.
6: यार स्किल मतलब किस हिसाब से पूछ रहे हो? नॉर्मल अगर नॉर्मल उसमें बोलोगे तो मैं सिंगिंग बोलूंगा. डेफिनेटली सिंगिंग बोलूंगा. प्रोफेशनल अगर बोलूंगा तो क्रिएटिविटी. तो ऐसे घूम के कान पकड़ा जा रहा है.
1: नहीं लेकिन ऐसा होता है कभी कभार. मतलब मैंने सुना है तेरे मुंह से ये डायलॉग काफी बार, और वो तब सुना है मैंने जब केतन हमारे वीडियो एडिट करते होते हैं और हम उसको बोलते हैं कि यहाँ से ना ऐसा तब जाके केतन बोलता है कि भाई क्या है, चाहते क्या हो?
5: बुश बुश बुश क्या था, क्या डालूं मैं वहां पे?
6: उसको बोलना पड़ता भाई मैं वीडियो एडिटर हूं, मैं साउंड इंजीनियर नहीं हूं.
5: हां मैं माइंड रीडर नहीं हूं.
6: हां एक्चुअली
1: या
6: ट्रू. बट हां मैं ये भी बोला था कि थोड़ी देर में हमें कॉल करेंगे आयुष, बिकॉज उसने एक काफी बढ़िया होमसिक रेमेडीज बताई थी फॉर पीपल हु फील कॉन्स्टिपेसी और ये सारी चीजें. तो उसको लेके उसने काफी मस्त रेमेडी बताई थी
1: कॉन्स्टिपेशन के लिए.
6: हाँ, उसकी रेमेडी बताई थी उसने.
5: ओके.
1: हाँ, हाँ.
5: ये तुमने पूछा था?
6: अरे, मैंने पूछा नहीं.
5: अच्छा.
6: मैंने पूछा नहीं, मैं तो बस like you know I always yeah. ask like homesick remedies agar aise kuch hai to bataiye. Haan. To usse call aaya tha.
5: Oh wow.
6: So he thought that this is nice topic to discuss on. Kya ho gaya bhai? Maine nahi pucha bhai, mere ko kuch nahi ho raha hai. Are bhai yaar,
1: but koi problem nahi agar hua to bhi yaar, this is no problem.
5: Okay.
1: Ye Sandy
6: ye mere ko lag raha usko hua hai.
1: Ayush ko?
6: Haan. Lagaya jaye if possible.
1: Haan haan lagao. Haan
5: haan.
6: Wahi pe recent mein hoga.
1: हाँ, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम यार उसको? ये वाला
6: अननोन वाला.
1: अच्छा,
5: उसने बोला कि मैं एक रेमेडी बताना चाहता हूँ.
6: हाँ, मैंने ये नहीं पूछा भाई कि किसको हो रहा है, क्या हो रहा है.
5: नहीं, अभी जो सुन रहे हो उनमें से किसी ना किसी को तो हो ही रहा होगा.
6: डेफिनेटली हो रहा होगा.
1: नहीं, ये तो नहीं लग रहा है भाई इसका. इसको बोल के प्राइवेट नंबर का वो करे,
5: या फिर उसको बोलो कॉल करे 0800 हम इज अ नंबर. आयुष अगर आप सुन रहे हो तो कॉल करो यहाँ पे. आपने अभी आपकी बात हुई थी केतन के साथ, तो तुम्हारा को सेगमेंट होता है ना केतन, क्या होता है उसमें? तुम रेमेडीज पूछते हो.
6: हाँ, लाइक एनीथिंग जो आप मिस करते हो बीइंग फ्रॉम योर होम टाउन, या फिर कुछ लोग होते हैं जो डिफरेंट सिटी से भी डिफरेंट सिटीज में भी शिफ्ट होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल मैं हुआ इन वकागिल से. तो कौन सी ऐसी चीज जो मिस करता हूँ? तो मैं तो मुंह पे बोलता कुछ भी नहीं.
5: अच्छा,
6: सिवाय ट्रैफिक के.
1: इन वकागिल से यहाँ पे तो कौन सी चीज मिस करता है? तो वो है लोनलीनेस.
6: नहीं ऐसा नहीं है,
1: कागिल में लोनलीनेस होता है ना यार।
6: नहीं भाई, नहीं गया गुजरा गांव नहीं है वो, मतलब अच्छा खासा शहर है।
1: खुद नहीं ऐसा बोल रही है कि गया गुजरा गांव।
6: अरे आई एम, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है वो भी तो जान लो।
1: आई लाइक
6: पीपल जहाँ पे ऐसे भीड़ भड़ाका हो, ये सारी चीजें हैं वो चीज। तो उसके कंपेयर में अगर देखा तो इन्वोकागिरी इज वेरी डेड।
1: अच्छा
6: कि वहाँ पे
1: बुरा नहीं है, इट इज ओनली वेरी
5: लोनली नहीं है, डेड है।
6: नहीं भाई, लोनली ओनली व्हेन यू डोंट हैव फ्रेंड्स।
1: चलो ठीक है, हमारे साथ आयुष अभी ज्वाइन इन कर चुके हैं। आयुष हाय, आपको पता तो चल गया रहेगा हम कहाँ पे।
3: हाउ आर यू?
1: वेरी गुड।
5: आप कैसे आयुष? आप लाइव ऑन एयर है अभी?
1: लेकिन इम्पोर्टेंट बात आपसे करना चाह रहे हैं। केतन ने यहाँ पे बोला है कि आपके पास काफी सारी तरकीबें हैं और अभी रिसेंटली कॉन्स्टिपेशन को लेकर आपने अलग ही कुछ PhD की है।
3: यार मैं उनको यही बता रहा था, मेरी जो मम्मी है, मेरी मम्मी इज लाइक वेरी मच इनटू ऑल दिस होम रेमेडीज एंड स्टफ। तो लकीली आई हैव फाउंड द नेम ऑफ द लीफ दैट आई वाज मिसिंग ऑन व्हेन आई कॉल्ड हिम लास्ट टाइम। तो इट्स रियली अमेजिंग, इट वर्क्स लाइक मैजिक। सो इट्स लाइक यू नीड टू हैव मिश्री, यू नीड टू हैव सौंफ, एंड देन देयर इज लीव्स कॉल्ड सेना लीव्स, SENNA।
5: और उसको पता है हिंदी में क्या बोलते हैं या कुछ और भाषा में?
3: हिंदी में नॉर्मली लोग सनाया लीव्स कहते हैं।
5: ओके, सना लीव्स या सनाया लीव्स। और ये यहाँ पे मिलते हैं न्यूजीलैंड में?
3: ये मिलने चाहिए इंडियन शॉप पे।
5: ओके, अच्छा इंडियन शॉप में मिलते हैं, ठीक है।
3: या आई थिंक मिलने चाहिए, बट इट वर्क्स रियली रियली वेल।
5: तो मतलब इन सबको मिक्स कर दो और उसको खाओ।
3: हाँ जी, मतलब आप उसको जैसे आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो, स्टमक में इश्यूज हो जैसे कॉन्स्टिपेशन का, तो इट वर्क्स वेरी वेल। यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन एक्चुअल मेडिसिन लाइक एलोपैथिक मेडिसिन।
6: अच्छा आयुष, यहाँ पे सवाल ये कि तुम्हारे ऊपर कितनी जल्दी हो गया काम इसका?
3: मैंने जब इंडिया में था तभी किया था और बहुत अच्छा काम करता
6: it's
3: था
6: okay, it's okay.
3: मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे।
6: नहीं, लेकिन आज जैसे मैंने होम सिक रेमेडीज का तूने पूछा तो यही टॉपिक क्यों तुम्हारे दिमाग है? अब यहाँ पे क्या मेरी खिंचाई हो रही है?
1: नहीं,
6: इनको
1: नहीं,
6: लग रहा है कि मेरे को हो रहा है इसलिए मैंने साइलेंटली तुमसे पूछा।
1: मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ, नहीं कि आई डोंट थिंक ये ऐसी चीज है जिसका हम मजाक उड़ाएंगे। अगर समझो किसको हो रहा भी है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है।
3: बिल्कुल,
1: और मुझे लगता है कि इसके बारे में अच्छा हुआ तुमने इसके बारे में रेमेडी दी, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां भी होती है।
5: बीमारियां और बच्चों में काफी बार ये होता है।
1: या
5: एंड आई थिंक होम रेमेडीज जो है ये बच्चों के लिए। आयुष, इज इट ओके ये बच्चों के लिए भी? बिकॉज़ क्या है,
3: मैं बल्कि आपको ना, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं। रुको, मैं आपको एग्जैक्ट, अगर इफ एनीवन इज ऑब्वियसली लिसनिंग मी, लिसनिंग टू मी ऑन द रेडियो, मैं आपको एग्जैक्ट इसका कॉम्पोजिशन बताता हूँ। तो ऑब्वियसली इसमें यू हैव टू हैव सनाया के पत्ते, मोटी सौंफ, देसी मिश्री, ऑल थ्री 100 grams ईच।
5: ओके,
3: एंड आफ्टर कीपिंग इन सन फॉर सम टाइम दीज शुड बी ग्राइंडेड एंड मिक्स्ड टू फाइन पाउडर। Dosage, 1/2 teaspoon at night with water whenever required. Yep. So okay. Only the sanaya leaves has to be kept in the sun, not the mishri.
1: वैसे सनाया लीव के बारे में मैं अभी पढ़ रहा था, जब आपने बोला उसको सोनमुखी भी बोलते हैं काफी जगहों पे, या फिर सेनापति बोलते हैं उसको अलग अलग जगहों पे।
3: सेनापति, या
1: हाँ। और ये इन जस्ट इन दिस सेल्फ ऑल्सो इज यूज टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, प्लस डिटॉक्सिफिकेशन भी इसके लिए होता है, उसमें भी यूज होता है, और स्किन हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। सो या आई थिंक एक सेइंग भी है, आपको पता है ये सेइंग? जो दिन झाड़ा वो दिन सारा।
5: नहीं,
1: इसका मतलब जिस दिन सुबह सुबह आपने हल्का हुआ, आपने हल्का किया, उस दिन आपका बहुत बढ़िया जाएगा। नहीं सच्ची में, सीरियसली, एंड दैट इज
6: नहीं, ये तो हाँ, मेक सेंस।
3: एक और बहुत अच्छा मतलब एक सेइंग है, व्हेन स्टमक बिकम्स अ पॉट ट्रबल इंक्रीज अ लॉट।
1: ओह दैट्स सो,
5: देखो सेटल नहीं हो ना आप, हल्के नहीं हो आप.
3: नॉर्मली लोग कहते हैं 95% ऑफ द प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी दे स्टार्ट विद फ्रॉम द स्टमक.
6: जानकारी रखते
1: हैं. हमें लगता था सिर्फ म्यूजिक कॉम्पोजिशन करते हैं आयुष, लेकिन अभी बाकी कॉम्पोजिशन भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने. ग्रेट,
5: सही है.
1: थैंक्स आयुष, थैंक्स फॉर योर टाइम मैन.
5: जब तक आप बात नहीं कराते हैं हम मानेंगे नहीं कि आप कृति सेनन के भाई.
6: अरे हाँ,
5: रिमेम्बर दिस.
6: अरे हाँ,
1: क्यों प्रेशर डाल रहे हैं यार.
6: आयुष बोला है ऐसा.
3: कजिन, शी इज माय फर्स्ट कजिन.
5: वही ना, हम नहीं मानते. ठीक है,
6: नहीं तो आप अपनी अपनी बहन की मूवी देख के आए, नहीं देख के आए.
1: कौन सी मूवी?
6: कॉकटेल 2.
3: नहीं यार, अभी तक नहीं देखी.
5: लो तो बिल्कुल नहीं मानते.
3: मम्मी पापा लोग देखा है.
6: घर वाले देखो पहले.
3: मैं नहीं जा पाया.
6: नहीं नहीं,
1: चलो ठीक है.
5: थैंक यू आयुष, बाय.
3: ओके, बाय बाय,
1: बाय बाय. तो ये थे आयुष जो केतन के साथ काफी परफॉर्म भी करते हैं ना.
6: यस,
5: इनका बैंड है बेनाम्स.
1: बेनाम्स, द बेनाम्स,
5: द बेनाम्स.
1: अच्छा, तो अभी
5: गाने के साथ शुरुआत करते हैं. रुस्बे, अभी
1: काफी भसड़ तुमने मचाई है यहाँ पे, तो अभी हम वैसे ही टाइप का गाना आपको सुनाएंगे.

0: मोहित चौहान की आवाज और आप सुन रहे थे ये बहुत ही बढ़िया सा गाना हवा हवा फ्रॉम रॉक स्टार
1: सैंडी भी है यहाँ पे इम्तियाज अली की मूवी का ये गाना है
0: जी
1: बहुत ही अच्छा इनफैक्ट ये गाना सुन के ऐसा फील होता है कि बहुत सिमिलर काइंड ऑफ वो गाने अपने हर एक मूवी में रखते हैं जहाँ पे स्टोरी टेलिंग है
0: जैसे मैं वापस आऊंगा मैं भी एक गाना उसने जैज डाला है ना उस गाने में क्या नाम है गाने का कुछ आइडिया
1: मस्करा हाँ वो जो मस्करा लगाते हैं
0: अच्छा
1: वैसा वाला
0: राइट
1: मस्करा भैया उस वे से बट वो उनके कुछ गाने ऐसे रहते हैं बीच में जहाँ पे देयर इज अ स्टोरी टेलिंग एआर रहमान की कॉम्पोजिशन होती है
0: एआर रहमान म्यूजिकल
1: वैसे एक आर्टिकल आया रुजबे जो एनजेड मसल जो है सो क्लेम्स ऑफ अनसेफ प्रैक्टिस एट एनजेड मसल जो है ये ऑफिशियली इन्वेस्टिगेट होने वाली है सो क्लेम्स है कि सप्लीमेंट रिटेलर है एनजेड मसल जो कि इन्होंने ब्रीच किया है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को जिसे ऑफिशियली वो इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर होने वाली है सो न्यूजीलैंड फूड सेफ्टी ने कंफर्म किया है वाया ईमेल कि टू द आरएनजेड कि ऑफिसर्स स्पोक विद कंप्लेंट्स ऑन ट्यूसडे एज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन
0: अच्छा तो फूड सेफ्टी को लेकर कुछ हुआ है एंजर मसल बहुत पॉपुलर ब्रांड है न्यूजीलैंड में काफी लोग एंजर मसल के प्रोटीन लेते हैं
1: तो बेसिकली एक यूट्यूब वीडियो पे ब्रीच हुआ है
0: अच्छा
1: या इन द रीसेंट यूट्यूब वीडियो सो देयर इज अ ब्रीच ऑफ द फूड एक्ट 2014 सो फॉर्मर एंजर मसल एम्प्लॉय एंड टू अदर पीपल जो है हु हैव सप्लीमेंट ब्रांड They released a 45-minute YouTube video at the weekend detailing ki what they claim to be a questionable practices.
0: Oh, injured muscle mein.
1: Yes.
0: Achha, so injured muscle ki what lagne wali hai, bhai?
1: Yeah, to unke upar bhi investigation jo hai ye shuru ho chuka hai.
0: Yeah, and वैसे भी अभी आजकल proteins को लेकर और ये सारी सब चीज को लेकर healthy food को लेकर लोग बहुत conscious हो रहे हैं ना?
1: हाँ या.
0: हर एक चीज zero sugar हो रही है, हर एक चीज मतलब अभी तो यूएस में कनाडा में हाई शुगर के स्टिकर्स लगते हैं चीजों पे यहाँ पे अब तक नहीं शुरू हुआ है वो मैंने नहीं देखा है
1: हाई शुगर का नहीं हमने देखा हाउ कम न्यूजीलैंड इज वेरी स्ट्रिक्ट ना फूड सेफ्टी को लेके
0: नहीं बट वो फूड
1: रेगुलेशंस को लेके
0: हाँ बट ये हाई शुगर वाली चीजें या मुझे लगता है ये पूरा यूएस का ही किया करा है
1: ओके
0: बार बार कोई नया ट्रेंड लेकर आते पहले वो शुगरी प्रोडक्ट्स का ट्रेंड लेकर आए थे काफी सालों पहले अभी उनका नया ट्रेंड आ गया ना ऑर्गेनिक हेल्दी ये वो अब उसके बाद फिर कुछ और नया ट्रेंड आएगा तो ये इट्स कैपिटलिज्म
1: डू यू रीड गाइस मतलब आपसे पूछना चाहेंगे क्या आप रीड करते हैं जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं कि उसमें शुगर कितनी है स्पेसिफिकली शुगर के बारे में
0: आजकल मैं ज्यादा पढ़ने लग गया हूँ इसके बारे में शुगर कंटेंट और
1: मेरे को लगता है तभी हम पढ़ते हैं अंटिल अनलेस यू आर अवेयर अबाउट योर फिटनेस जब आप अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर रहे होते हो रेगुलर चेक्स कर रहे होते हो
0: और जिम में जा रहे होते हो
1: हाँ देन आप जाके चेक करते हो स्पेशली जब आप मेडिकली अपनी चीजों के ऊपर ध्यान दे रहे होते हो मेरे को लगता है तब आप ज्यादा पढ़ते हो अदरवाइज हम ध्यान नहीं देते हैं
0: और या तो आप जिम बहुत ही रेगुलरली जा रहे हो या तो बिल्कुल नहीं जा रहे हो
1: Yeah.
0: क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ तो मैं चेक करता हूँ कि भाई कहीं से भी कम हो अगर तो बेटर है
1: ना ही आए तो अच्छा है
0: और जो बहुत ही रेगुलर जाते हैं वो तो हर एक चीज में देखते हैं भाई
1: वो तो ज्यादा देखते
0: हैं उन लोगों का तो अलग ही नाटक होता है मेरे को वो भी बहुत एक्सट्रीम लगता है वो जब ऐसा करते है ना मुझे ऐसा लगता है कि बस यार थोड़ा जिंदगी जी भी लो
1: 100% तो अभी बताइए कि डू यू चेक लेबल्स वहाँ पे जो लिखे होते हैं कि इसमें कितना शुगर कंटेंट है या फिर यू डोंट केयर अबाउट द शुगर कंटेंट एट ऑल 5599 कॉफी ब्रेक विद सैंडी उससे कोई प्रश्न सवाल नहीं पूछते गुस्सा हो जाती और जबरदस्त कर देते सब Jen didn't think she needed a DVS system. Oh, I've got insulation in that. But Jen had forgotten about the mold on her walls and curtains. Ah, yeah. So Jen got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mold and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
2: My mate Sam hurt his shoulder at basketball. He got sorted with a rehab plan and was doing his exercises, but he started feeling a bit down. So me and the boys made sure to visit him, and he helped with some coaching, so he still felt like part of the team. It meant he stayed active and on top of the injury. Then when he recovered, he was back to his awesome self.
3: If you've got a sprain or strain, staying connected to friends, whānau and things you love doing can help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
4: Get 199 deals this week only at Trade Depot. Chest freezers, 199. 32-inch smart TVs, 199. Ceramic cooktops, 199. Laundry tub and cabinet, 199. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
5: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry, now they are. Someone's just eaten, and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
6: Wo indelible homes wali kahani sunao na.
7: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
8: And award goes to Indelible Homes.
7: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
9: Kahani of Indelible Homes.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आपके लिए एक से गाने यहाँ पे और इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह लेकर आते हैं हम.
1: Yeah, and आज ड्राइव शो में आपके लिए हम नया पॉडकास्ट रिलीज करने वाले हैं. Now this podcast will be about what is going on in our life right now. हर किसी की लाइफ में.
0: Which is AI.
1: AI के ऊपर हमने एक एपिसोड रिकॉर्ड किया है. डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं आज ड्राइव शो में. एंड आई विल से कि एक ऐसा पॉडकास्ट रहने वाला है जो आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, एनी फील्ड यू आर वर्किंग, चाहे वो आपका ड्राइविंग वाला जॉब है, चाहे वो बैठने वाला जॉब है, चाहे वो घूमने वाला जॉब है, कैसा भी जॉब है, ये एपिसोड आपके लिए रहने वाला है.
0: बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच वाला ये एपिसोड है और ऑनेस्टली बोलूँ तो आई थिंक इट्स जस्ट गोइंग टू बी वन ऑफ द एपिसोड्स ऑफ अ सीरीज, क्योंकि ये इतना एक्सपेंसिव टॉपिक है, इतना ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है कि इसमें हमको काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा. बट यू नो वॉट वी हैव डन, ये एपिसोड इज लाइक स्टेप वन ऑफ हाउ यू कैन स्टार्ट AI if you don't know anything about AI. Like for example, Sandy और मैं, हम लोग को मालूम है थोड़ा बहुत AI के बारे में, हम यूज़ भी करते हैं, बट through this episode we have understood how we can streamline that, structure it more properly.
1: क्या सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हैं ये भी हमें पता चला actually में.
0: जी, और क्या हम optimize कर सकते हैं चीजें, क्या कौन सी ऐसी चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीजें, डे टू डे चीजें जिसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं थ्रू AI, इन चीजों के बारे में बात हुई है, रिस्क के बारे में थोड़ी बहुत बात हुई है,
1: बहुत कुछ हमने बातें की है. तो ये एपिसोड हम 4 बजे के बाद आपके लिए रिलीज करने वाले हैं, इसके लिए भी स्टे ट्यून्ड.

0: भीड़भाड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424।
4: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
5: Roadside drug testing is here. New Zealand police can now test drivers with a saliva test anytime, anywhere. This screens for the recent use of drugs, including cannabis, methamphetamine, MDMA, and cocaine. Learn more at police.govt.nz/drugdriving.
6: TradeDepot.co.nz. Get 199 deals this week only at Trade Depot. Chest freezers, 199. 32-inch smart TVs, 199. Ceramic cooktops, 199. Laundry tub and cabinet, 199. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
7: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.

कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड अभी हॉलीडेज आने वाली है, बच्चों की छुट्टियाँ आने वाली है। विंटर स्कूल हॉलीडेज के टाइम पे ढेर सारी एक्टिविटीज़ है जो अपने बच्चों के साथ जाके आप कर सकते हैं। आउट एंड अबाउट ऑकलैंड वैसे ढेर सारी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करें जिसमें ड्रैगन बीच, साइलेंट डिस्को भी है माता रिकी के टाइम पे, सर्कस इन विंटर भी रहने वाली है एंड और भी बहुत सारी एडवेंचरस चीज़ें भी हैं। इनफैक्ट कुछ जगह पर जैसे कि वेस्टर्न स्प्रिंग कम्युनिटी हॉल में काफ़ी चीज़ें हो रही है जो कि फ्री टू अटेंड भी रहेंगी, बट डू चेक देयर वेबसाइट। फ्री कम्युनिटी इवेंट्स में कुछ है जैसे कि कार्डबोर्ड प्ले, सो अगर कार्डबोर्ड गेम्स खेलनी है तो सैटरडे 4 जुलाई को ये होने वाला है। के पॉप डांस गिव इट अ गो सेशन 1:30 AM एंड देन 12:30 PM ऑनवर्ड्स। देन हंगर बॉल इज अनदर वन जो कि होने वाला है 7 जुलाई को। देन 15 जुलाई को ड्रैगन बीट्स इज अनदर वन जहाँ पे ये सारी की सारी गेम्स जो है ये रहने वाली है। तो ये है वेस्टर्न स्प्रिंग कम्युनिटी हॉल में, बट यू नो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है। सो अगर अपने एरिया की आप लाइब्रेरी, अपने सबर्ब की लाइब्रेरी की एक्टिविटीज़ आप जाके चेक करते हैं ना, दे आर मल्टीपल एक्टिविटीज़ जो उस समय पर फ्री टू अटेंड होती है एंड बहुत अच्छा होता है बिकॉज बच्चे वहाँ पे बाकी बच्चों के साथ मिंगल भी करते हैं। एज अ पेरेंट ऑल्सो आप बाकी पेरेंट्स के साथ वहाँ पे मिंगल करेंगे, सो इट्स एक्चुअली गुड इन दैट वे एज वेल। सो अपनी लोकल लाइब्रेरीज़ की वेबसाइट पर जाके यू कैन ऑलवेज चेक जो फ्री एक्टिविटीज़ आप अटेंड कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ।

0: को.
1: जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको.
0: या
1: बताइए तो
0: आज ड्राइव शो में और भी बहुत कुछ होने वाला है. कुछ टॉपिक्स भी आपके लिए लेके आएंगे जहाँ पर डिस्कशन हम करेंगे. टिंसल टाउन में क्या हो रहा है ये भी हम आपको बताएंगे. 5 बजे के बाद आज क्या होने वाला है रुजबे?
2: सिचुएशनशिप.
1: सिचुएशनशिप में होता ये है कि हम आपको एक सिचुएशन देते हैं और आपको इस सिचुएशन, देखो इफ वी बी ऑनेस्ट, ये वाला जो सिचुएशनशिप वाला सेगमेंट है ये अब तक के लिए हिट एंड मिस रहा है. सो वी हैव टू वर्क ऑन दिस वन.
0: या सो हम
1: विद योर हेल्प.
0: या आज आपको एक सिचुएशन देने वाले हैं. उस सिचुएशन में अगर आप होते तो आप क्या करते, ऐसा सवाल आपके लिए रहने वाला है.
1: या फिर ऐसे सिचुएशन में आपके कौन है, ऐसा भी कर सकते हैं ना सैंडी.
0: या इट इज लाइक आइदर वे.
1: ऐसे सिचुएशन में आपके कौन है और आप किसको टैग करना चाहेंगे इसमें.
0: रिलेटेबल सिचुएशनशिप. सो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं. वो रहेगी 5 बजे के बाद. राहत फतेह अली खान के शो के लिए टिकट जीतने का मौका भी आपको मिलने वाला है. रैपिड फायर क्वेश्चंस रहने वाले हैं उसके लिए. उसके लिए भी स्टे ट्यून. एंड आज का पॉडकास्ट भी हम रिलीज कर रहे हैं.
1: मेरे को
0: वी कैन रिलीज इट नाउ ओनली.
1: नहीं, रिलीज करते हैं थोड़ी देर में. बट मेरे को आपको एक बात पूछनी है अबाउट सिचुएशनशिप. ये लाइक इज इट फन टू टॉक अबाउट अ फ्रेंड विदाउट नेमिंग देम बट देन टॉक अबाउट द सिचुएशन दैट दे आर इन एंड देन गेट योर फ्रस्ट्रेशन आउट कि यार मैं इसको बोला नहीं है ऐसा, फिर भी ऐसे ही करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, बिना नाम लिए. हाउ कंफर्टेबल वुड लाइक लेट्स से आवर लिसनर बी टू शेयर दैट?
0: अपने फ्रेंड की सिचुएशन शेयर करना बेसिकली.
1: नहीं, फ्रेंड की सिचुएशन नहीं शेयर करना है.
0: हाँ.
1: मैं एक सिचुएशन शेयर करूंगा यहाँ पे.
0: हाँ, उसमें अगर उनका फ्रेंड फिट होता है
1: तो आप उसको कॉल करके उसको बोलेंगे कि अरे यार मेरा दोस्त भी इसमें है और ऐसा ऐसा है, और उसके ऊपर बस बात करना, लाइक यू नो ऐसे मन की भड़ास निकालना.
0: देखो वो तो हमारे लिसनर ही आंसर दे पाएंगे. हाउ कंफर्टेबल आर यू?
1: हाउ कंफर्टेबल आर यू? बट आज मैं कोशिश करेंगे, आज हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसा कुछ आपके लिए लेकर आए.
0: या सो ये भी आपके लिए लेके आएंगे. लेट्स सी कितने कंफर्टेबल आप होते हैं, एक सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं, या फिर कौन है उस सिचुएशन में से क्या ज्ञान देना चाहेंगे, कुछ भी ऑन दैट लाइन.
1: या
0: सो आज का जो पॉडकास्ट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट. आई विल से ये हमने जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया ना, मेरे को लगता है रुजबे ये 3 सालों में हमारा पहला ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें हम लिटरली प्रॉपर बुक वाला ज्ञान दे रहे हैं.
1: हाँ, ये वाला
0: मतलब जैसे होता है ना कि आप बुक पढ़ के कुछ ज्ञान हासिल करते हैं.
1: एंड आई थिंक पहला हमारा
0: ये वो वाला एपिसोड
1: पहला
0: है.
1: ऐसा पॉडकास्ट है जो मुझे लग रहा है 90 मिनट्स तक चला है.
0: 90 मिनट तक,
1: इससे पहले कोई 90 मिनट्स चला है. आई थिंक अमाल के साथ जब बात हुई थी तब 2 घंटे बात की थी हमने. बट आई डोंट नो द एपिसोड वाज हाउ लॉन्ग. इट्स सो गुड ना कि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं अमाल मलिक के पॉडकास्ट के साथ. बट या
0: इमेजिन. बट या सो दिस एपिसोड, ये जो पॉडकास्ट है इज अबाउट AI. नाउ AI इज एवरीवेयर. आपकी रोज की जिंदगी में कई बार क्या होता है, अब क्या हो चुका है ना कि लोग गूगल की जगह AI पे जाके सर्च कर रहे हैं rather than using Google.
1: Google खुद AI use कर रहा है ना Sandy.
0: Google खुद भी AI use कर रहा है. Google पे आप search करते हो तो वो AI की तरह आपको answers दे रहा है. So AI is everywhere, जिससे आप ना भाग नहीं सकते हो. अगर आपको लगता है कि आपकी जो field है, जिस field में आप job कर रहे हो, यहाँ पे कहाँ AI आने वाली है, तो ऐसा नहीं है. It will be everywhere in one or other way. So इस episode में इन्हीं चीजों के बारे में हमने बात की है कि जो AI है, what does it actually mean for our lives and especially in New Zealand. So humne AI specialist ke sath baat ki hai jiska naam hai Darshit Pandey. Darshit Pandey senior principal engineer hai platform at Serco and AWS community builder bhi hai ye. So inhone AI ke bare mein acche se breakdown kiya hai and itne simple way mein guys inhone breakdown kiya hai na ki jaise ek 10 saal ke bacche ko samjha rahe hote hain. उन्होंने उस वे से ब्रेकडाउन किया है ताकि हमें अच्छे से चीजें समझ में आए,
1: क्योंकि सामने मैं बैठा था ना.
0: हाँ, और मैं भी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि AI के बारे में हमें पहले से इतनी ज्यादा नॉलेज रही है. इन्होंने बातें की है जॉब सिक्योरिटीज के बारे में, थ्रेट्स के बारे में, प्राइवेसी कंसर्न्स के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में. अगर आपको आज ही AI सीखना है तो आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी इन्होंने बातें की है. सो बहुत सारी बातें इन्होंने AI के बारे में इसमें की है. This is a must listen episode for you, for your kids, for everyone out there, because ये हमारा फ्यूचर है,
1: ये फ्यूचर है, ये इस दिस इज लाइक हाउ इन 2000s वी गॉट कंप्यूटर्स इन आवर लाइफ,
0: या
1: और हर कुछ कंप्यूटर, फिर रिलायंस हो गया कंप्यूटर के ऊपर हर एक चीज के लिए. आई थिंक एआई इज काइंड ऑफ दैट ओनली,
0: या इट इज,
1: और इवन मोर देन दैट आई वुड से, बिकॉज़ the way it is growing, like ek kuch numbers bhi share hue the na ki reaching a billion people ya aisa kuch fastest rahe AI.
0: So pehle jo phone aaye the, phone ko logon mein distribute hone mein kuch mahine lage ki smartphones ko
1: nahi, sabse pehle computers ko kaafi saal lage,
0: internet ko kaafi saal laga, fir smartphones aaye, smartphones ko spread hone mein kaafi mahine lage. AI आता है, AI कुछ दिनों में स्प्रेड होता है. तो इतना फास्ट AI हमारी लाइफ में है, एंड ये जो हमारी लाइफ में AI है, ये हमें कैसे फ़ायदा दे सकता है और किस चीज़ से आपको ध्यान रखना है, दिस इज़ एवरीथिंग इन दिस पॉडकास्ट. सो बेसिकली AI के बारे में कुछ भी आपको जानना है इस पॉडकास्ट में आपको मिलने वाला है. टाइप ड्राइव 15599, आपको फुल एपिसोड मिल जाएगा. ड्राइव लिख के भेजिए 15599 पर, फुल एपिसोड आपको मिलेगा. एंड अगर आप वैसे ढूंढना चाहते हैं रूवा पे जाके हमारे पॉडकास्ट में जाइए, अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रूज भी आपको मिल जाएगा. अदरवाइज स्पॉटिफाई पे जाके ढूंढिए. सो इट्स एवरीवेयर दिस पॉडकास्ट, जो भी स्ट्रीमिंग चैनल पे आप स्ट्रीम करते हैं पॉडकास्ट, आपको सब कुछ मिलेगा. बट ड्राइव लिख के भेजेंगे 5599 पर तो डायरेक्टली आपको लिंक मिल जाएगा.
2: छत पक्षियां रंगादी धूप बरसाती, सुन रंग धरती का गोटे रंगा है लहरिया, वो दोनों को ही चा

0: FIFAWorldCup.co.nz. You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits, FIFA World Cup 2026. ये जारी है अभी और काफी गेम्स हो रहे हैं इसके. आज गेम हुआ कोलंबिया और DR Congo.
1: Yeah, so इसमें कोलंबिया की जीत हुई 1-0 के साथ. उससे पहले वैसे आज पनामा और क्रोएशिया के बीच में भी मैच था.
0: क्रोएशिया की जीत हुई वहाँ पे.
1: Yeah, and आज
0: पोर्चुगल और उज़्बेकिस्तान के बीच में जो गेम हुआ उसमें पोर्चुगल की 5-0 जीत हुई यार.
1: 5-0 के साथ इमेजिन. एंड इंग्लैंड एंड घाना के बीच में ड्रॉ हुआ विद नील ऑल. सो कल वैसे स्विट्जरलैंड कनाडा के बीच में मैच है.
0: सुबह 7 बजे होगा वो मैच.
1: 7 बजे देन बोस्निया एंड कतार के बीच में एक्चुअली में जो मैच है ये भी रहने वाला है. पोर्चुगल के भी बहुत फैंस है. काफी लोगों ने पोर्चुगल के ऊपर भी प्रेडिक्शन लगा के रखी है.
0: कल मोरक्को और हाइती की भी मैच होने वाली है और स्कॉटलैंड और ब्राजील. मेरी टीम ब्राजील थी ना. कल मेरी ब्राजील है. सुबह 10 बजे कल मैच है उसका.
1: सो आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये आखिरी वर्ल्ड कप है ना, इसीलिए पोर्चुगल के को काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं.
0: ऑलराइट.
1: सो उनका आई थिंक ये लास्ट वर्ल्ड कप रहने वाला है.
0: और मेसी का भी ना कि नहीं.
1: Not sure.
0: Not
1: but
0: sure,
1: it's always Messi against Ronaldo. So
0: that's right. Okay.
1: Yeah, with the fans at least. ये उनका रहता ही है. So अगर आप support कर रहे हैं football में किसी team को, आप यहाँ पे share कर सकते हैं 5599 is the number. किसको आप यहाँ पे support कर रहे हैं. थोड़ी देर पहले हमने वैसे यहाँ पे आज का podcast release किया है जो कि AI के ऊपर है. बहुत ही भारी AI के ऊपर है जिसके बारे में थोड़ी देर में आपको हम सुनाएंगे भी. सो अगर आपको सुनना है पॉडकास्ट फुल एपिसोड ड्राइव लिख के भेजिए 5599 पर.

with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: Get 199 deals this week only at Trade Depot. Chest freezers, 199. 32-inch smart TVs, 199. Ceramic cooktops, 199. Laundry tub and cabinet, 199. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz
4: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
5: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. Bollywood's most wanted.
6: Kundi khadao, ya seedha andar aao.
7: Main laun apna A game.
5: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में सुन रहे थे आप ये बहुत ही बढ़िया सा गाना. यू आर लिस्निंग टू द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुजबे. एंड आज है वेडनेसडे और 4:30 बज रही है और हमारा अभी वक्त आ चला है टू स्पीक टू आर एक्सपर्ट. हमारे साथ सुनील चंद्रा मॉर्गेज एडवाइजर हमारे साथ ज्वाइन इन कर रहे हैं फ्रॉम स्क्विरल. हाय सुनील, हाउ आर यू?
1: हाय रुजबे, आई एम गुड. आप लोग कैसे हैं?
0: हम बहुत ही बढ़िया है. सुनील जी, आज आपसे बात करनी है अबाउट जो इन्वेस्टर्स है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स है, उनके अराउंड कोई इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है जो वो यूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यू नो गेटिंग मॉर्गेज एंड स्टफ.
1: हाँ जी, हाँ जी रुजबे जी, स्प्लिट बैंकिंग के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ. पहले तो मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ कि स्प्लिट बैंकिंग क्या है. इसमें ये होता है कि आपकी सारी लेंडिंग एक ही बैंक के साथ नहीं रहती, अलग अलग बैंकों में रखी जाती है. फॉर एग्जांपल, आपका होम लोन एक बैंक के साथ हो सकता है और आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किसी दूसरे बैंक के साथ.
0: राइट, ओके. सो ओके, सो दो बैंक्स आप यूज कर रहे हो वहां पे. लेकिन फिर ये स्ट्रेटजी, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर लाइक हाउ कुड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स? क्यों ऐसे दो बैंक, क्या फायदा होता है उससे?
1: देखिए, सबसे बड़ा रीजन है फ्लेक्सिबिलिटी. हर एक बैंक की लेंडिंग पॉलिसी अलग होती है. एक बैंक आपको एडिशनल लेंडिंग देने में कभी बार हेजिटेंट होता है कि इससे ज्यादा आपको लेंडिंग नहीं देंगे, जबकि दूसरा बैंक आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट कर सकता है. तो इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर्स के पास ज्यादा ऑप्शंस रहते हैं. और दूसरी, कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ इन्वेस्टर्स एक पर्टिकुलर बैंक के साथ अपनी लेंडिंग लिमिट को रीच कर लेते हैं. उससे ज्यादा बैंक बोलता है कि हम इसके बाद आपको लेंडिंग नहीं देंगे. तो स्प्लिट बैंकिंग में दूसरे लेंडर की पॉलिसी का फायदा उठाया जा सकता है, जो फ्यूचर प्रॉपर्टी परचेज के लिए अपॉर्चुनिटी बना सकता है. अभी देखिए, जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं ये बात ध्यान में रखते हैं और इसी हिसाब से प्लानिंग करते हैं. आज सही लोन स्ट्रक्चर चुनना फ्यूचर में प्रॉपर्टीज खरीदने के रास्ता आसान कर सकता है.
0: राइट, तो इसका मतलब ये है कि आज, मतलब अगर आज मेरे पास नहीं है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बट इज इट इम्पोर्टेंट फॉर मी टू स्टार्ट प्लानिंग फ्रॉम नाउ?
1: हाँ जी, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फ्यूचर में आपका गोल क्या है और आप क्या करना चाहते हैं. अभी कोई इन्वेस्टर्स जैसे कुछ प्रॉपर्टी लेते हैं, उनका इंटेंशन होता है कि हमें इस पे कल के जाके इसको डेवलप करना है. तो उस केस में स्ट्रेटजी, जस्ट एन एग्जांपल, कुछ और हो सकती है. रादर देन कईयों को होल्ड करना होता है कि आई वांट टू होल्ड दिस फॉर 10 इयर्स. तो अगर वो बात अगर आप आज सोचें वो ज्यादा जरूरी है रादर देन कि आपको लेटर ऑन रियलाइजेशन हो इसके बारे में.
0: राइट, सो ये स्प्लिट बैंकिंग जो आप बोल रहे हो, इससे क्या मुझे लाइक कैशबैक या फिर इंटरेस्ट रेट में कोई ऐसा फायदा हो सकता है?
1: देखिए, हो तो सकता है. कभी कभी कंपेटिटिव रेट्स और कैशबैक ऑफर्स मिल जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को सिर्फ कैशबैक पर फोकस नहीं करना चाहिए. लॉन्ग टर्म बोरिंग कैपेसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है.
0: राइट, ओके. सुनील, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए. मैं आखिरी सवाल बस ये पूछना है कि अगर हमारे कोई लिसनर है जो स्प्लिट बैंकिंग के यू नो के बारे में और जानना चाह रहे हैं कि कैसे वो अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद सके, हाउ व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग इन टच विथ यू?
1: देखिए, आपका अगर कोई लिसनर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओन करता है या फ्यूचर में अपना प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, तो मुझसे बात कीजिए. हम आपके फ्यूचर गोल्स को रिव्यू करेंगे कि स्प्लिट बैंकिंग आपको सूटेबल है कि नहीं. मेरा मोबाइल नंबर है 027-533-7745. मेरा ईमेल एड्रेस है sunil@squirrel.co.nz. ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट squirrel.co.nz पे भी जा सकते हैं.
0: That's awesome, yeah, Sunil. Thank you so much, Sunil, आपके टाइम के लिए. और आपसे next time फिर बात करेंगे. हमारे listeners को तब तक कहेंगे कि अगर आपको भी कोई सवाल है सुनील के लिए, who's our mortgage advisor expert from Squirrel, then please do send them to us on 5599. But thank you, Sunil. Have a wonderful rest of your week.
1: You too. Thanks to everyone.
0: Thank you.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Tinsel Town.
1: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Tinsel Town में हम आपके लिए लेकर आते हैं बॉलीवुड की खबरें और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक फ्रेश टीजर जो 19 घंटे पहले रिलीज हुआ है.
2: सो श्रद्धा कपूर रणदीप हुडा की ये मूवी आने वाली है ईथा. एंड ये एक्चुअली में ना इसमें श्रद्धा कपूर ने रोल किया है वीथा बाई नारायण गांवकर का जो कि महाराष्ट्र की मोस्ट सेलिब्रेटेड फोक परफॉर्मर थी.
1: ओह वाओ.
2: सो उसका रोल प्ले किया है इसमें श्रद्धा कपूर ने.
1: आई थिंक लावणी लावणी इज द आर्ट फॉर्म.
2: आई एम नॉट श्योर अबाउट
1: इट. अच्छा ठीक है. ऐसे देख के तो ऐसा लग रहा है बट लेट्स सी. आपको सुनाते हैं टीजर. बहुत ही डेडली टीजर है एक्चुअली में ये. मतलब आप सुनो इसके बारे में.

तो अपेरेंटली ईथा का बहुत डिमांड है, बट ईथा पेट से है।

0: And Shraddha Kapoor is playing Geeta.
1: मर जाएगी तू।
2: पड़े पड़े मरी तो बेचारी कहलाऊंगी, पर नाचते हुए मरी तो मिसाल बन जाऊंगी।
1: तो बन जा मिसाल।
3: बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है
0: यार। मैं ऑनेस्टली मैं बोलने वाला था अभी कि श्रद्धा कपूर का वो लुक मुझे माधुरी दीक्षित ही दिख रही है।
3: या
4: पान में पान चखना हो तो मीठा, और तूफान को नाचते देखना हो तो ईठा।
3: Actually, you're right. Maybe because माधुरी दीक्षित जब डांस करती थी वो बहुत एक्सप्रेशन के साथ हमेशा डांस करती है, तो श्रद्धा कपूर इसमें बहुत एक्सप्रेशंस के साथ डांस कर रही है।
0: अगर ये मूवी पहले रिलीज होती ना तो पक्का माधुरी दीक्षित के अलावा और कोई होता ही नहीं इसमें, मतलब
3: ये रोल प्ले करने के लिए 100%। लेकिन श्रद्धा कपूर बहुत ही सुंदर लग रही है, लाइक टोटल ब्यूटीफुल इसमें लग रही है ये। सो इसका आप जरूर टीजर चेक कीजिएगा।
0: क्या कहने वाले थे आप?
3: टोटल खूबसूरत कहने वाली थी, लेकिन या ब्यूटीफुल निकला ईठा। ये ट्रेलर जाके, ये टीजर एक्चुअली में अभी तक आया है फिलहाल, ये आप जाके चेक कर सकते हैं।
0: Yeah, actually, quite a nice one. But इसके साथ साथ एक्चुअली सैंडी अल्फा का भी ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है यार।
3: ओह या, इसके बारे में भी बात करेंगे।
0: ये देखा है आपने ऑफिशियल ट्रेलर अल्फा का?
3: नहीं, मैंने टीजर देखा है, नॉट द ट्रेलर।
0: टीजर में कोई दिखा नहीं था हमें। टीजर में सिर्फ आलिया भट्ट दिखी थी और बॉबी देओल दिखे थे। बट नाउ आई थिंक अनिल कपूर ऑल्सो आई थिंक इज
3: एंड शर्वरी
0: यस, शर्वरी इज ट्रेंडिंग राइट नाउ। चलो सुन लेते यार, अभी आज टाइम है अपने पास तो सुन सकते हैं हम। तो लेट्स, दिस इज अल्फा का ट्रेलर फॉर यू विच हैज आलिया, शर्वरी, अनिल, बॉबी एंड शिव रवैल। और ये YRF स्पाई यूनिवर्स का एक हिस्सा है जो 3 जुलाई को रिलीज होने वाली है।
5: और शुड वी कॉल हर सर?
6: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
7: एक कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था। वो धोखे से राज करता था और झूठ से जीतता था। एक दिन एक राजकुमारी को अपने घर ले गया। इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई, पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई। हाय बॉयज।
0: वाओ यार, आलिया भट्ट इज अमेजिंग।
3: एक्शन रोल में आलिया भट्ट।
0: ओ शर्वरी,
7: मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। रोक लो तो बात कर लो।
8: अल्फा, अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है।
6: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
8: फतेह को रोकोगी कैसे सीता? अपने जंगल का शेर है वो।
7: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
3: बॉबी देओल को एक बार फिर से हम नेगेटिव शेड में देखने वाले हैं।
0: Yeah, and this is so cool.
3: Anil Kapoor is a hero.
0: Anil Kapoor is not the hero. The hero of this movie is Alia Bhatt and Sharvari.
3: मतलब वो तो दोनों heroines हैं ना, मतलब the leading actresses.
0: Yeah, as in, but they are the heroes. Oh.
6: India ने अल्फा की कदर नहीं की, अब India अल्फा से डरेगा.
3: So concept is. आलिया को हमेशा रेज ऐसे किया है कि किलिंग्स करने के लिए, असैसिनेशंस करने के लिए।
0: ओह, एंड ऋतिक रोशन मे बी देयर, क्योंकि ट्रेलर में लास्ट में उसकी दो आंखें दिखाई है।
3: या सो या, बिकॉज़ इट्स YRF यूनिवर्स स्पाई वर्स जो भी है तो किसी की भी एंट्री हो सकती है.
0: लायरा हैज डन अ वेरी स्मार्ट थिंग. मेन लीड का नाम सीता रख दिया उन्होंने. अभी कैंसिल हो ही नहीं सकता ये मूवी.
3: या
0: व्हाट सीरियसली
3: कुछ नहीं.

0: ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: तू मेरा भाई है, मेरा यार है, और जिसके पास सच्चा यार है उसके पास सारा संसार है.

0: का नाम सिचुएशनशिप है ना, इसलिए
1: पॉइंट पॉइंट है वो तो हम थोड़ा ट्रेंडी बनने गए हैं
0: इसलिए समझाया कि सिचुएशन की शिप में हो आप, मतलब कहते ना कि इफ यू वाज इन माय शूज, तो अगर आप उस शिप में होते तो आप क्या करते,
1: राइट right.
0: उस वे से तो एक सिनेरियो आपके सामने हम प्रोवाइड करेंगे थोड़ी देर में, और या तो ये सिनेरियो आपके साथ रिलेटेबल है आजकल तो उसमें भी आप शेयर कर सकते हैं, यू आर फेसिंग दैट सिनेरियो तो वो भी एक्चुअली में आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पे कॉल करके 0800 हम पर। एंड ऑफकोर्स आज राहत फतेह अली खान के शो के लिए टिकट जीतने का मौका भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। रिमेंबर 3 सवाल पूछने वाले हैं, विद इन 5 सेकेंड्स आपको सही जवाब देना है हर एक सवाल का, अगर आप देते हैं तो आपका नाम इस ड्रॉ में जाएगा जहाँ पे यू कैन विन अ डबल पास। बहुत कम एंट्रीज इस बार शॉर्टलिस्ट हो रही है रुजबे डिफरेंट शोज में,
1: व्हिच मींस दैट ज्यादा चांसेस है आपको यहाँ पे टिकट जीतने के, मींस बहुत कम लोगों में आपका कंपटीशन होने वाला है। हमारे ड्राइव शो में तो अब तक एक भी नहीं हुआ है कोई सिलेक्ट,
0: ब्रेकफास्ट शो में भी नहीं,
1: ब्रेकफास्ट शो में भी कोई नहीं हुआ है सिलेक्ट। ओह माय गॉड, व्हाट्स हैपनिंग यार, दो फ्लैगशिप शोज दोनों में एक भी कोई एंट्रीज नहीं सिलेक्ट हुई है।
0: स्ट्रिक्टली हम ही खेल रहे हैं।
1: इफ यू थिंक दैट राहत फतेह अली खान आपको पसंद है, आप उनके बारे में काफी चीजें जानते हो, तो यहाँ पे 3 सवाल हम पूछेंगे उनके बारे में, अगर आपने उस आंसर दे दिए तो आपका नाम ड्रॉ में शामिल हो जाएगा टू विन अ डबल पास।
0: ये आपके नाम हो सकता है, सो सुनते रहेगा एंड नंबर याद रखिएगा 0800 हम, इट्स 0800 4866।

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: हम Accurate Traffic.
2: National Burns Awareness Month.
3: Rain easing tonight for Auckland. Gusty northeasters, a low of 12. We've got reports of delays through West Haven and on the Harbour Bridge heading north at the moment. The southern is slow, southbound between St Mark's Road and Sylvia Park, and north from Sylvia Park to Green Lane. Southwestern pretty heavy from Puhunui Road to the southern. If you're heading out of town, reports of flooding between Maramarua and Ngātia.
2: Text BURN to 4499 for a $3 donation to help the BURN support group.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट legalassociates.co.nz।
7: Your local board does all sorts of things in your community. That local event you love, the playground down the road, the park where you spend time with family and friends. And every 3 years they plan what to do next. Now's the time to let them know what you think is important where you live. Visit akhaveyoursay.nz/localboardplans. Tell us by 23 July. Local voices, local choices. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland.
8: Hi New Zealand, this is Siddharth Randeria Gujubai.
9: And who Tejal Vyas?
8: Ame avi rahya chhe amaru navu nakkor super hit comedy natak Gujubai ni
9: Exchange Offer.
10: Friday 3rd July Victory Convention Center par Lending HQ, Sona Sansar and Tulip Financial Services presents Siddharth Randeria nu navu natak Gujubai ni Exchange Offer. Hasi hasi ne lotpot thaywa taiyar thai jao. Tickets jaldi book kari lejo. Phone karo 021-244-6278 par.
11: Auckland Airport's international check-in is transforming, so it helps to know your check-in zone. Up to 24 hours before you fly, look up your flight's check-in zone on the Auckland Airport website. Or when you arrive at the airport, just look at the big screens.
12: Bring on the world.
13: Here for your chance to score a share of $250,000 Club Plus dollars. By simply scanning your Club Plus card at Foursquare, you could be a winner-winner free chicken dinner. Yeah! Foursquare. What'll it be today? T's and C's apply.
14: Are you ready to go home?
15: The Drive Show with Sandy and Rusby. Brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
16: Power Drive at 5.
17: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
18: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. And now is time hum aapke saath yahan pe khele ye.
17: Situationship.
18: Situationship mein hota hai ye ki hum aapke saath ek situation yahan pe share karte hain aur aapko us situation mein dalte hain aur aap yahan pe call karke explain karoge hame कि आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते?
19: Yes, आपका इस सिचुएशन में क्या रिएक्शन होता, ये एक्चुअली में आप यहाँ पे कॉल करके शेयर कर सकते हैं।
18: उस पे पहुंचने से पहले हम मदद कर लेते हैं यार, हमारे कुछ लिसनर्स हैं जिन हु आर वेरी मच इन्वेस्टेड इन कैरेक्टर गेस यस्टरडे। कैन यू टेल मी हु वाज द कैरेक्टर इन कैरेक्टर गेस यस्टरडे एंड डिड सैंडी गेट इट? आई मिस द एंड यस्टरडे। अच्छा, तो वी डोंट हैव टू टेल इट, वी वांटिंग टू सी हमारे लिसनर्स में कोई है क्या जो जिनको याद है
19: कि कल करेक्टर गेस में हमने किसके बारे में बात की थी एंड या और मैंने गेस किया था कि नहीं किया।
18: हाँ, 0800-004-866 यू गिव अस अ कॉल एंड यू हेल्प दिस पर्सन आउट जिनको ये जानना है। अभी हम आपके लिए सिचुएशन भी लाते हैं।
19: या सिचुएशन ये है और मुझे लगता है कि सिचुएशन के थ्रू जो काम करते हैं, ये किसी भी फील्ड में काम करते हैं, कोई ना कोई इस चीज के थ्रू कभी ना कभी गया होगा, स्मॉल लेवल, बिग लेवल, किसी भी लेवल पे। आप डिस्कवर करते हैं कि आपका कोई कुलीग है, योर कुलीग बीन टेकिंग क्रेडिट फॉर योर वर्क, आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? आपको ये बताना है कि आपके कुलीग ने काफ़ी समय से या फिर अभी आपके सामने आपकी काम के लिए खुद क्रेडिट लिया है, मतलब आपका कहीं पे मेंशन भी नहीं है।
18: और वो भी अक्सर क्या हो जाता है पता है क्या, ऐसे कभी कभार ना वो वाया वाया वाया आ जाता है वो
19: या पता चल जाता है
18: हाँ,
19: या फिर आपके सामने भी हुआ है तो
18: या आपके सामने भी हो सकता है
19: या,
18: तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, आपका क्रेडिट कोई और लेकर गया है, मतलब क्रेडिट आपको नहीं मिला है किसी और को मिला है, what would you do in this situation?
19: मुझे लगता है ये taking credit for your work for months या फिर अभी या और ऐसा कभी आपके साथ हुआ है तो आपने सिचुएशन कैसे हैंडल की?
18: आपके साथ हुआ है सैंडी कभी ऐसा?
19: ऐसा exactly credit लेके जाना,
18: मेरे को खुद को मालूम है आपके साथ हुआ है भाई, मैंने देखा है तो सोच रही है यार
19: नहीं मैं सिनेरियो याद कर रही थी कौन सा वाला, मतलब
18: जैसे कि आप शेयर करने वाले हो
19: वो नहीं कर सकती ना मैं,
18: क्यों याद कर रही हूं
19: मैं, आई वाज फॉर माय सेल्फ ना,
18: अच्छा भाई
19: कब हुआ
18: नहीं मेरे को याद है दो तीन ऐसे सिनेरियोस आपके, मतलब मैंने ही हमेशा क्रेडिट लिया है काम आप करते हो मैं क्रेडिट लेके जाता हूं,
19: तो तुम्हारे साथ कभी हुआ है रुजबे
18: कि क्रेडिट कोई और लेकर गया है? आई थिंक हुआ है मेरे साथ, ये हुआ है और मैं एक्चुअली लिंक्डइन पे ना पोस्ट डालने वाला था इस चीज़ के बारे में एंड यू ब्रॉट दिस टॉपिक अप, ऑलमोस्ट 9 साल पहले की बात है ये,
19: 9 years ago,
18: ऑलमोस्ट 9 years ago, आई वॉज इन्वॉल्व इन लाइक इट वॉज माई ब्रेन चाइल्ड, मैंने सब कुछ किया था और उसका क्रेडिट कोई और ही लेकर गया,
19: oh wow,
18: yeah, which was very sad.
19: Okay.
18: But it's okay. I think it did help me in the longer run.
19: But yeah, grew out of it. So, आप भी बताइए यहाँ पे 0800 हम्पर कि आपके साथ कभी ऐसे हुआ तो आपने हैंडल कैसे किया? How did you handle रुजबे?
18: How did I handle?
19: Yeah, that
18: मैं
19: time.
18: मैं ignore कर दिया वो चीज़ को.
19: तुमने total ignore कर दिया.
18: And then and I was thinking about this. That's how I got into radio. तो मैं इतना frustrated था, इतना disappointed था. कि मैं बोला यार कुछ और करना पड़ेगा जिंदगी में, एंड देन आई जॉइंड रेडियो. एनीवे हाय, आपका स्वागत है.
12: हेलो
18: जी.
12: एंड जी, तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर, कल का जो डिस्कशन टॉपिक था वो था kim.com.
19: या देयर यू गो. तो जिसने भी मैसेज किया आपको जवाब मिल गया, kim.com वाज द आंसर फॉर यस्टरडे. तो जी क्या
18: और,
19: नाम है
18: और
19: आपका?
18: सैंडी ने गेस नहीं किया था, देखो आज सैंडी ने
19: मैंने
18: वही किया,
19: गेस किया था,
18: ये किसी और का क्रेडिट, किसी और का क्रेडिट खुद के नाम पे ले लिया
19: ऐसा नहीं
18: एक नाम याद है आपको जिसने सही आंसर दे दिया था स्टार्टिंग में?
19: नरेश.
18: धृति भी थी, एक
19: धृति भी थी, धृति है नरेश.
18: हाय बताइए, और आज के सवाल के लिए क्या कहना चाहोगे आप, अगर ऐसे सिचुएशन में आप कभी आए हो क्या किया आपने?
12: ऐसा हुआ है तो मैंने तो क्लियर कट ऐसे कर दिया था कि नॉट एग्जैक्टली मैनेजर था, बट सीनियर था मेरा, तो जो हमारी जो डील हुई थी मतलब कस्टमर के साथ में कि अरे मैं ये अकाउंट लेके आया हूँ ब्ला ब्ला ब्ला, इतना रेवेन्यू कंपनी से मैं लेके आया हूँ, मतलब अरे भाई ये क्या, और मुझे पता भी नहीं बैकएंड में मतलब ये सब कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो जैसे एज यू मेंशन कि वाया वाया बाद में पता चलता है कि अरे मेरे को बाद में मेरे कलीग से पता कि अरे ये डील तो तेरी थी, पर गुंडजान तो मतलब किसी को तो क्रेडिट तो किसी और को मिल रहा है.
19: Wow.
12: तो फिर मैंने क्या किया, मेरे मैनेजर को पूरा मेरा कम्युनिकेशन जो मेरे कस्टमर के साथ में था पूरा मेल ट्रेल उसको फॉरवर्ड कर दिया, एक तो मेरे मैनेजर वो किया, एंड सेकेंडली जब पूरे एक मतलब कलीग जब साथ में लंच वंच के लिए बैठे थे तो मैंने इंटरव्यू के टॉपिक इनिशिएट किया, मैंने बोला कि अच्छा तो फिर तेरा वो कस्टमर के साथ में कैसा रिलेशनशिप है एंड हाउ इट इज गोइंग एट द मोमेंट, एंड दैट पर्सन वॉज लाइक ना कि हाँ ये वो एक्स वाई जी बंदा ये है, तो हाँ मैं वर्किंग विद हिम वेरी वेरी वेल, यू नो लाइक इट्स गोइंग प्रीटी स्मूथ, हम और मतलब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें ब्ला ब्ला ब्ला, और हालांकि सबको पता था कि जो एक्स वाई जी बंदा बोल रहा है वो बंदा वो था ही नहीं एक्चुअली, लाइक इट वाज समवन एल्स, तो सबके सामने उसकी ऐसी पोल खुली एंड ही वाज लाइक सो एम्बैरस कि मतलब उसने बाद में आके भी पर्सनली उसने अपोलोजाइज किया, उसने बोला कि यार गलती हो गई कि मतलब मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं बोला देख इट्स ओके, देखो चाहिए था तो तू ले लेता, मेरे को बोल देता भाई, इट्स नॉट अ बिग डील, हर एक का मतलब इसमें तो इट इज लाइक प्रीटी कॉमन है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सबका नंबर्स का ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है कि नो वन इज लाइक परफेक्ट कि 100% आपका मतलब परफॉर्म करते ही रहोगे, मतलब यार टिप में है मुझे कुछ चाहिए था ऐसा कुछ, इफ इट इज इम्पैक्टिंग यू इन सर्टेन वे एंड इट विल हेल्प यू मुझे बोल देता भाई, आई वुड हैव लाइक इजीली बैक्ड आउट, बिना मतलब मेरे से डिस्कस किए हुए बिना मुझे कुछ बताए हुए कि भाई ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है और तू पूरा क्रेडिट ले रहा है मैनेजमेंट में, तू बड़े बड़े ईमेल्स लिख रहा है, well, this is not right. This is not ethical.
19: It's not ethical.
12: So I confronted him, you know, like, so that like, it is not repeated like with someone else, because bahut sare log aise hote hain ki who cannot like, you know, like handle it, or they will say, chal, let go, yaar, it's okay. Hum baad mein dekh lenge. But every time it doesn't happen, then that way.
19: Interesting.
12: Yeah,
19: मेरे को लगता है कि address करना बहुत जरूरी होता है if you know the person जहाँ पे आप address कर रहे हो वो सुनेंगे.
18: But मैंने ये देखा है कि जब sales या business development की बात आती है ना तो ये चीज काफी common हो जाती है और काफी इसके around fights भी बहुत होते हैं कि अरे ये मेरा है, ये तेरा है, मेरे इसमें आना चाहिए.
19: Contact तो मैंने दिया था लेकिन email तो मैंने की लेकिन बात तो मैंने की, मतलब ये एक चीज रहती है.
18: ये बहुत होता है.
19: शुरू किसने किया, कॉन्टेक्ट कैसे किसका हुआ.
18: फिर सारी
12: तो मैंने इसमें से लर्निंग दी था कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके जो भी कम्युनिकेशन है लाइक यू नीड टू कीप इट सेव एंड यू नीड टू बी टॉप ऑफ योर कम्युनिकेशन. आप किसके साथ कर रहे हो, इंटरनल है या एक्सटर्नल है. एंड सेकेंडली जब आप किसी को कन्फ्रंट कर रहे हो तो यू हैव टू एंश्योर कि इट इज लाइक यू नो इट्स अ डिसआर्मिंग काइंड ऑफ सिचुएशन. ऐसे मतलब हमको किसी को लेट डाउन नहीं करना कि भाई कि तूने गलत कर दिया है एंड ऑल दैट, यू नो, ज्यादा एम्बैरेस करने की जरूरत नहीं है. इट्स आल्सो टॉट मी कि ऐसे सिचुएशन को मतलब कैसे हैंडल करना है, क्योंकि कभी कभी हम काफी मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और इमोशंस में कंट्रोल नहीं होता.
19: आपने बहुत अच्छा बोला इसमें कि मे बी इमोशंस को कंट्रोल करके आप अगर स्ट्रेटेजिकली पॉइंट्स के ऊपर प्रोफेशनली उस चीज को डील करते हो तो इट्स वे बेटर.
12: हाँ जी, वैसे भी मेरा सीनियर था तो मैंने कभी भी उसको मैंने पूरे टीम के सामने या तो कलीग्स के सामने एमी बॉन्ड बनने के लिए ना कि अरे ये मेरी डील है, बिकॉज सेल्स में सबको पता है इट इज लाइक वन ऑफ. चलो आज आपका तुक्का चल गया, नेक्स्ट मंथ किसी और का, तो नेक्स्ट क्वार्टर में किसी और का तुक्का चलेगा. तो नो वन कैन गारंटी की कंसिस्टेंटली विल बी नंबर वन. सो वॉट एवर माई कॉन्वर्सेशन विद दैट पर्सन वॉज लाइक इट वॉज ऑलवेज लाइक वन टू वन. उसमें भी कभी उसको मतलब उसको वैसे एम्बैरेसमेंट उसको फील नहीं हुआ कि सबके सामने मतलब कि मतलब, बट हालांकि बाकी सबको पता था कि व्हाट्स हैपनिंग. बट उसकी भी रिस्पेक्ट मेंटेन करने के लिए लाइक आई नेवर
19: पहली बार हुआ, मे बी अगर दूसरी तीसरी बार होता तो शायद आपको सबके सामने करना पड़ता. तो फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करती है ना कि
12: इफ
19: द पर्सन लर्न्ड और नॉट.
12: टोटली
19: या,
18: बट थैंक्स सो मच फॉर शेयरिंग. या थैंक यू, रियली मींस अ लॉट.
12: ओके, थैंक यू.
18: वेल, आज का सिचुएशन तो ये था सिचुएशनशिप में, और थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. कल आपके साथ हम खेलने वाले हैं ड्राइव थ्रू कन्फेशन. सो इफ देयर्स अराउंड दिस ओनली, अगर आपके पास कोई कन्फेशन है जो आपको कन्फेस करना है,
19: कुछ हुआ है कभी, आप कुछ कन्फेस करना चाहते हो, आज ही मैसेज कर सकते हैं या कल भी कर सकते हैं 5599 पर, या फिर हमारे फेसबुक पे ग्रुप बना हुआ है हमारे शो का अनफिल्टर्ड क्रू, जहाँ पे यू आर फ्री टू पोस्ट एनोनिमस रह के भी आप वहाँ पे एक्चुअली में पोस्ट कर सकते हैं. बट स्टे ट्यून्ड, थोड़ी देर में राहत फतेह अली खान के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का भी आपको मौका मिलने वाला है.
20: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
21: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
22: मैं लाऊं अपना ए गेम.
20: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर.
1: Accurate traffic.
2: Innovative Interiors, your luxury wardrobe specialist.
3: Rain easing tonight for Auckland. Gusty northeasters, a low of 12. It's heavy northbound through West Haven to the Harbour Bridge. At the moment, the northwestern all fairly free-flowing. On the southern, slow southbound from Market Road to Highbrook and north from Sylvia Park to Green Lane. Southwestern, we've got reports of a crash near Massey Road affecting southbound traffic, and it's heavy from Puhinui Road to the southern.
2: Innovative Interiors, crafting wardrobe elegance. Discover more at innovativeinteriors.co.nz.
4: Say hello to the Club Plus Smart Shopping Buddies. They're here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. They'll help you scan, score and save on all the stuff you love. And there's a Smart Shopping Buddy for everyone, even you. So join Club Plus to meet yours and get the best of New World, Pack and Save and Foursquare. Find out more at clubplus.co.nz.
5: Winter's here, and so much to do at home. Fix the leak, clear the gutters, service the heat pump. When the to-do list calls, AA Home can help tackle all those winter jobs. Search AA Home to book a job today. Your trusted tradies on tap.
6: It's boarding time with Instant Kiwi. But where will you land? Hamilton or Hamilton Island? You never know. For your chance to win a mystery holiday for two, get a $5 cross-world ticket at your local Lotto NZ store and enter online. R18 T's and C's apply.
7: And then Mrs. Singh se maine pucha, "Enna achha khane ke saath kitchen mein reels aur TikTok kaise bana leti ho?" Boli, "Bas, mera focus hai."
8: "Achha,
7: batao, tuhanda focus, sada kuch nahi."
8: Mrs. Singh.
9: Arey Pammi ji, mera focus means mere ghar ka kitchen, jisko design kiya hai Focus Kitchens ne.
10: Modern classic shaker style kitchens, Focus Kitchens, Unit K, 33 Wansley Road, Otahuhu. Call 09281 3050 or visit focuskitchens.co.nz.
11: This is a message on preparing for earthquakes from the Natural Hazards Commission.
12: Whoa!
13: Whoa!
12: Whoa!
13: Whoa!
11: When it comes to earthquakes, a bit of prep can make a big difference. Things like securing tall or heavy furniture or making your risky chimney safer can turn a
12: whoa
11: into a
8: whoa.
11: Don't wait for the whoa. Protect your whānau. Search Quake Safe Your Place to learn more.
14: Are you ready to go home?
15: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
16: Power Drive at 5.
17: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
18: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. वैसे आज अब अभी आपको मौका दे रहे हैं हम. राहत फतेह अली खान is coming to town and इनका ये जो beautiful soulful concert होने वाला है, अगर इसको आपको attend करना है तो उसका double pass जीतने का मौका आपको अभी मिल रहा है.
19: तो call now 0800-00-HUM पर तीन easy सवाल and trust me easy सवाल आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे and आपको बस उसके answers देने हैं. 5599 पर
18: मुझे लगता है सैंडी
19: कॉल करके हमारे साथ ही विदिन 5 सेकंड
18: 0800-00-4866. मुझे ऐसा लगता है सैंडी आज हमने दो कॉलर को ऑनर लेकर जाना चाहिए और उन दोनों के बीच कंपटीशन करनी चाहिए. अगर दोनों ने 5 सेकंड में सही सही जवाब दे दिए बट पहले मतलब दोनों ने साथ में देना चाहिए. अगर ऐसा होता है कि दोनों ने साथ में दे दिए जवाब तो दोनों का नाम ड्रॉ में जाएगा. अगर एक ने लेट दिया और एक ने दे दिया तो जिसने जल्दी दे दिया वो जाएगा ड्रॉ में.
19: तो दो लोगों के बीच में तुम रैपिड फायर करना चाहते हो.
18: दो लोगों के बीच में कंपटीशन.
19: चलो वैसे तो कॉल करो यहाँ पे. एक तो कॉल करो पहले 0800-00-4866 पर. ये दो लोगों को लड़ाना चाहता है. हम एक से लड़ना चाहते हैं यहाँ पे 0800-00-4866. वेल एक तो हमारे साथ आ गए.
18: नमस्कार, आपका स्वागत है. कैसे हो आप?
20: हेलो,
18: हाय. आपसे बात की मैंने इतने फॉर्मली.
20: Oh, I'm so surprised actually.
18: अच्छा, मतलब इतना अच्छा मैंने बोला नमस्कार आपका स्वागत फुल रेडियो वॉइस में किया मैंने.
19: मेरे को ये बताइए कि आप पर सरप्राइज क्या हुई कि रुजबिन इतने अच्छे से बात की या फिर फोन लग गया किस बात पे?
18: बोलती है विविध भारती पे कॉल लग गया क्या?
20: बिकॉज़ हम बस ड्राइव कर रहे थे आफ्टर वर्क एंड कैजुअली मैंने आपका रेडियो पे सुना एंड आई सेड लेट्स ट्राई एंड आई वाजंट थिंकिंग कि फर्स्ट कॉल पे आंसर हो जाएगा.
18: हम बहुत डेस्परेट हैं.
19: देखा कैजुअली क्या क्या हो जाता है.
18: क्या नाम है आपका?
19: मैरी अरे
18: क्या हो गया
19: नहीं मैं सुबह ही आज पोइम गा रही थी
18: मैरी हैड अ लिटिल लैम
19: अपने नेफ्यू के साथ
18: सैंडी को क्या हो गया यार मेरे को लग रहा है सैंडी
19: मैरी आप कितने डूइंग द टेक ओवर
18: कितने टाइम से सुन रहे हो मैरी आप
20: आई थिंक हमने बस अभी स्विच ऑन किया
18: नहीं नहीं रेडियो कितने टाइम से सुन रहे हो वैसे यूजुअली मतलब आपने
20: रेडियो
18: हाँ ड्राइव शो कितने टाइम से सुन रहे हो
20: हम एवरी मॉर्निंग एवरी इवनिंग जब हम गोइंग टू वर्क बैक टू होम तो चालू रहता है
18: और हम मतलब कौन है मतलब हम तो हम है बट आप में हम में कौन है मतलब
20: मेरे हम में मेरे हस्बैंड एंड डॉटर
18: आपके हस्बैंड और डॉटर दोनों अभी सुन रहे हैं आपके साथ यहाँ पे
20: एक्चुअली हम सब कार में ही हैं
18: क्या बात है क्या हस्बैंड का नाम क्या है मेरी आपके
20: अब तो पूरा पता
18: अच्छा वो नहीं बताना है ठीक है
20: डिटेल्स लोगे
19: वही ना या कम ऑन रुस्बे
18: नहीं आईआईडी नंबर नहीं लेंगे आपका
19: पता नहीं है इतनी प्राइवेसी नहीं पूछते
18: नहीं नहीं ठीक है ओके चलेगा नहीं पूछता हूं
19: चलो तीन सवाल आपके लिए रेडी है यहां पे आपका नाम क्या है
18: आई यू राहत फतेह अली खान फैन पर मेरी से बात करने दो ना पहली बार बात हो रही है मेरी से
20: हां वी आई एम यस
18: यू आर अ फैन ओके ठीक है डू यू थिंक वी शुड डू अ कंपटीशन बिटवीन यू एंड अदर लिसनर ऑफ अस कि आपको लगता है कि नहीं आप ही आप पहली बार कॉल कर रहे हो हमें
20: First time,
18: है ना मेरे को लगता है नहीं करते आज कंपटीशन
19: क्योंकि कॉल ही नहीं आई है तो कंपटीशन क्या करोगे उसमें तुम
18: एक आ रहा था कॉल सैंडी ऐसे मत करो
19: ओके
18: मैंने मैंने मैरी को प्रायोरिटी दी लेकिन
19: ओह या फाइन
18: ओके तो आर यू रेडी
20: यस
18: आर यू श्योर
20: यस
18: हाँ okay. मतलब आई एम जस्ट बाइंग टाइम मेरे को 5 सेकंड टाइमर निकालना है ना यहाँ पे
19: वही ना वो रेडी नहीं है
20: अच्छा ओके
19: आप और मैं रेडी है
20: इफ यू आर बाइंग टाइम आई विल आस्क यू क्वेश्चंस हाउ आर यू गाइस डूइंग
18: हाउ डू यू थिंक वी आर डूइंग
20: ओ यू गाइस आर ऑलवेज फैंटास्टिक
18: अच्छा ओके ग्रेट
19: सी सही है
18: चलो आई एम रेडी हां
19: यू रेडी रुस्बे ओके
20: तो बाय द वे व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एम आई एक्सपेक्टिंग
19: इजी
18: सैंडी के हिसाब से जो भी इजी है मतलब बहुत डिफिकल्ट आप समझ लेना
20: अच्छा चलो आई एम ब्रेसिंग अप एंड आल्सो आई हैव माय फैमिली इन द कार सो लुकिंग फॉरवर्ड टू योर
18: या यू कैन गेट लाइफलाइन नो प्रॉब्लम लाइफलाइन हेल्प
20: चलो अच्छी बात है
19: ठीक है
18: मैं आपको बस एक बार पहले टाइमर सुना देता हूँ टाइमर कैसे चलता है टाइमर
19: 5 सेकंड्स में आपको जवाब देना है
18: सो बेसिकली आफ्टर शी आस्क द क्वेश्चन आई विल नहीं ऐसा चालू होगा ऐसा 5 और फिर जैसे ही घंटी बजती है उसका मतलब फिर वी आर लाइक टाइम इज अप
19: आउट ऑफ टाइम
18: सैंडी अभी देखो एक और कॉल आ रहा है हम कंपटीशन कर सकते हैं बट नहीं करेंगे
19: वर्ड या तुमने वर्ड दिया है अभी पहले
20: बोल दिया यू आर नॉट गोइंग टू कंपीट एनीवन
18: विद मी नहीं नहीं करेंगे
19: या सो मैरी आपके लिए पहला सवाल
18: आर यू रेडी
20: ओके
19: आपको ये बताना है राहत फतेह अली खान का गाना जग घूमिया किस मूवी का है
20: बजरंगी भाईजान
19: लाइफ लाइन नहीं ली क्या
20: बजरंगी भाईजान है ना
18: अरे यार जग घूमिया में वो जहाँ पे फ्लोर
20: दूसरा मूवी है
18: अरे यार फ्लोर क्लीन करता
20: है वो सॉरी सॉरी सॉरी सलमान खान एंड ओ नो
18: क्या कौन सी मूवी का
19: कौन सी मूवी
20: एक सेकेंड
18: गूगल करेंगे
19: ये तो गया टाइम
20: नहीं मुझे सलमान खान याद आ रहे सुल्तान
18: गूगल किया ना सच बोलो मेरी सच बोलो
20: हाँ अलाउड है ना आपने बोला ना लाइफ लाइन
19: अब लाइफ लाइन में क्या था वो तो अपने स्पेसिफाई नहीं की है
18: सैंडी क्या करना है अभी
19: अभी चलो थोड़ा दो सवाल पूछ ही लेते हैं कंटिन्यू करते हैं
20: है, हाँ, दो सवाल पूछ ही लो एंड फर्स्ट टाइम कॉल करा है मैंने तो उसका भी कोई कंसोलेशन प्राइज दे
19: ओके सो आपका सेकंड सवाल ये है कि राहत फतेह अली खान यहाँ पे ऑकलैंड में कहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं कितना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं
20: बार करीना तो नहीं है आई एम श्योर
18: हो गया टाइम अप
20: टाइम अप हो गया अभी वाला पूछोगे नहीं
19: क्यों पूछना है छोड़ो ना
18: छोड़ो यार मेरी कोई बात नहीं
19: किसी और के काम आ जाएगा वो सवाल
18: या
20: तो अभी बाकी लोग जब आएंगे तो यही सवाल पूछोगे
19: आप नहीं नहीं वो डिफरेंट
18: आप हमको ऐसे कैसे समझ सकते हो मतलब हम साउंड करते हैं सिली बट वी आर नॉट दैट सिली बट थैंक यू मैरी
20: मैं ड्रॉ में भी नहीं जाऊंगी
18: नहीं मेरी नहीं आपकी बहुत स्वीट आवाज है लेकिन नहीं सॉरी
19: रुस्बे बहुत चाहता है लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा
18: मैं बोल रहा था कंपटीशन करते मजा आता बट थैंक यू मैरी, थैंक्स फॉर योर टाइम यार.
20: तो और इज्जत का फालू दो मुझे तो.
18: भाई थैंक यू. एक और मेरे पास कॉलर यहाँ पे है, इनसे बस पूछते हैं कैसे है ये. हाय, क्या नाम है आपका?
0: हाय, मैं अकीरा हूँ.
19: अकीरा, कैसे हैं आप?
18: कैसी हो?
0: ठीक
19: हो. ठीक हो ना? तो अकीरा, किस लिए आपने कॉल किया यहाँ पे?
0: मैंने आप शोर सुनती हूँ इसी समय, क्योंकि मैं जॉब पर होती, तो मैंने सोचा ऐसी कॉल कर लेती.
18: आप जॉब पे होते हो या स्कूल में होते हो?
0: मैं स्कूल में नहीं हूँ, बड़ी हूँ.
18: आप बड़ा, अच्छा.
19: आपकी आवाज बच्चों जैसी है. मैं भी बच्ची बन गई.
18: मुझे मुझे
0: मैं करेक्शंस के लिए काम करती हूँ, तो मैं बड़ी हूँ.
18: अरे बाप रे,
19: अब तो बहुत बड़ी हो
18: यार. करेक्शंस में काम करके ऐसे आवाज से कैसे काम मिलता है यार? मतलब करेक्शंस में तो मैंने सुना है, अभी देखा भी, पढ़ा भी है कि एकदम ऐसा रफ एंड टफ जॉब होता है वो.
0: हाँ होता है, लेकिन आवाज ही ऐसी है, मैं क्या करूँ.
18: आप गुस्से में अगर बात करते हो कैसे? आपका एक डेमो दिखाओ ना, कि गुस्से में अगर किसी से बात करनी है तो कैसे बात करूँ.
0: मैं गुस्से में ही और क्या करूँ.
18: नहीं ठीक है.
19: तो भी करेक्शंस में सब
0: अप कर. When I speak in English, it's actually very dominating. So I think मेरी बस हिंदी ऐसी है.
18: अच्छा. ओके. कहाँ से हो आप वैसे?
0: ऑकलैंड से हूँ.
18: ऑकलैंड से हो आप?
0: मैं डर के पहली बार कॉल किया है डर.
18: अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, नो प्रॉब्लम. क्या
19: क्या डरने की जरूरत? आपसे तो बाकी डरते होंगे ना.
0: हाँ पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन
18: नहीं ऐसी आवाज के साथ मेरे को नहीं लगता कोई डरता होगा. नहीं मतलब बहुत प्यारी आवाज है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ मैं आपको.
19: आपने
18: नाम नहीं बताया, आप नाम बताना चाहोगे हमें?
0: अकीरा मैंने बताया.
18: अकीरा, सॉरी अकीरा. हाँ हाँ. अरे अकीरा ना, ये एक सोनाक्षी सिन्हा की एक मूवी अकीरा, बहुत बढ़िया मूवी है वो भी. उसमें अकीरा को बहुत गुस्सा आता है.
19: हाँ. अनुष्का शर्मा का नाम भी अकीरा था उसमें, जब तक है जान.
18: या बट ये अकीरा उन्होंने मूवी देखी. आपको अच्छी लगी थी वो मूवी सोनाक्षी सिन्हा वाली? मेरे को बहुत अच्छी लगी थी यार वो, बहुत बढ़िया.
0: हाँ, वो तो मूवी अच्छी लगी, लेकिन वो जो शाहरुख खान वाला जो था अनुष्का का, वो एमएम था, लेकिन आई थिंक सोनाक्षी का ठीक था.
18: हम कल करेंगे आपके साथ.
0: पे जाना था वो जो पे.
18: रात फतेह अली खान ना,
19: कल करना ठीक है. आज वो खत्म हो गया,
18: सवाल खत्म हो गया सैंडी के. अब उसको और सवाल.
0: ठीक है, कोई बात नहीं. इसी टाइम पे आना है?
18: यस, इसी टाइम पे. अराउंड इसी टाइम के. ठीक है,
0: ओके, नो प्रॉब्लम. आई विल. थैंक यू.
18: थैंक्स अकीरा.
19: बाय,
18: हैव अ गुड वन. आज देखो, आज काफी आ रहे थे कॉल. अभी कल आप कॉल करना, कल हम कंपटीशन करेंगे. मैं बोल रहा हूँ ये आइडिया बेस्ट है सैंडी.
19: दो लोग
18: इनसे भी बात कर लेते हैं हम एक बार. हाय, आपका भी स्वागत है. क्या नाम है आपका?
21: आपका भी स्वागत है.
18: क्या, सॉरी, कौन, क्या नाम है आपका?
21: अंतरप्रीत.
18: अंतरप्रीत यार, लॉन्ग टाइम नो सी यार. 702 के बाद भी आप सुन रहे हो हमें?
21: नहीं सुनता हूँ, लेकिन मैं कॉल नहीं करता. सुन तो मैं रहा हूँ एक डेढ़ महीने से. मैंने
19: देखा रहा नहीं गया ना आपसे.
18: अंतरप्रीत, आपने हमें कॉल किया था ना, जब हम अच्छा चलता हूँ दुआ में याद रखना किया था 702 के साथ.
19: बोले था अब नहीं सुनूंगा मैं.
18: नहीं अच्छा.
21: नहीं, सुनने क्या, पता क्या वो दिक्कत आ रही थी ना, फिर मैंने रोवा पे कर ही लिया फिर.
18: हाँ मालूम है, हमारी एक बार आदत हो गई ना, फिर उसके बाद दिक्कत हो जाती है नहीं सुना तो. सो थैंक यू सो मच.
21: काफी डेढ़ दो महीने से सुन रहा हूँ.
18: अरे वाह, बढ़िया. तो अंतरप्रीत कल कॉल करना, कल हम कंपटीशन करेंगे आपके और अकीरा के बीच फॉर राहत फतेह अली खान का डबल पास. ठीक है,
21: ओके. कितने बजे कॉल? सेम टाइम?
18: नहीं, मतलब 5 के बाद कभी भी.
21: ठीक है, ओके, थैंक यू.
18: ओके चलो, थैंक यू, बाय बाय.
21: ओके बाय बाय.

0: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla live.
1: Some things belong in a warm home. A cup of tea, a cozy hot water bottle, a steaming hot bowl of soup. In homes just like yours, serious burns happen every day, especially to curious little hands over winter. Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
2: Time check. By Logic Finance Limited, changing lives with logic.
3: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. The PM is blaming the previous government for the possible closure of a Far North timber mill. Duken NZ says it can't find a buyer for a kaitaia plant that it is selling due to rising costs and falling demand. About 60 workers could be made redundant. Christopher Luxon says it's the result of the former Labor government's policies.
4: Energy is a big part of what's been impacting our mills up and down regional New Zealand. That's because of a failed energy policy that meant that people lost their jobs.
3: A number of Blue Bridge and Inter-Islander ferry sailings have been cancelled between tomorrow and Saturday. Heavy swells are forecast through the Cook Strait as rain and wind slam large parts of the country. A pedestrian has been seriously injured after being hit by a vehicle in Taupō. Police say it happened on Kittle Drive near Invergarry Road around 3:15. Migrant workers are being told to speak up if they think they are being exploited. Auckland's The Indian Taste restaurant has been ordered to pay $200,000 to 7 staff at underpaid, while ex-director Krishna Khandelwal must pay $177,000. Labour Inspectorate Head Simon Humphries says breaches included not paying minimum wage or holiday pay.
5: If you believe you or others that you know are being exploited, then contact the Labour Inspectorate or MB to raise a concern.
3: To sport, the final reprieve for Moana Pacifica has failed as the rescue bids have been rejected. New Zealand Rugby did not find any of the submissions financially viable. And a football update's brought to you by Hisense. The anxiety levels at the Football World Cup ramp up further from tomorrow. The opening set of the final group matches begin. There are 6 games. Over the next 4 days, the group matches will be completed ahead of the knockout stages.
2: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
6: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस।
7: एलिजली के चंद्र नायडू और स्वर्गीय जी नायडू के पुत्र अविनेश नायडू और प्रिया रेड्डी के भाई साइमन स्ट्रीट ऑकलैंड के अरुणेश रामलू नायडू की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार कल दोपहर 2 बजे मनुकाव मेमोरियल गार्डन्स 361 पुइने रोड में किया जाएगा। सहानुभूति के लिए आप कॉल करें 0272003343 पे। एलिजली के चंद्र नायडू और स्वर्गीय जी नायडू के पुत्र अविनेश नायडू और प्रिया रेड्डी के भाई साइमन स्ट्रीट ऑकलैंड के अरिनेश रामलू नायडू की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार कल दोपहर 2 बजे बनुकाव मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। सहानुभूति के लिए आप कॉल करें 0272003343 पे। भूरा एंड जोखन लिमिटेड सुवा के लेट जय नारायण जोखन की पत्नी रजनी सेन अंजनीश जयंत मोइनीश और रोविन जोखन की मां हॉर्टन स्ट्रीट सुवा फिजी के भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोखन क्योला की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार सैटरडे 27 जून को दोपहर 1 बजे वाटुवाका सेमेट्री में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 0223326843 पर कॉल कर सकते हैं। भूरा एंड जोखन लिमिटेड सुवा के लेट मिस्टर जय नारायण जोखन की पत्नी रजनीश सेन अंजनीश जयंत मोहिनीश और रोविन जोखन की मां हॉटन स्ट्रीट सुवा फिजी की भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोखन क्योला की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार सैटरडे 27 जून को दोपहर 1 बजे वातुवाका सेमेट्री में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 0223326843 पर कॉल कर सकते हैं।
6: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
2: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
8: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
2: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट।

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Let's go!
1: 3, 2, 1. Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
2: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे।
3: 6 बज चुके हैं, ट्रेंड मेकर्स में आपका स्वागत है, जहां पे आपके लिए हम एक थीम लेकर आते हैं रोज। और आज की जो हमारी थीम है, ये बताने से पहले हम पहले सैंडी से बात करेंगे। हाय सैंडी।
4: हाय हाय, गुड इवनिंग रिज़बे, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। वेल, आज की थीम जो है, ये बताने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लें। वो ये है कि अगर आपको सनराइज व्यूज चाहिए, न्यू फ्रेंडशिप्स चाहिए,
3: सनराइज व्यूज के लिए सुबह उठना भी पड़ेगा ना,
4: न्यू फ्रेंडशिप्स चाहिए,
3: वार्म वेदर मिलेगा क्या पहले वो बोलो,
4: वार्म वेदर चाहिए,
3: वार्म वेदर भी चाहिए, यस,
4: रोड ट्रिप की प्लेलिस्ट चाहिए, ग्रेट फूड एंड एंडलेस लाफ जो है ये चाहिए,
3: एंडलेस लाफ, या मतलब तो मैं भी हूँ क्या?
4: तो ये मूवी की कहानी नहीं, ये आपकी कहानी हो सकती है।
3: अच्छा,
4: इट कुड बी योर ईस्टर 2027।
3: ओह
4: या,
3: दिस साउंड्स एक्साइटिंग, या
4: साउंड्स एक्साइटिंग, वेरी एक्साइटिंग,
3: वार्म,
4: सो आई एम सेइंग सनराइज व्यूज, न्यू फ्रेंडशिप्स, रोड ट्रिप प्लेलिस्ट, ग्रेट फूड, एंडलेस लाफ्स। It's not a movie, but can be your story.
3: अच्छा, endless laugh ना?
4: Yeah.
3: Less laughs so, लगा मेरे को.
4: Endless.
3: Endless laugh.
4: Laughs.
3: तो beach है क्या इसमें involved?
4: Yes, मतलब yeah.
3: अच्छा, character guess नहीं खेल रहे हम लोग अभी.
4: या वो नहीं खेल रहे, तो वो अभी रहने दो, बाकी information हम आने वाले दिनों में देंगे.
3: Actually आपको एक बात बोलूँ, कल मैं cricket खेलने गया था ना?
4: हाँ.
3: तो वहाँ पे मुझे हमारे दोस्त एक, उन्होंने पूछा कि अरे क्या चल रहा है, क्या है रे सरप्राइज, क्या मतलब
4: ईस्टर 2027 क्या है?
3: तो मैं बोला यार मेरे को भी नहीं पता यार,
4: अपने प्लान्स को होल्ड पे रखिएगा, इतना ही बोलेंगे,
3: ईस्टर 2027 के प्लान्स को होल्ड पे रखना अभी, क्योंकि हाँ अभी वैसे भी लोग अभी से नहीं टिकट बाय करते ना ईस्टर की, अगर बाहर मतलब ऐसा कुछ मतलब ईस्टर का प्लान्स मैं बोल रहा हूँ।
4: एनीवे, अब आज का सेगमेंट शुरू करते हैं।
3: मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं है सैंडी यार।
4: नो रुस्बेन, चोर की दाढ़ी में तिनका मत खेलो अभी।
3: अच्छा ठीक है, तो बताइए क्या है आज का सही, आज का
4: ट्रेंड? हम आफ्ताब शिव दसानी, मतलब बरसों हो गए आफ्ताब को देखे मूवीज में, लेकिन जब हमने देखा, एक मार्क छोड़ा था उन्होंने बॉलीवुड में,
3: अच्छा लगता था आफ्ताब यार,
4: मुझे भी, एक्टिंग भी,
3: उसका ना एक मूवी था लव के लिए साला कुछ भी करेगा, उसमें आफ्ताब था ना,
4: उसमें भी था वो,
3: बहुत फनी एक्टर है,
4: बहुत एपिक मूवीज की है उसने यार, अगर देखा जाए आवारा पागल दीवाना,
3: मस्ती में क्या मस्त एक्टिंग की उसने, मैं ओरिजिनल मस्ती बोल रहा हूँ,
4: ओरिजिनल मस्ती, एंड हंगामा मूवी में भी था,
3: हंगामा में क्लास था वो, हंगामा में भी, और काफी अलग अलग कैरेक्टर था कंपेयर टू मस्ती,
4: यस
3: मस्ती में ही वॉज द मस्ती वाला, गाइस आइडिया, यू नो,
4: एक्चुअली में, बट ही इज आल्सो नोन एज अल्टीमेट बॉलीवुड चाइल्ड स्टार, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल चाइल्ड फेसेस था इन इंडियन सिनेमा,
3: वो बड़े होकर भी उसका चाइल्ड फेस ही था,
4: आई नो, लेकिन बहुत सारी एड्स में भी वो था, एंड इन फैक्ट उन्होंने यंग अमिताभ बच्चन का रोल किया था शहंशाह मूवी में, या ही प्लेड यंग अमिताभ बच्चन, बिकॉज ही प्लेड अ चाइल्ड आर्टिस्ट उसमें, सो ही वॉज अ चाइल्डहुड वर्जन ऑफ इंस्पेक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव।
3: That's pretty cool, yeah. लेकिन आज मतलब कल है उनका बर्थडे ना वैसे?
4: कल बर्थडे है, लेकिन कल एक और सेलिब्रिटी का बर्थडे है, तो we have just divided the day.
3: We have a tie. तो आज हमने कर ली है वो. But आज देखे जाए तो आज सुमोना का बर्थडे है. सुमोना चक्रवर्ती.
4: जो कि कपिल शर्मा में, she played a character of कपिल शर्मा's wife.
3: Yes, and वो टाइम पे आई थिंक कैंसल कल्चर वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, ने तो फिर वो टीवी पे दिखाया था वैसा सब ना,
4: yes.
3: चेहरे के ऊपर जोक्स,
4: yeah.
3: और पर्सनैलिटी के ऊपर जोक्स,
4: अब नहीं होते है क्या टीवी पे?
3: अभी होते, मैं नहीं देखता हूँ टीवी ना यार,
4: इसलिए पता नहीं है,
3: मैं यूट्यूब देखता हूँ ना, अभद्र चीजें देखता हूँ उसपे सब, उसपे वो सब नहीं होता है, उसपे दूसरी चीजें होती है,
4: ओके या फाइन, तो पता नहीं अभी तो टीवी पे होता है कि नहीं होता है, आप बता सकते हैं अगर आप देखते हैं तो, बट यहाँ आफ्ताब शिव दसानी के मूवीज के बारे में बात करेंगे, एंड उनके गाने आपके लिए हम प्ले करेंगे, गाने बड़े अच्छे हैं उनके मूवीज के,
3: जी आज आप सुनेंगे ये जो प्लेलिस्ट आई थिंक स्टार्ट ही हो रहा है एक बहुत ही ब्यूटीफुल गाने के साथ, एंजॉय कीजिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में।

0: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. आज हम अफताब शिवदसानी को शाउट आउट दे रहे हैं, उनके गाने यहाँ पे प्ले कर रहे हैं क्योंकि कल उनका बर्थडे है. एंड वैसे आपने बोला था ना कि वो चाइल्ड मतलब चाइल्ड एक्टर भी बहुत माना जाता है. सो डिड यू नो कि अफताब का करियर एक्चुअली में कौन सी एज में शुरू हुआ? His career started when he was just 14 months old.
1: 14 month old.
0: He was baby. He was the face for Ferrex. आपको याद है Ferrex का एक वो आता था food formula basically. तो उसका जो baby था वो that was Aftab Shivdasani and he was also called as the Ferrex baby.
1: Yeah. So उन्होंने बहुत सारी और movies में भी काम किया as a child artist. वैसे देखा जाए तो उन्होंने मिस्टर इंडिया में काम किया.
0: 1987 में थे वो चाइल्ड एक्टर.
1: आई थिंक मेरे को याद है मिस्टर इंडिया में वो चाइल्ड आर्टिस्ट एज अ वो चेहरा, बिकॉज़ चेहरा कभी बदला ही नहीं आफ्ताब का देखा जाए तो, एज अ चाइल्ड और एज अ यंग सेम चेहरा.
0: चालबाज में भी थे वो फिर.
1: या देन अव्वल नंबर एक मूवी आई थी उसमें भी थे वो.
0: और फिर उसके बाद वो कॉलेज में जब गए तब उन वो नोटिस हुए और तब जाकर आई थिंक रामगोपाल वर्मा ने उनको स्पॉट किया, उनके पोटेंशियल को स्पॉट किया और उन्हें एक लीडिंग रोल दिया मस्त मूवी में. मतलब मूवी का नाम मस्त था. 1999 में ये मूवी आई थी. या एंड इट वाज अ गुड मूवी. और उसमें भी अफताब ने काफी सही एक्टिंग की थी एक्चुअली. मैं अगर देखा
1: बहुत अच्छी एक्टिंग थी. उसका क्रश होता है उर्मिला के ऊपर. It was very nice. Actually, Ramgopal Varma ने उन्हें spot किया था एक Ecola commercial में, and then immediately casted him for the lead role in Mast movie.
0: Oh wow! And उस movie के लिए उन्होंने multiple awards भी जीते थे. Best male debut का award जीता था उन्होंने.
1: Yeah. Well, anyway, फिलहाल इस movie का ये गाना, next गाना जो हम सुनने वाले हैं, ये कसूर movie का गाना है actually में, जिसके लिए उन्होंने again best actor in negative role का award जीता था.
0: पूछो ना यार जा रहा है next.
1: पूछो ना यार है. हाँ. Okay. So, पूछो ना यार तो यही है मस्त मूवी का.
0: ये मस्त मूवी का गाना है ना. जी मस्त मूवी का गाना एंजॉय कीजिए.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now.
1: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. काफी interesting playlist है आज हमारी क्योंकि अफताब शिवदासानी को हम दे रहे हैं shout out.
2: यहाँ काफी interesting movies उन्होंने की. उन्होंने comedy की ओर और भी अपना shift किया था into comic thriller space जो कि गाना हम सुनने वाले हैं मस्ती movie से. It was a multi-starrer adult comedy movie.
1: पहली ऐसी अडल्ट कॉमेडी मूवी थी जो मुझे लग रहा है आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मूवीज थी वो टाइम पे इन टर्म्स ऑफ अडल्ट कॉमेडी. उसके बाद काफ़ी सारी जो बनी ना वो बहुत पांडू बनी लाइक मस्ती 2, 3, 4 जो भी पता नहीं वो
2: ग्रैंड मस्ती ग्रेट ग्रैंड मस्ती.
1: लेकिन उस टाइम पे ना मस्ती वॉज अ वेरी नाइस मूवी एंड क्या कूल है हम आई थी सिमिलर लाइन की दोनों बहुत ही कमाल मूवीज थी.
2: मतलब पहले मस्ती करते हैं फिर रियलाइजेशन होती है. सो इट वॉज क्वाइट कूल कॉन्सेप्ट उस समय पर.
1: अजय देवगन थे उसमें.
2: अजय देवगन भी थे. सो इसी मूवी का ये गाना भी आप सुनने वाले हैं.
1: रोमांटिक नहीं ब्यूट रोमांटिक या क्या बोलते हैं इसको
2: इट्स अ रियलाइजेशन सॉन्ग
1: इट्स अ न्यू जॉनर गिल्टी सॉन्ग.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: Traffic. Denza Premium Plug-in Hybrid SUVs.
3: Rain easing tonight for Auckland gusty northeasters and a low of 12 degrees. Pretty good on the roads. On the southern, it's a little slow from Green Lane to St Mark's Road. Southwest, and we do have reports of a crash heading onto the southern just past Great South Road. If you're planning to jump on a train tonight, delays on the eastern line, and then buses are replacing trains on the eastern and western line 9:30 till midnight.
2: Visit Denza Auckland City. Plug-in hybrids from $89,990 plus on-road costs today.
4: When you're in the loop with ANZ and you spend on a new lippy.
5: Fabulous!
4: Money loops back.
5: Fabulous!
4: Get in the loop for cashback shaped around you. Join ANZ with a Visa debit. Eligibility criteria, T's and C's and exclusions apply.
6: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI. On your side.
7: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
8: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
9: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
10: Dad, I feel sick.
11: Yep, we've all been there, and so has Sea Legs. For over 55 years, Sea Legs has been answering distress calls and helping Kiwis prevent motion sickness for up to 24 hours. So, whether you're travelling by car, plane, boat, or walker, pack your Sea Legs and enjoy the journey. Sea Legs is a pharmacy medicine. Always read the label and use only as directed. May cause drowsiness. Avoid alcohol and driving. If symptoms persist, see your healthcare professional. Radiant Health, Auckland.

0: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Trendmakers में आफ्ताब शिवदासानी के गाने आपको हम सुना रहे हैं और प्लस हमारे सुपर सिटी में जो इवेंट्स हो रहे हैं इसके डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं यहाँ पे.
1: या जैसे कि गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफर जो है ये कॉमेडी शो होने वाला है आपकी सुपर सिटी में विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में.
0: जी लेजेंडरी सिद्धार्थ रणदेरिया आने वाले हैं हमारी सुपर सिटी में और इनके टिकट्स आप फटाफट बुक कर लीजिए. premierTickets.co.nz पे आपको इसके टिकट्स मिल जाएंगे. गुजरात का मोस्ट लव्ड कॉमेडी कैरेक्टर लाइव ऑन स्टेज आने वाले हैं हमारे सुपर सिटी में एंड एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर 7:30 बजे ऑन फ्राइडे 3rd of July आपको पहुँचना है देखने के लिए. गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफर.
1: एंड आफ्ताब शिवदासानी के बारे में बात करते हैं तो ही मैरिड टू निन दुसांज. निन दुसांज जो है इनके साथ इनकी शादी हुई एंड अपनी शादी को उन्होंने बहुत ही सीक्रेट रखा था. दे शेयर ओनली विद देयर पेरेंट्स एंड बाद में ही सेड कि वो एक सुपरस्टिशन पे बिलीव करते हैं कि नो प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए नहीं तो जिंक्स हो जाता है बिकॉज पास्ट में बहुत सारे उनके हार्ट ब्रेक हो चुके थे तो वो थोड़ा अवॉइड करना चाहते थे इसीलिए.
0: एक्चुअली मैं आफ्ताब शिवदासानी को अब मैं जब पढ़ा तब मुझे रियलाइज हुआ कि उनको मैंने रिसेंटली देखा है एक सीरीज में स्पेशल ऑप्स 1.5 में. ही इज प्लेइंग अ रॉ ऑफिसर.
1: ओके
0: द हिम्मत स्टोरी ये के मेनन के ऊपर बेस्ड है एंड इट्स अ वेरी गुड सीरीज स्पेशल ऑप्स 1.5. लाइक स्पेशल ऑप्स इन जनरल देखनी चाहिए. धुरंधर जो है ना बेसिकली यू विल अंडरस्टैंड मतलब ये धुरंधर के बहुत पहले आई हुई है बट ये बहुत रियलिस्टिक है कंपेयर टू धुरंधर.
1: ओके
0: सो या यू नो हाउ देयर आर डिफरेंट एजेंट्स इन डिफरेंट प्लेस. बहुत अच्छी है स्पेशल ऑप्स देखनी चाहिए. इट्स अ ग्रेट सीरीज.
1: सो इट्स अ रिकमेंडेशन जो आप एक्चुअली में जाके देख सकते हैं. इसी नोट पे आपको यहीं पे टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अब आपसे कल मुलाकात होगी.
0: अपना ख्याल रखिए और या सुनते रहिए हम. बाय
1: बाय.

Listen up, yo. It's Valentine's Day.

नी तू झट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई पंग होगी।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Logic Finance Limited, changing lives with life.

0: To Sport Super Rugby, down to 10 teams. Moana Pacifica's gone. New Zealand Rugby not satisfied with any of the rescue proposals that they were viable enough long term. And the NBL basketball in Tauranga, the Tauranga Whai, right in contention for a playoff spot, hosting the second placed Southland Sharks. A tight first quarter, the Sharks had led 28-27. Half time, it's the Whai ahead, 45-43.
1: Sports News.
2: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
3: World's best, hamari koi branch nahi hai.
2: Hum. Night Cafe on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
4: गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द शो नाइट कैफे. लेकर मैं क्रिश आ गया हूँ. मिड वीक आज है, और जबकि मिड वीक है तो वी ऑल गेट टू एक्साइटेड, क्योंकि अब वी अप्रोचिंग थर्सडे एंड देन फ्राइडे, और वीकेंड बहुत ही नज़दीक आ जाता है और अच्छा लगता है क्योंकि आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक इज़ ऑलमोस्ट ओवर. अभी हम शो वर्किंग डे इज़ ओवर, लेकिन अभी रात को आप आराम कर रहे हैं. तो मैं क्रिश आ गया हूँ आपको और भी आराम दिलाने के लिए, और भी प्यारे गानों को लेकर, एंटरटेनमेंट लेकर, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेकर. स्पीकिंग ऑफ विच, मिड वीक मसाला कर रहे हैं आपके लिए.
2: थोड़ा हटके, थोड़ा स्पाइसी, ये है मिडवीक मसाला.
4: वेलकम एवरी वन टू मिड वीक मसाला, जिसमें मसालेदार गॉसिप आपके लिए हम लेकर आते हैं विद अ बिट ऑफ ग्रेवी. ये आपके लिए रहेगा बॉलीवुड न्यूज़, तो एक के बाद एक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ. बहुत कुछ आज है. सोना मोहपात्रा, जो हमेशा सुर्खियों में रहती है, इन्होंने कॉल आउट किया है जेंडर बायस इन बॉलीवुड म्यूजिक. शाहरुख खान डांसर्स एट हाई प्रोफाइल प्री वेडिंग सेलिब्रेशन. सनी देओल ने 25 ईयर्स ऑफ गदर सेलिब्रेट किया. न्यू बॉलीवुड पेयरिंग्स ने बज जनरेट किया है. और सारा अर्जुन टर्न्स 21. आमिर खान ने वेडिंग प्लान्स को कंफर्म किया है. तो वहीं पर बॉबी देओल ने अल्फा को प्रेज किया है. रणवीर सिंह ने जो अभी स्ट्रीमिंग कंट्रोवर्सी में एक डिबेट शुरू हुआ, इस पर भी जानकारी मैं आपको दूंगा. ये सभी को इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे समय मिलता है आपके साथ हम शेयर करेंगे. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. नाइट कैफे आपके लिए जारी है.

मिडवीक मसाला मिडवीक मसाला आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। वेलकम बैक एवरीवन। आपके लिए बॉलीवुड खबरें मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ और एक के बाद एक करके आपके साथ शेयर करूँगा। सोना मोहपात्रा, इन्होंने जेंडर बायस के बारे में बातें किया इन बॉलीवुड म्यूज़िक। इन्होंने कहा है कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ये क्रिटिसिज्म बहुत कॉमन है और होना भी चाहिए क्योंकि जेंडर बायस के लिए कोई रूम नहीं है। इन्होंने कहा कि हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स काफ़ी डिसप्रोपोर्शनेटली मेल सिंगर्स को दिया जाता है और इस कमेंट से काफ़ी बड़ा डिबेट शुरू हुआ है अबाउट रिप्रेजेंटेशन इन फिल्म म्यूज़िक। और उन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्यों वुमेन को कम इमोशनली ड्रिवन सॉन्ग्स मिलते हैं। और इसके रिमार्क से कन्वर्सेशंस अबाउट जेंडर इक्वालिटी इन बॉलीवुड ये रीइग्नाइट हो चुका है। कुछ ही देर में शाहरुख खान ने एक हाई प्रोफाइल वेडिंग पर डांस किया या वेडिंग में डांस किया, इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी आपके लिए। फिलहाल कुछ और प्यारे गाने आपके लिए।

0: मजबूत बॉलीवुड मसाला आपके लिए जारी है, जिसमें मसालेदार बॉलीवुड गॉसिप, ताज़ा तरीन खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं। शाहरुख खान एक प्री वेडिंग इवेंट अटेंड किया फॉर द डॉटर ऑफ पॉलिटिशियन सुप्रिया सुले, और वीडियोज में दिखाया कि यू वॉज डांसिंग टू द हिट सॉन्ग कोई मिल गया, और क्लिप्स काफ़ी जल्दी वायरल हो चुके अक्रॉस सोशल मीडिया। तो गेस्ट ने प्रेज़ किया इनका एनर्जी और स्टेज प्रेजेंस, और काफ़ी इनका जो अपीयरेंस है जनरेट किया सिग्निफिकेंट फैन एक्सपेरिमेंट, और इनके चाहने वाले ने तारीफों की बारिश कर दी कि अभी भी इस एज में भी शाहरुख खान बहुत कमाल धमाल कर रहे हैं। सनी देओल ने सेलिब्रेट किया ऑफ 25 इयर्स ऑफ गदर, 25th एनिवर्सरी पर इन्होंने कहा कि ये एक फिल्म इसके लिए बहुत स्पेशल है, और ये फिल्म बॉलीवुड मोस्ट आइकॉनिक ब्लॉकबस्टर्स में से शामिल किया गया है, जिसमें इन्होंने अपने फैंस को थैंक किया फॉर देयर कंटिन्यूड सपोर्ट, और इस एक्टर ने इस मूवी के लेगेसी पर रिफ्लेक्ट किया है और कहा गया है कि एक मोमेंट ऑफ नॉस्टैल्जिया रहा है अमंगस्ट द ऑडियंसेस एज मच इट वाज एन इवेंट ऑफ नॉस्टैल्जिया फॉर ऑल द पीपल जो इन्वॉल्व थे इस फिल्म को लेकर।
1: बॉलीवुड्स

नाइट कैफे मिडविक मसाला में मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं और कुछ और बॉलीवुड न्यूज आपके लिए। न्यू बॉलीवुड पेयरिंग्स की वजह से काफी बज क्रिएट हुआ है। सेवरल अपकमिंग फिल्म्स में कुछ फ्रेश ऑन स्क्रीन पेयरिंग्स के बारे में बातें हो रही है और इस बात से यह साबित हुआ है कि प्रोड्यूसर्स अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं विद अनकन्वेंशनल कास्टिंग चॉइसेस और फैंस बहुत ईगली अवेट कर रहे हैं कि किस तरह से न्यू कॉम्बिनेशन, न्यू एक्टर कॉम्बिनेशन को देखने को मिलेगा। जैसे सैयारा को ले लो, इतना फेमस हुआ और आई थिंक उसके बाद में लोग काफी और एक्सपेरिमेंटल होना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। और कहा गया है कि ये ट्रेंड खासतौर पर रोमांस, ड्रामा और फैंटेसी जॉनर्स में कॉमनली देखा गया है। इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स ने कहा है कि ये एक मूव है और एक बहुत ही बड़ा मूव है टुवर्ड्स मोर इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग, नए एक्टर्स को लेकर, नए एक्सपेरिमेंटेशन के साथ में। सारा अर्जुन टर्न्स 21, इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी आपके लिए। मिडवीक मसाला जारी और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ।

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. Midweek मसाला आपके लिए जा रही है, जिसमें बॉलीवुड खबरें आप तक हम लेकर आते हैं. सारा अर्जुन 21 साल की हो चुकी है. ये एक्ट्रेस ने सेलिब्रेट किया है 21st बर्थडे, और इनको जो फर्स्ट रिकॉग्निशन मिला है एज अ चाइल्ड एक्टर, और उसके बाद में इनका ट्रांजिशन हुआ इन टू लीड रोल्स, और काफ़ी अटेंशन इनको मिला है. रिसेंट प्रोजेक्ट्स ने इनका फैन बेस को एक्सपेंड कर दिया है, और काफ़ी लोगों ने कहा है कि इनका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होने की संभावना है. काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स ये करेंगे. इसके अलावा बॉबी डियोल ने अल्फा फिल्म को प्राइज किया है. इसमें आलिया भट्ट काम कर रहे हैं और शर्वरी के साथ दोनों नज़र आए हैं, और इन्होंने क्या कहा, बहुत ही जल्दी इस पर जानकारी आपके लिए.

0: Birthday on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: Tom DeAndre Speed on Rowa, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: At Speedy Signs, they look at the bigger picture. Yes, they make great signs, but more importantly, they create signage that helps your business grow. Their team works with you from concept through to installation, making the process simple and seamless. Clear strategy, strong design, professional finish every time. If you want signage that does more than just look good, give them a call on 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz today and grow your business faster.
2: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
3: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
2: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
3: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
4: Introducing the new chutney range from Amma's Food. Traditional coconut, tangy tomato or crunchy peanut chutney. Perfect with Amma's idli or dosa batter. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. Now available at grocery stores near you.
0: The beat of Bollywood.
5: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
0: हम Night Cafe on Hum. थोड़ा हटके, थोड़ा स्पाइसी. ये है मिडवीक मसाला.
6: You're listening to number one, I'm playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. बॉबी डियोल ने अल्फा फिल्म को प्राइज किया और प्रमोट किया है. इन्होंने कहा है कि ये फिल्म जो है एक कंप्लीट एंटरटेनर है और खास तौर पर इन्होंने आलिया भट्ट और शर्वरी के परफॉर्मेंसेस को प्राइज किया है. इंडस्ट्री इंटरेस्ट इस फिल्म में काफ़ी है क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा हो चुका है और अर्ली प्रमोशनल एक्टिविटीज़ ने काफ़ी बड़ा बज़ जनरेट किया है अबाउट दिस फिल्म और सभी फैंस बहुत ईगली अवॉइड कर रहे हैं फर्दर अपडेट्स ऑन द फिल्म. और कहा गया है कि आलिया भट्ट को एक अलग अंदाज में आप देख पाएंगे शर्वरी के साथ में और ये बहुत इंटरेस्टिंग पेयरिंग रहा है. बॉबी डियोल इज ऑल प्राइजेस फॉर दिस फिल्म अल्फा जो बहुत ही जल्दी आप सिनेमाज में देख पाएंगे. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं.
7: She likes to drop it low, man.

0: Wednesday ka tadka midweek masala on Hum.
1: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. Midweek Masala Jari aur main Krish aapke saath de raha hoon. Kuch interesting khabre aap tak hum lekar aate hain. Bhumi Pednekar ne kaha hai ki kafi greener film industry hona chahiye. Inhone kaha ki film industry must do more on sustainability. And I totally agree with her. Environment ko protect karne ke liye agar koi bhi kaarya ho, तो ज़रूरी है. और फिल्म इंडस्ट्री से बेहतर और कौन हो सकता है जबकि इनके पास इतना पावर है, इतना इन्फ्लुएंस है, इतना पहुंच है इनका. तो उन्होंने कहा कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी प्रोडक्शन के दौरान, फिल्म प्रोडक्शन के दौरान भी ज़रूरी है ध्यान में लेना. इन्होंने कहा है कि कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना ज़रूरी है. और इन्होंने इनके कमेंट्स को काफ़ी सपोर्ट दिया गया है फ्रॉम एनवायरमेंटल ग्रुप्स और इनके फैंस. और काफ़ी एडेड मोमेंटम मिला है टू ग्रीन फिल्म इनिशिएटिव्स. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ आज के लिए. मिडवीक मसाला में इतना ही, लेकिन बॉलीवुड खबरें तो आपके लिए हम पेश करते ही रहेंगे प्रोग्राम में थ्रू आउट. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: Ladies and gentlemen,
1: unfiltered with Sandy and Rusbe. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

लिए नॉन स्टॉप बगैर कोई इंटरप्शन के आप सुनते हैं आपके सारे फेवरेट्स आर्टिस्ट के गाने. आपके आर्टिस्ट तो इसमें यकीनन होंगे ही क्योंकि 30 मिनट्स के लिए अलग अलग गाने बजते हैं, तो कहीं ना कहीं पे कुछ गानों में आपके फेवरेट आर्टिस्ट तो होने चाहिए. जैसे अभी जेजी बी और ज्योतिका टंगरी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गाना रफ्तार भी पायल देव के साथ आ रहे हैं गाने में. अभिजीत, अनु मलिक, जसपिंदर नरूला, अरिजीत सिंह के दो गाने बैक टू बैक आप सुनेंगे. ऋतु पाठक भी है इस लिस्ट में. 30 मिनट्स के लिए आप ये गाने एंजॉय करें. कृष के साथ हैं एंड वेलकम बैक एवरीवन.

0: Money. You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to Krish on your number one hum playing Bollywood's biggest hits. हम के साथ जब भी आप रहते हैं तो कुछ ना कुछ फायदा होते रहता है. कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स हम लेकर आते हैं जिससे आपका बहुत बड़ा फायदा होता है. What if ये ईस्टा सिर्फ एक लॉन्ग वीकेंड नहीं रहता, लेकिन सन, स्टोरीज, केओस और ए क्र्यू साथ में कहीं पर जाते, एंड ए क्र्यू हेडिंग ऑफ टुगेदर. तो अगर आपको थोड़ा कुछ हिंट मिल रहा है या आप सोच रहे हैं क्या, किसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको हमें सुनते रहना है, बिकॉज यू वुड नॉट वॉन्ट टू मिस दिस. ये सूचना, ये जो अनाउंसमेंट है, ये आपको सुनना है हमारे साथ होकर. इसलिए आपको हम के साथ चिपके रहना है, हमें सुनते रहना है, क्योंकि ये ईस्टा सिर्फ जस्ट अ लॉन्ग वीकेंड नहीं रहेगा, लेकिन सन, स्टोरीज, केओस और अ क्र्यू हेडिंग ऑफ टुगेदर. इसके लिए आप हमें सुनते रहो. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. जारी है आपके लिए हम पर नाइट के.

0: के दिन या बीच को चाहते हो, या ब्रीज, मोर, एज, रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडियावर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडियावर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
3: Here's five ways to beat rising fuel prices. Your hop card, credit card, debit card, smartphone or smartwatch. Because you can tag on to buses, trains and most ferries with any of them. Just turn up, tag on and save when you ride with Auckland Transport.
4: Don't be an egg. Have a crack at putting eggshells in your food scraps bin instead of the rubbish. Because every scrap counts. Tāmaki Tūtaki. All together Auckland.
5: Wo Indelible Homes wali kahani sunao na.
6: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
7: Award goes to Indelible Homes.
6: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
8: Kahani of Indelible Homes.

आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हमप्लैंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स नाइट कैफे जारी है और मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। एक एक करके आपके फेवरेट सॉन्ग्स भी हम पेश करेंगे आपके लिए। ओकलैंड के लिए सूचना है फिजी इलेक्शंस वोटर रजिस्ट्रेशन की ओर से कि वेंसडे टू फ्राइडे यानी 24th to 26th June ऑफ दिस ईयर दिन में 12 से लेकर रात 8 बजे तक वोटर रजिस्ट्रेशन ओपन है आपके लिए। मेंगरी सेंटर पार्क आप जा सकते हैं, 101 रॉबर्टसन रोड मेंगरी। तो वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आप जा सकते हैं मेंगरी सेंटर पार्क, 101 रॉबर्टसन रोड मेंगरी। दिन में 12 से लेकर रात 8 बजे तक होगा, 24th to 26th of June तक। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी प्यारे गाने आपके लिए। नाइट कैफे जारी है।

0: driving you home.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला.
3: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
4: अच्छा आप दिलजीत हो?
3: आए आए बताओगे यार.
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manuko and Pukekohe. Sleepy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
6: Good evening to you with the latest at 10. I'm Geoff Ryan. Prime Minister Christopher Luxon claims it will be Labour's fault if a Kaitaia timber mill closes and up to 60 jobs are lost. Juukan NZ says it can't find a buyer for one of its two mills in the far north town, which it's selling due to rising costs and falling demand. Thoroughbred breeders have dismissed the idea horse racing is a sunset industry. In a report released today, the TAB New Zealand Racing Advisory Committee called for major and urgent reform of the industry or it will face further decline. And the Inter-Islander and Bluebridge have cancelled some sailings across tomorrow and Friday with significant swells and high winds forecast for Cook Strait. In sport, his match haul of 11 for 109 at the Oval in the second test against England has seen Black Caps pace bowler Matt Henry rise to the top of the ICC men's test player rankings. He's caught India fast bowler Jasprit Bumrah. The third and series deciding test gets underway 24 hours from now. And Wimbledon is just a few days away. Qualifying continues tonight. New Zealand number one Lulu Sun scheduled to be getting underway now.
1: Sports News.
5: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
5: Night Cafe. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
7: It is Wednesday night, midweek है आज और काफ़ी लोग खुश है क्योंकि obviously आधा जो week है ये ख़त्म हो चुका है और जैसे ही Wednesday पास हो जाता है I think everyone starts feeling excited क्योंकि weekend की तरफ हम बढ़ने लगे हैं. Monday to Friday जो लोग काम करते हैं तो I'm sure आप और भी excited होंगे क्योंकि weekend off होने जा रहा है आपके लिए और everyone I'm sure looks forward to that क्योंकि अच्छा लगता है, थोड़ा आराम करने का मौका, थोड़ा me time मिलता है, family time मिलता है. तो इस घंटे पर आपका स्वागत है. It is 24th of June. आपका जन्मदिन है, स्पेशल डे है, वेरी हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेज हमारी ओर से. हम सब नाइट शिफ्ट वर्कर्स को भी याद करते हैं, ट्रक ड्राइवर्स, ऊबर ड्राइवर्स और ऑनलाइन लिसनर्स. अगर आप हमारा साथ दे रहे हैं, रोवर लिसनर्स, आपका भी स्वागत है. बैक टू बैक सॉन्ग सुनाने का टाइम आ चुका है आपको. फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स बगैर कोई इंटरफियरेंस के आप इन्जॉय करें बैक टू बैक सॉन्ग्स.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. हम पॉडकास्ट के बारे में जितना बातें करें उतना ही कम है. इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इनके साथ होता है. अनफिल्टर्ड ड्राइव में रिसेंटली रिज़्बे और सैंडी ने बातें किया निवेदिता विज के साथ में, डिस्कसिंग थैलेसीमिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द साउथ एशियन कम्युनिटी. तो पॉडकास्ट में ये इन बातों पर गौर फरमाया गया है और आप ज़रूर सुने. वन सिंपल स्क्रीनिंग फैमिली का फ्यूचर बदल सकता है, तो आप लास्ट मिनट तक इंतजार ना करें, टू लेट तक इंतजार ना करें. साइलेंट कैरियर्स एक हिडन जेनेटिक थ्रेट होता है जो साउथ एशियन फैमिलीज के लिए एक थ्रेट बन चुका है. क्यों अर्ली थैलेसीमिया स्क्रीनिंग ज़रूरी है? वाइटल कन्वर्सेशन हर एक घर में होना चाहिए. और क्यों साउथ एशियंस हायर रिस्क होते हैं फॉर थैलेसीमिया, और क्या आपको जानना ज़रूरी है? निवेदिता शर्मा विज के साथ ज़रूर जो बातें हुई है ये आप सुने. ये एक सीजन्ड हेल्थ प्रोफेशनल है, अ मदर विद लिव्ड एक्सपीरियंस पायनियरिंग सेल्फ केयर. और साथ ही में अगर और जानकारी के लिए आप ड्राइव टेक्स्ट करते हैं 5599 पर, तो फुल ऑडियो के लिए जानकारी आपको मिल जाएगा. साथ ही में ब्रेकफास्ट कैचअप के लिए फ्यू बिट्स एंड कन्वर्सेशंस विद विजय और पूजा फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो, ये सुनने के लिए आप BF टेक्स्ट करें 5599 पर और कैचअप कीजिए अपने आप को या अपने साथ ऑन पॉडकास्ट जो हम पर आपके लिए जारी है और जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए डिस्कस करता है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Indelible Holmes wali kahani sunao na.
1: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
2: And award goes to Indelible Homes.
1: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
3: Kahani of Indelible Homes.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, hamari koi branch nahi hai.
4: Night Cafe.
6: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश के साथ है और बहुत सारे लेजेंडरी सिंगर्स को आप सुन रहे हैं देख रहे हैं और ये लाइव शोज भी करने के लिए आ रहे हैं. एक ऐसा लेजेंडरी सिंगर है राहत फतेह अली खान जो ओकलैंड आ रहे हैं एक अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक के लिए. ये मैजिक आपको एक्सपीरियंस करना है क्योंकि टाइमलेस हिट्स होंगे, सोल स्टिरिंग कवाली होंगे. इनके पावरफुल वॉइस में, कैप्टिवेटिंग वॉइस में आपको सुनना है ऐसे गाने जो आपको बेहद पसंद है. बॉलीवुड में इन्होंने बहुत सारे गानों को रिकॉर्ड किया है. 25th of July को ये शो होगा ट्रस्ट अरीना में और जय के स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शन की ओर से ये शो आपके लिए होने जा रहा है. dryTickets.com से आप टिकट्स ले सकते हैं. डबल पास जीतना है तो एक रैपिड फायर क्वेश्चन हमारे साथी आपसे जब भी पूछेंगे आपको तुरंत कॉल कर या टेक्स्ट कर जवाब देना है. ड्रो में शामिल होकर डबल पास जीतने का मौका होगा. लेजेंडरी राहत फतेह अली खान को देखने के लिए आप टिकट जरूर ले. 25th of July को ये शो होने जा रहा है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Oakland, get ready. Ek evening of laughter entertainment hone ja raha hai with Gujju Bhai ni exchange offer jisme legendary Siddharth Randeria aa rahe hain. Ye brand new comedy hai jisme Gujju Bhai finds himself caught up in an unusual exchange offer jisse series of hilarious misunderstandings, unexpected twists aur laugh out loud situations aate hain. Witty dialogues hai, relatable family moments honge aur is show mein classic Gujarati humor bhi sunne ko milega, dekhne को मिलेगा. एक होल फैमिली शो ये है आपके लिए. सिद्धार्थ रंधेरिया गुज्जू भाई प्रोडक्शन जहां पर भी जाते हैं ये सेल आउट हो जाते हैं. तो लास्ट मिनट तक आप टिकट का इंतजार ना करें. टिकट्स आज ही बुक कीजिए premierTickets.co.nz और एक्सपीरियंस कीजिए द मैजिक ऑफ गुजरात्स मोस्ट लव्ड कॉमेडी कैरेक्टर लाइव ऑन स्टेज. ये 3 जुलाई को होने जा रहा है 7:30 PM विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर ओकलैंड में ये होगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: Unconditionally, son.

0: Murphy on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: Welcome everyone. It is past 11. News and sports update ke baad mein aapka swagat hai. Night cafe jari hai. 24th. Aaj June hai. June bhi bahut hi jaldi khatam hone ko aaya hai. और मिड ऑफ द ईयर इज़ अबाउट टू फिनिश और हम लोग आगे सेवन्थ मंथ में चले जाएंगे बहुत ही जल्दी. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, स्वागत है आपका. बैक टू बैक सॉन्ग्स तो मैं लेकर आया हूँ, लेकिन इस घंटे पर कुछ इंटरेस्टिंग खबरें भी आपके साथ हम शेयर करेंगे. इसके लिए आप हमारा साथ देते रहे. जितने भी हमारे प्यारे लवली लिसनर्स हैं, आपका साथ हमें हमेशा मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है. स्पेशली रोवा के जितने भी लिसनर्स हैं, हमें अपने नज़दीक रखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया. और ऐसे ही रोवा, जहाँ पर भी आप जाते हैं, रोवा को अपने साथ लेकर जाए ताकि हम भी आपके साथ आते रहे. और जहाँ जहाँ पर आप हैं, हम भी वहाँ पर रहे आपके साथ में. क्रिश का साथ है और वेलकम टू द शो. बैक टू बैक सॉन्ग्स सुनाने का टाइम आ चुका है. व्हाट अ वंडरफुल लिस्ट आई हैव. और एक के बाद एक आपको मैं सुनाऊँगा ये सारे प्यारे गाने आपके लिए. वेलकम टू द शो एवरीवन.

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits, Krish ka saath hai. New Zealand Art and Culture Charitable Trust ki or se ek bahut hi shandar announcement hai. Shri Ram Leela aapke liye ayojit kiya ja raha hai. Stall inquiries ke liye aap Master Ashok se baate kar sakte hain. 021-179-5459 par. Ram Leela ek divine theatrical experience hone ja raha hai. Save the date, ye date aapko mark karke rakhna hai. 8th August ko hoga. और भी डिटेल्स जो है बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर किया जाएगा. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये सूचना आपके लिए है जो रामलीला लेकर आ रहे हैं आपके लिए ऑन 8th August. क्रिश के साथ और भी प्यारे गाने आपके लिए हम पेश करते रहेंगे और भी इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे.

0: कैफे ऑन हम। हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: बबीता थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर। यार
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
4: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
5: Sorry about that.
4: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
5: Kogan Mobile, true Aussie value.
4: Terms and conditions apply.
6: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
7: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
8: And award goes to Indelible Homes.
7: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
0: Kahani of Indelible Homes.
9: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
10: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Turiki, all together Auckland.
11: As a baby, I was burnt in hot water.
12: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
13: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
14: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 44999 to make a $3 donation now.

0: कैफे ऑन हम।
1: नाइट कैफे जारी है और मैं क्रिश आपके साथ जा रहा हूँ। एक एक करके आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स हम पेश करते रहेंगे, इसके लिए बस आप हमें सुनते रहो। हम कुछ और गाने आपको सुनाते हैं। वैसे बॉलीवुड न्यूज़ में आज मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया, लेकिन सलमान खान सरप्राइज कैमियो भी होने जा रहा है, जिसमें फैंस काफ़ी लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। सलमान खान एक सरप्राइज अपीयरेंस के साथ नज़र आए इन राजा शिवाजी, और लोगों ने इनके अपीयरेंस को प्राइज किया है, और क्लिप्स फ्रॉम द फिल्म काफ़ी रैपिडली ऑनलाइन वायरल हो चुका है, और व्यूअर्स ने कहा कि ये कैमियो जो कैमियो हुआ है ये एक मेजर हाईलाइट है इस फिल्म का, और इस फिल्म का जो परफॉर्मेंस है शायद इससे भी थोड़ा कुछ बूस्ट हुआ होगा या फ़र्क आया होगा, ऐसा फैंस का मानना है। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम कुछ ही देर तक, और नाइट कैफे में मैं क्रिश आपका साथ दूंगा।

0: Ka Moment. Krish Ka Magic. Only on Hum.
1: नाइट कैफे में आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, कल थर्सडे को मिलने के लिए हम आ जाएंगे, प्रोग्राम लेकर आ जाएंगे रिदम एंड रोमांस, जिसमें बहुत सारे रोमांटिक गाने और प्यारी प्यारी बातें आपके लिए होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखें, कृष का बहुत सारा प्यार, अ वेरी गुड नाइट एवरीवन। Get on the dance floor.

0: बाय द वे तुम्हें क्या करना है?
1: बाय द वे कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
0: तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी।
1: रियली?

0: साथ दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: हाँ, वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
2: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
3: And award goes to Indelible Homes.
2: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite Master Builder.
0: Kahani of Indelible Homes.

0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
2: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
3: मुझे भी
2: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए.
0: द बीट ऑफ बॉलीवुड.
4: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
5: Night flight on hum.
6: Ready? What? Two? What?

जा, तुझे क्या कहूं, मेरे ख्वाबों में, मेरी बातों में, मेरी नींदों में, मेरी रातों में, बस तू ही तू, जाने मन, मेरी जिंदगी है तू, I really miss you.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और वेटाकरे।
2: अच्छा, Hunua वेस्ट में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
6: Indelible Homes, your building expert.
7: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
8: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
7: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
9: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
10: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
11: Playing Bollywood's biggest hits.
12: Budget hit the gun day.
11: Night Flight.

0: चाहे आप हमके दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: As a baby, I was burnt in hot water.
2: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
3: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
4: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 44999 to make a $3 donation now.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।

0: Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 or search PFSL T's and C's lending and credit criteria apply.
3: As a baby, I was burnt in hot water.
4: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
5: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
6: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर। दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमचे मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, राइड्स और 5-star अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन। कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 4 Sun Tours, दैट्स 0800 4 7 8 6 8 6। लिमिटेड स्पेसेस।
2: The beat of Bollywood.
3: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: keep calm because Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
1: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
0: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
1: फ्री गिफ्ट लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापिस आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मा'स फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मा'स इडली और डोसा बैटर। अम्मा'स फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।

भागदौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: पूरी planning से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with
2: क्या?
3: The cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere.
2: अच्छा Hunua west में.
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.
5: Media voice complaints. How can I help?
6: My kids won't shut up.
5: I'm not sure that's our problem.
6: They keep reciting lines from one of your radio ads.
5: Aw, cute.
6: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
7: What do you want, son?
8: I want me some of that real southern chicken.
6: 28 times.
5: So where are you now?
6: Eating chicken.
9: Advertise with
10: Media Works.
9: New Zealand listens to us.
11: And फिर Mrs. Singh से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
12: अच्छा?
11: बताओ, तो अंडा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं.
12: Mrs. Singh.
13: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
14: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz. फिल्म बिल्कुल फेक और डेंजर एकदम रियल. इंडियाज फर्स्ट 2000 करोड़ फेक फिल्म वेलकम टू द जंगल, स्टारिंग अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, परेश रावल, रवीना टंडन, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडिस एंड मेनी मोर.
15: एक जबरदस्त कहानी है.
16: और टाइटल क्या है फिल्म का?
15: वेलकम टू द जंगल.
14: वेलकम टू द जंगल रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 26 जून. डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स. रेटिंग TBC.
17: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम.
18: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
17: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
18: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
17: और दैट्स नॉट गुड. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
19: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800 787 111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18.
20: As a baby, I was burnt in hot water.
21: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
22: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
23: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation. Now.
0: Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
24: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. Bedroom temperatures in New Zealand are falling below global standards. A study shows they average 16.5 degrees. Researcher Vicky White says, on the other hand, living rooms have gone up nearly 3 degrees.
25: The uptake of heat pumps. 20 years ago, about 1% of households in that study had a heat pump. Right now, we're over 60%.
24: A change to nitrate allowances in drinking water overseas has raised questions about New Zealand's own standards. Danish research links the contamination to bowel cancer. Associate Professor Tim Chambers says it should be taken seriously here.
26: To date, that's been one of the best and most robust studies that have been done looking at this relationship. So whether or not we could replicate a study like that in New Zealand, I'm not entirely sure with the data that we have available.
24: The Water Services Authority says safe levels will be assessed in the coming year and include the Danish research. A first Ebola case for France is highlighting the risk to frontline responders. WHO head Tedros Ghebreyesus says the doctor had just returned from a mission in DR Congo.
27: Almost 80 health workers have been infected, highlighting the risks they face and the importance of strengthening infection prevention and control. Still, the risk to the rest of the world remains low.
24: To sport, where Matt Henry has become the first New Zealander since Sir Richard Hadlee in 1990 to top the ICC Test bowling rankings. The Black Caps paceman took 11 wickets in the second test win over England. Bowling coach Jacob Oram.
28: The thing that stands out for me is how accurate he is and how he's able to execute pretty much from ball one. You don't get any looseness.
24: And Mexican teenager Kareem Lopez has become the fifth Breakers basketball player to be drafted into the NBA.
14: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Ross Skill.
1: हम परशोक सूचनाएं आप तक लाते हैं. एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस.
2: सूचित किया जाता है कि एलएसली के चंद्र नायडू और स्वर्गीय जी नायडू के पुत्र यानी अविनेश नायडू और प्रिया रेड्डी के भाई साइमन स्ट्रीट ऑकलैंड के अरुणेश रामलू नायडू की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार आज 2 बजे मेनकाउ मेमोरियल गार्डन्स 361 पुहिनुई रोड वीरी में किया जाएगा. श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 027-200-3343 पर संपर्क कर सकते हैं. एलएसली की चंद्र नायडू और स्वर्गीय जी नायडू के पुत्र यानी अविनेश नायडू और प्रिया रेड्डी के भाई साइमन स्ट्रीट ऑकलैंड के अरुणेश रामलू नायडू की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार आज 2 बजे मेनकाउ मेमोरियल गार्डन्स 361 पुहिनुई रोड वीरी में किया जाएगा. श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 027-200-3343 पर संपर्क कर सकते हैं. भूरा एन जोखन लिमिटेड सुबह के स्वर्गीय जय नारायण जोखन की पत्नी यानी रजनीश सेन, अंजनीश, जयंत, मोहिनीश और रोविन जोखन की मां होटन स्ट्रीट सुबह फिजी की भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोखन उर्फ केवला की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार शनिवार को 1 बजे वतुवांगा सुबह फिजी शमशान भूमि में किया जाएगा. श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 022-332-6843 पर संपर्क कर सकते हैं. भूरा एन जोखन लिमिटेड सुबह के स्वर्गीय जय नारायण जोखन की पत्नी यानी रजनीश सेन, अंजनीश, जयंत, मोहिनीश और रोविन जोखन की मां होटन स्ट्रीट सुबह की भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोखन उर्फ केवला की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार शनिवार को 1 बजे वतुवांगा सुबह फिजी में किया जाएगा. श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 022-332-6843 पर संपर्क कर सकते हैं.
1: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.
0: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
3: शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
2: ऑकलैंड में अभी 13.5 डिग्रीज है. आज का हाई 17, ओवरनाइट कम से कम 9 डिग्रीज. बारिश होगी शाम के समय, गंभीर बारिश हो सकती है. सनराइज 7:34 AM पर, सनसेट 5:14 PM पर आज होगा.
0: For show with Vijay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
0: Breakfast catch up.
2: 6 मिनट हो रहे हैं 6 बजकर. नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग. स्वागत है आपका द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा में. आज ट्यूसडे या थर्सडे है, 25 जून. आज की सुबह मुबारक हो आपको और गुड मॉर्निंग आपको भी.
4: आज का ये थर्सडे आपको ट्यूसडे जैसा लग रहा है?
2: नहीं, अभी नॉर्मल हो गया.
4: अच्छा, नॉर्मल हो गया.
2: हाँ, कुछ ही सेकंड्स में.
4: Very nice. But yeah, a very good morning आप सभी को. आज की सुबह की बहुत सही शुभकामनाएं हमारी ओर से. और हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ने के लिए, आप सभी के साथ और समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
2: 4 घंटों का ये बहुत ही दिलकश सफर आपके लिए होगा अभी से लेकर ठीक 10 बजे तक, जिस दौरान बहुत सारी चीजें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और इन सभी चीजों के बारे में बारी बारी से जानकारियां जो है ऑन द ब्रेकफास्ट शो आपको हम देते रहेंगे. शुरू करेंगे आज के सनी साइड अप स्टोरी के साथ.

0: सनी साइड अप।
1: तो आज की सनी साइड अप स्टोरी जो है ये ना केवल एक ट्रू स्टोरी है जो अभी नहीं कई साल पहले हुई थी, लेकिन साथ ही साथ एक मूवी रिकमेंडेशन भी है आपके लिए, क्योंकि इस ट्रू स्टोरी पर बेस्ड एक मूवी भी रिलीज हुई थी। और ये जो मूवी है इसका नाम है ऑर्डिनरी एंजल्स। ऑर्डिनरी एंजल्स जो है, अगर आपको मौका मिले, ये मेरी ओर से एक रिकमेंडेशन है, आप जरूर देखिएगा। इट्स एन इंग्लिश फिल्म बेसिकली, और ये ऑर्डिनरी एंजल्स फिल्म जो है आई कांट रिमेम्बर किस साल में आई थी, मेरे ख्याल से 2024 में मेरे ख्याल से रिलीज हुई थी। बट यस, तो आप ये ज़रूर देख सकते हैं वेयर इट्स अवेलेबल। और इसकी कहानी ये ट्रू इंसिडेंट्स पर बेस्ड है, ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। सो ऑर्डिनरी एंजल्स दरअसल एक ऐसी कहानी है विच हैज़ बीन यू नो इंस्पायर्ड बाय दिस ट्रू स्टोरी ऑफ अ रिमार्केबल एक्ट, कि अगर एक कम्युनिटी किसी को सपोर्ट करना चाहे तो वो किस हद तक आपके साथ खड़ी रह सकती है, आपको किस हद तक सपोर्ट कर सकती है। दिस एक्चुअल इंसिडेंट टुक प्लेस इन केंटकी इन 1994। ये जो स्टोरी है बेसिकली फॉलोज शेरन स्टीवंस, इनका नाम है, और शी इज़ अ स्ट्रगलिंग हेयर ड्रेसर, एल्कोहलिक भी है ये, और इसकी वजह से इनकी खुद की लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स जो ये चल रही होती हैं। बट देन शी लर्न्स अबाउट एक शख्स है जिनका नाम है एड स्मिथ, जिन्होंने रिसेंटली अपनी पत्नी को खोया, और फिर उसके बाद उनके पास वैसे दो बेटियां हैं, और उनमें से जो छोटी बेटी है मिशेल, उनको एक बहुत ही रेयर लीवर डिजीज है, और उसकी वजह से उनको अर्जेंटली लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। Now when she finds out about this family, Sharon जो है इनके साथ emotionally attached feel करती है, और फिर एकदम determined हो जाती है कि वो आसपास में जाकर लोगों के साथ जुड़कर community में involve होकर पैसे इकट्ठा करेंगी ताकि वो इस family को support कर सके। Imagine a hospital bill which was over $400,000, वो bill तक इन्होंने कैसे wave off कराया, कैसे family की financial struggles में इनकी help की, और कैसे एक सिचुएशन खड़ी हो जाती है जहाँ पर एक सीवियर स्नो स्टॉर्म जो है ये आता है, जिसकी वजह से मिशेल जो है हॉस्पिटल नहीं जा पाती है फॉर अ लाइफ चेंजिंग या लाइफ सेविंग सर्जरी। लेकिन उस दौरान नेबर्स, इमरजेंसी वर्कर्स, यहाँ की जो केंटकी के इनके पर्टिकुलर एरिया के रहने वाले जो ऑर्डिनरी लोग हैं, वो कैसे एक साथ आते हैं और हेल्प करते हैं एंड मेक श्योर करते हैं कि मिशेल जो है समय पर हॉस्पिटल पहुंच जाए। डज शी रीच द हॉस्पिटल ऑन टाइम, और डज शी गेट द यू नो द लिवर ट्रांसप्लांट जिससे कि वो सर्वाइव कर सके। ये होता है या नहीं होता है, ये तो खैर आप इस मूवी में देख सकते हैं, बट इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी जो आपको देखनी जरूर चाहिए, बिकॉज दिस स्टोरी एक्चुअली यू नो रिमाइंड्स यू कि डिफिकल्ट टाइम में द पावर ऑफ कम्युनिटी, द पावर ऑफ काइंडनेस एंड द पावर ऑफ होप, जो डिफिकल्ट टाइम्स में आप में होना चाहिए, वो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। तो ये आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आज का सनी साइड अप नॉट जस्ट एक स्टोरी है विच एक्चुअली हैपेंड, बट एक मूवी रिकमेंडेशन भी है आपके लिए।
2: तो इसे आप देख सकते हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन भी बन सकता है। 20 मिनट हो रहे हैं 6:00, थोड़ी देर बाद ग्लोबल हेडलाइंस हम आपके लिए लेकर आएंगे।
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Ladies and gentlemen,
0: unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं, और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: Professional Financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
2: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process was simple and frank.
1: Business finance ya income protection ho. Har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
2: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
3: Bunnings brings you the lowest prices on Solid Energy 15-litre kindling box, just $13.40. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Lowest prices are just the beginning.
4: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी. Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
5: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
6: Indelible Homes, your building expert.
7: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Global Headlines.
9: सुबह के मुख्य समाचारों में यूरोप में भयानक गर्मी यानी हीट वेव का कहर है, जहां फ्रांस ने अपना सबसे गर्म दिन देखा और यूके स्पेन ने जून के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए. इस एक्सट्रीम हीट वेव से कम 40 लोगों के डूबने की खबर आई है और हालांकि 2003 के उस डेडली हीट वेव जैसे लग रहे हैं जिसने 15,000 लोगों की जानें ली थी. हालात इतने ख़राब हैं कि यूके मेट ऑफिस ने पहली बार रेड एक्सट्रीम हीट वार्निंग जारी की है, क्योंकि वहां टेम्परेचर 39 डिग्रीज तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देगा. भारत में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्पष्ट किया है कि इंडियन पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और इसे सिटीजनशिप या गवर्नमेंट बेनिफिट्स के लिए पक्का सबूत नहीं माना जाना चाहिए. यह क्लैरिफिकेशन तब आया जब ऑफिशियल्स इंडिया के पासपोर्ट इकोसिस्टम में हुए बड़े रिफॉर्म्स के बारे में बता रहे थे, जिससे अब पासपोर्ट बनना पहले से ज़्यादा आसान और सिकिवा हो गया है. टेक्नोलॉजी और बेहतर प्रोसीजर्स की वजह से अब पासपोर्ट प्रोसेसिंग का टाइम घटकर सिर्फ 5 वर्किंग डेज रह गया है और लोगों को पीएसके में 45 मिनट्स से भी कम समय लग रहा है. फिजी में फिजी स्पोर्ट्स काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गिलबर्ट वकललम्बुरे और ऑपरेशंस मैनेजर लिथिया सेनिम्बुलू को बोर्ड ने नौकरी से निकाल दिया है और उनके खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट को पुलिस सीआईडी के पास भेज दिया गया है. फिजी विलेज की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स ने उन पर बिना बोर्ड अप्रूवल के काम करने, रैम्पेंट मिसमैनेजमेंट, अनऑथराइज्ड एक्सपेंसेस और $115 मिलियन के फेल्ड विंड टर्बाइन प्लेन जैसे कई गंभीर आरोप की जांच की है. ये मामला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और बिना अप्रूवल के फैसले लेने से जुड़ा है और इसी बीच ऐसी रिपोर्ट है कि भूतपूर्व सीईओ गिलबर्ट वकललम्बुरे देश से बाहर चले गए हैं. फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत आज कई जबरदस्त मैचेस खेले जाएंगे. अभी से 35 मिनटों बाद स्विट्जरलैंड कनाडा से खेलेगा और ग्रुप बी के एक और मैच में बोस्निया हर्जेगोविना कतार का सामना करेगा. सुबह 10 बजे ग्रुप सी के मैचेस खेले जाएंगे. मोरक्को हाइटी से खेलेगा, स्कॉटलैंड की भिड़ंत ब्राजील से होगी. दिन में 1 बजे साउथ अफ्रीका और कोरिया के बीच या साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया के बीच ग्रुप ए का एक मैच होगा, जबकि ग्रुप के दूसरे मैच में चेचनिया मैक्सिको से खेलेगा. इन सभी मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे. फिलहाल राउंड ऑफ 32 के लिए कुछ टीमें क्वालिफाई हो चुकी हैं. जर्मनी अगले मंगलवार को राउंड ऑफ 32 के एक मैच में नजर आने वाला है। उसके अलावा मेक्सिको अगले बुधवार को अपना राउंड ऑफ 32 मैच खेलेगा। अगले बृहस्पतिवार को यूएसए की टीम नजर आएगी। अगले शनिवार को अर्जेंटीना का मैच जो है ये खेला जाएगा। कोलंबिया की टीम भी अब राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। मैचेस पर और भी अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आते रहेंगे।
7: Hollywood's most wanted.
10: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
11: मैं लाऊं अपना ए गेम।
7: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
8: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.

0: मोहम्मद इरफान और उनका ये बहुत ही लाजवाब गाना हम पेश कर रहे थे। और हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स जिसके साथ 25 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। एक फिल्म जो है ये बन रही थी लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसी कोई फिल्म जो है ये तैयार हो रही है।
1: ऐसी कौन सी फिल्म है
0: ये? जो फिल्म है पहले मैं आपको बताऊँ, सेप्टेम्बर महीने में रिलीज होने जा रही है। और इस नॉट मूवी लेकिन इस स्टोरी ने ऑलरेडी जो OTT प्लेटफॉर्म है उसमें काफ़ी रेवोल्यूशन जो है ये लाया था।
1: ओके
0: और ये यूँ कह सकते हैं कि इंडिया का फर्स्ट मेजर वेब सीरीज फ्रेंचाइज है जो अब बड़े पर्दे पर आने वाली है।
1: रियली?
0: यस।
1: कौन सा?
0: अब आप अनुमान लगाइए कौन सा हो सकता है, कौन सा वेब सीरीज?
1: वो पहली वेब सीरीज जो OTT पर काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी वाज जिसमें वो सैफ अली खान थे यार, व्हाट इज द नेम ऑफ इट, सेक्रेट गेम्स।
0: हाँ
1: नहीं, वो नहीं नाम था ना, सेक्रेट गेम्स नाम ही तो था ना।
0: हाँ शायद था
1: पर वो नहीं है,
0: वो नहीं है।
1: ओके, अनदर बिग OTT जो काफी OTT प्लेटफॉर्म पर जिस पर्टिकुलर वेब सीरीज ने काफी धूम मचाई थी वाज मिर्जापुर सेकंड वन।
0: ओके,
1: ये बहुत पॉपुलर हुई थी।
0: हाँ, दैट इज द वन।
1: ओ, मिर्जापुर।
0: मिर्जापुर अब बड़े पर्दे पर आने वाली है।
1: ओ वाओ, रियली?
0: हाँ, कल जो मेकर्स हैं इन्होंने जो कैरेक्टर पोस्टर्स हैं ये रिवील किए हैं और फ्रेंचाइज के 3 मोस्ट आइकॉनिक फेसेस जो हैं ये रिलीज होने वाले हैं या रिलीज किए गए हैं। एक है कालीन भैया।
1: ओके, दैट्स पंकज त्रिपाठी।
0: दूसरे गुड्डू पंडित।
1: That's अली जफर, नहीं अली फजल।
0: Yes, और तीसरे कौन हो सकते हैं?
1: तीसरे विक्रांत मसी का तो कैरेक्टर मर गया था ना, तो वो कौन है, वो एक और एक बंदा यार, I forgot the name, मुन्ना भैया।
0: वो तो सेकंड सीजन में मारे गए थे ना।
1: अच्छा, मैंने देखी नहीं है मैंने सिर्फ वो, इनफैक्ट मैंने पूरी की पूरी मिर्जापुरी नहीं देखी है, मैंने सिर्फ वो देखा है जहाँ पे रील्स बोलते हैं ना कट कट करके।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो मैंने वो उसमें देखा था कि विक्रांत मसी का कैरेक्टर एंड देयर वाज श्रिया पिलगांवकर इनका कैरेक्टर ये मर गए। कुड इट बी श्वेता त्रिपाठी?
0: नहीं,
1: आई डोंट नो देन।
0: सो इस फिल्म में इस फिल्म के साथ वापसी कर रहे हैं मुन्ना त्रिपाठी।
1: वो कौन है?
0: मुन्ना त्रिपाठी, मुन्ना त्रिपाठी है।
1: That's Munna Bhaiya.
0: Munna Bhaiya.
1: Then why did you lie?
0: No, I didn't lie. He died in the second season.
1: तो वापसी कैसे कर रहे हैं जब मर गए?
0: फिल्म में वापसी कर रहे हैं ना, सच में नहीं मरे थे।
1: Oh, okay.
0: तो पंकज त्रिपाठी जो है कि he is making a comeback as the kingpin और उनका जो पोस्टर है जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी कालीन भैया की होगी। आपका स्वागत करते हैं बड़े पर्दे पर।
1: वेरी नाइस।
0: जस्ट इमेजिन पंकज त्रिपाठी इस डायलॉग को अगर बोल रहे हैं।
1: I don't know, as I said, कि मैंने देखी नहीं तो मुझे ज्यादा नहीं पता, but I heard कि लोगों को बहुत पसंद आई है।
0: Yeah, I loved it. गुड्डू पंडित का पोस्टर जो रिलीज हुआ है उसमें लिखा है शुरू मजबूरी में किए थे अब मजा आ रहा है। गुड्डू भैया आ रहे हैं बड़े पर्दे पर, तैयार है ना? और मुन्ना भैया का या जो कैरेक्टर है उनके पोस्टर के साथ हिंदी फिल्म के हीरो हैं हम, कहा था ना हम अमर हैं, मुन्ना भैया का भौकाल अब बड़े पर्दे पर।
1: क्या बात है भाई।
0: हाँ, खत्म हो गया, बस मेरी खत्म।
1: अच्छा,
0: हो गया।
1: हाँ, लो। मुझे लगा कोई और लाइन भी आपको बोलनी है।
0: अरे, तीन कैरेक्टर्स मैंने बताए थे, तीनों के बारे में बताया
1: था। बोल दी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई डोंट नो अगर यू नो समथिंग लाइक ये क्या नाम है मिर्जापुर, जो लोग OTT प्लेटफॉर्म पर देखते थे वो फिल्मी पर्दे पर जाकर आई मीन सिनेमाज में जाकर देखेंगे नहीं देखेंगे, नो आइडिया अबाउट दैट।
0: आई थिंक एनीबॉडी जिसने मिर्जापुर को पसंद किया था OTT पर
1: जाएंगे।
0: I will go.
1: Okay. You will go.
0: I'll go. Yeah. I loved Mirzapur.
1: आप तो सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं मुझे लगता है क्योंकि कई बातें आप ऐसे ही बोल देते हैं। But anyways, whatever the situation is, so finally it is happening and once it releases, let's see कि इस फिल्म को कितना लव जो है ये मिलता है।
0: इस मिर्जापुर द मूवी इसके पीछे कुछ और चीजें हैं और ये सारी डिटेल्स अभी रेडियो पर हम नहीं देंगे लेकिन कुछ देर बाद हम .rover.nz पर ये स्टोरीज आपके लिए अवेलेबल होंगी।
1: ओके,
0: आप जाकर चेकआउट कर सकेंगे।
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
3: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है। Accurate traffic.
4: Would you trade in your house?
5: A high of 16, wet and a bit windy at times. Into the city, Southern Motorway 33 minutes from Manukau to town, an hour from Drury. Heavy patches, Papakura to Manurewa. Slow on and off to Mount Wellington and heavy at Ellerslie. Northwestern 26, Massey to town. Slow patches there to Te Aratu at the Causeway and St Luke's to the city. Northern 22 from Constellation. Slow Greville on and off to the bridge.
4: Trade in your house with Generation Homes. Visit generation.co.nz for more information.
3: Winter aa gaya hai at Martin and Mega Westgate or Henderson with deals on Karcher 18-volt garden skins or 20% off Mica Thermic and selected convection heaters. Plus, spend $20, enter online and be in to win 5 grand. Ends June 30th. T's and C's apply.
6: Wo Indelible Homes wali kahani sunao na.
7: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
8: And award goes to Indelible Homes.
7: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
9: Kahani of Indelible Homes.
3: Film bilkul fake aur danger ekdam real. India's first 2000 crore fake film Welcome to the Jungle, starring Akshay Kumar, Jackie Shroff, Arshad Wasi, Paresh Rawal, Raveena Tandon, Disha Patani, Jacqueline Fernandez and many more.
10: Ek zabardast kahani hai.
11: Aur title kya hai film ka?
10: Welcome to the Jungle.
3: Welcome to the Jungle, releasing in cinemas on 26th June. Distribution partner Forum Films, rating TBC.
12: No, we'll be late.
13: We'll be all right. I'll call the AA.
14: Award-winning road service. Just one of the many benefits of AA membership. With over 45 ways to save every day, it's the membership with more. Join us today at aa.co.nz.
15: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: अभी 18 मिनट रह गए हैं 7 बजने में और आज सुबह सुबह आप में से कुछ लोगों ने हमें याद किया, गुड मॉर्निंग विश किया, इसके लिए थैंक यू सो मच. 5 बजे के वक्त मैंडी का मैसेज आया, अ वेरी गुड मॉर्निंग मैंडी, थैंक यू सो मच.
3: और इनके अलावा बॉबी मान जी, आपने भी अपना गुड मॉर्निंग मैसेज जो है हर सुबह की तरह आज भी हमारे पास भेजा. जय साई राम, पूजा एंड विजय, हैप्पी थर्सडे, साइंस ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच बॉबी मान जी आपके भी साथ और आपके भी मैसेज के लिए.
2: राम राम, जय साई राम, हैप्पी थर्सडे एवरीवन, हैव अ ब्लेस्ड डे. मिस्टर माटा माटा की ओर से ये मैसेज आया है.
3: और साथ में आज एक और गुड मॉर्निंग मैसेज परमा महाराज जी की ओर से हमारे पास आया है. जय श्री राम, पूजा एंड विजय, हैव अ ग्रेट डे एंड बी ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच परमा जी आपके मैसेज के लिए भी.
2: और साथ ही में आज गुड मॉर्निंग एंड राम राम विजय एंड पूजा, आज का दिन शुभ और मंगलमय रहे, लविंग द प्रोग्राम. जया, थैंक यू सो मच, वी विश यू अ ग्रेट डे आल्सो.
3: And of course, we've got one more message. Komal ki ur se, unhone kaha, good morning, Vijay and Pooja. Hope you guys have a great day. Enjoy. Thank you so much, Komal. Wishing you a wonderful day ahead as well. And thank you so much, aapke saath ke liye bhi.
2: और आज पहले बीते कुछ दिनों के मिलान में आज कम से कम 2-3 और लोगों ने सुबह सुबह हमको याद किया, सो थैंक यू सो मच. अभी 17 मिनट रह गए हैं 7 बजे में और आज मत भूलें, एक और अपॉर्चुनिटी ऑन द ब्रेकफास्ट शो आपको मिलेगी, राहत फतेह अली खान लाइव इन कॉन्सर्ट. इसके लिए डबल पास जीतने का मौका हम आपको देंगे, सो स्टे ट्यून्ड.

0: आज के पहले थ्रोबैक टाइम हो गया है, लेकिन उसके साथ ये भी याद रखें आज 25th of June है। अगर आपने अपने बर्थडे और एनिवर्सरी मैसेजेस वगैरह हमारे पास नहीं भेजे हैं, यू गॉट टाइम टू डू दैट। आप 5599 पर टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ईमेल कर सकते हैं buzz@hamfm.com पर। एक और गुड मॉर्निंग मैसेज आए हैं। गुड मॉर्निंग राम राम विजय जी, पूजा जी, विशिंग यू अ वंडरफुल डे। विमलेश और प्रिया, आपको भी ये सुबह मुबारक हो।
1: वैसे आज एक और एक स्टोरी है या फिर खबर है जो हम आप सभी को देना चाहते हैं। रिसेंटली दिल्ली में राष्ट्रपति भवन दिल्ली इंडिया में जब वहां पर पद्म भूषण जो है ये लोगों को दिए गए, जो पद्म भूषण का खिताब है, तो उस दौरान एक शख्स है जो लोगों की नजर में आई एंड काफी लोग काफी कंसर्न भी थे इनको देखकर, क्योंकि नियरली 2 सालों बाद ये लोगों को दिखी हैं। शी स्टेड अवे फ्रॉम द स्पॉटलाइट ड्यू टू इनका जो हेल्थ कंडीशन है, जिसकी वजह से इनको हियरिंग लॉस हुआ है। बट शी सेज दैट शी हैज स्टेड अवे फ्रॉम द स्पॉटलाइट, धीरे धीरे शी इज फाइंडिंग हर वे बैक और शी इज नन अदर देन अलका याग्निक।
0: हाँ, उनके बारे में भी खबर आई थी ना कि वो प्रोजेक्ट्स भी नहीं ले रही हैं, काम भी नहीं कर रही हैं, क्योंकि हेल्थ इश्यूज का सामना वो कर रही हैं।
1: इमेजिन द आर्टिस्ट जिनको आपने कितनी बार सुना है, कितने कमाल के गानों में सुना है। सम ऑफ यू माइट हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू हर एंड दिस इज द टाइम जहाँ पर शी इज फेसिंग सच अ डिफिकल्ट थिंग इन लाइफ, और वो अभी फिलहाल सुन नहीं पा रही है। हियरिंग लॉस की वजह से उनको जो भी डिफिकल्टीज हो रही है, दैट्स व्हाई शी इज नॉट टेकिंग एनी मोर प्रोजेक्ट्स। बट जब इनको पद्म भूषण रिसीव करते हुए देखा गया है राष्ट्रपति भवन में, देन शी लुक विजिबली वीक एंड आई थिंक समवन वाज हेल्पिंग हर, ताकि वो जाकर अपनी सीट तक बैठे और फिर वो चलकर जाए अपना अवार्ड लेने के लिए भी। तो पीपल हैव शोन देयर कंसर्न्स और उन्होंने अपने अपने कंसर्न्स जो है ये डेफिनेटली रेज किए हैं। बट ऑफकोर्स अलका याग्निक, जैसे कि हमने कहा, शी हैज एड्रेस्ड इट सेइंग कि भी वो फिलहाल इस सारी चीज़ों से दूर रहना पसंद करेंगी बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज, और जैसे जैसे वो रिकवर होंगी धीरे धीरे उन्होंने कल को वापस ही वो कर सकती हैं। पर फिलहाल के लिए आपसे हम जानना चाहेंगे आपका फेवरेट अलका याग्निक सॉन्ग। इफ आई जस्ट से अलका याग्निक, तो आपके दिमाग में सबसे पहला गाना वो कौन सा आता है?
0: ओके, तो वो आप हमें बताएं। लेट्स सी उनका कौन सा गाना सबसे पॉपुलर है हमारे लिसनर्स के बीच। गाने तो उन्होंने बहुत सारे कमाल के गाए, क्या कोई एक गाना स्टैंड आउट करता है या नहीं?

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: आज भी ऑकलैंड में बारिश जो है ये होगी और सुबह के वक्त कुछ कम के साथ आगे दिन में बढ़कर गंभीर बारिश हो सकती है। अभी क्लोज टू 14 डिग्रीज है, आज का है 17। ओवरनाइट कम से कम 9 डिग्रीज होगा। आज सनराइज 7:34 AM पर, सनसेट शाम 5:14 पर होगा।

0: Go.nz.
1: 3:30 हो रहे हैं, 7:00 और मॉर्निंग मैडनेस में आपका स्वागत हम कर रहे हैं। RPS टायर्स की ओर से जो दिन के 2400 घंटे मोबाइल टायर सर्विसेज जो है ये आपको प्रोवाइड करते हैं। rpstyres.co.nz आप विजिट कर सकते हैं, उनके सर्विसेज के बारे में डिटेल्स हासिल करने के लिए। इस घंटे तमाम चीज़ें होंगी, स्टार्टिंग ऑफ विद योर राशि वाइब्स जो थोड़ी ही देर में आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं। ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM और रोवर पर आप हमारे साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। पिछले घंटे अलका याग्निक के गाने के बारे में हम बातें कर रहे थे, तो एक ही पर्सन है जिन्होंने बताया कि उनका फेवरेट अलका याग्निक गाना कौन सा है।
2: हाँ, इन्होंने लिखा है नितिका ने कि इनका फेवरेट गाना है गली में चांद निकला, जख्म फिल्म का। लव दिस वन, इट वाज माय मॉम्स फेवरेट सॉन्ग, इन्होंने कहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ना। व्हाट अबाउट यू, आपका फेवरेट अलका याग्निक सॉन्ग कौन सा है?
1: बहुत सारे हैं।
2: बहुत सारे नहीं, एक टेक बताओ ऐसा जो आपको बहुत पसंद हो।
1: गली में आज चांद निकला।
2: अच्छा, वही वाला कॉपी कर लिया आपने।
1: हाँ,
2: वेरी नाइस। आई लाइक दैट सॉन्ग, घूंघट की आर से मुझे बहुत पसंद है वो गाना भी। किस फिल्म का था वो? फिल्म का नाम क्या? खूबसूरत वो नहीं रे, वो घूंघट की आर से दिलबर का दीदार।
1: ओ, हम है रही प्यार के।
2: हाँ, वो गाना। सी, एक एक लाइन से दो गाने हो सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच नितिका आपके मैसेज के लिए। आज डेफिनेटली आपके लिए कुछ गाने जो है अलका याग्निक की आवाज में हम जरूर लाने की कोशिश करेंगे। पर फिलहाल तो आपके लिए, जबकि मॉर्निंग मैडनेस हम शुरू कर रहे हैं और मॉर्निंग मैडनेस की बातें जबकि हो रही है आप सभी के साथ, थोड़ी देर बाद आपके राशि वाइब्स ये आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे
1: जी।

0: तो ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, 8 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर, और हमने, अगर आपने अच्छी तरह से सुना होगा तो पिछले घंटे आपको कुछ बताया था।
1: बिल्कुल, हमने ये कहा था कि आपके पास मौका है कि आप जीत सके राहत फतेह अली खान इनके शो के लिए जो होने वाला है अगले महीने, इसके लिए डबल पासेस। और डबल पास जीतने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी, बट उससे पहले आपको याद दिला दें कि राहत फतेह अली खान द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान जो है ये आ रहे हैं सुपर सिटी ऑकलैंड अपना बहुत ही अमेजिंग शो जो है ये लेकर। एंड अगर आप भी इनके इस अनफॉरगेटेबल म्यूजिकल नाइट का हिस्सा बनना चाहते हैं, द ट्रस्ट अरेना 25th of July को ये हो रहा है, जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शंस की ओर से। तो dryticketsdotcom से आप विजिट करते हुए टिकट जरूर ले लीजिएगा, और टिकट्स वंस यू ग्रैब देम देन बी रेस्ट अश्योर्ड दैट आपके पास तो टिकट है भाई, आप तो मजे मजे इस शो का मजा जो ये उठा सकते हैं ना।
0: और आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस, शहजादा प्रोडक्शंस की ये पेशकश, ट्रस्ट अरेना विल कम अलाइव जब उनकी आवाज जो है ये गूंजेंगी। तो ड्राई टिकट से टिकट्स ले सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो पर हम आपको अब देने जा रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी आप अगर सही सही इसका फायदा उठा सकते हैं तो आपका नाम उस ड्रो में शामिल हो जाएगा जिसमें आप एक डबल पास जीत सकते हैं टू गो एंड वॉच उस्ताद राहत फतेह अली खान लाइव। और क्या करना होगा, 5 सवाल होंगे रैपिड फायर, एकदम फटाफट आपको जवाब देना होगा, एंड विद इन 30 सेकेंड्स आप इन 5 सवालों के जवाब अगर दे देते हैं तो आपका नाम ड्रो में शामिल हो जाएगा। लेकिन जवाब देने के लिए, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए कॉल तो करना पड़ेगा आपको, और कॉल करने के लिए लाइंस अब हम खोल रहे हैं 0800 004866। आज अर्ली मॉर्निंग जो लोग तड़के सुबह निकल जाते हैं ना, जनरली कुछ देर में ये मौका हम आपको देते हैं, तो शायद जो लोग तड़के सुबह निकलते हैं आप ये अपॉर्चुनिटी जो है ये मिस कर देते हैं, तो हमने सोचा आज चलो थोड़ा पहले ये मौका आपको देते हैं, सो दैट एवरीवन हैज अ फेयर चांस।
1: राइट, तो कॉल कीजिए हमारे पास, और जो भी सबसे पहला शख्स कॉल करेगा उसी को ये मौका मिलेगा ना।
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं, अभी थोड़ी देर बाद राशि वाइब्स भी आपके लिए लेकर आने, 30 सेकंड्स तक का और हम इंतजार करेंगे, एंड लेट्स सी इफ समवन्स इंटरेस्टेड आउट ऑफ यू, जितने भी लोग आप सुन रहे हैं आप में से क्या कोई उस्ताद राहत फतेह अली खान लाइव इन कॉन्सर्ट इसके लिए एक डबल पास जीतने का मौका चाहता है। तो नंबर जैसे हमने आपको पहले बताया है, फॉर द फाइनल टाइम हम आपको बता रहे हैं 0800 004866। दिस इज द नंबर जिस पर आपको कॉल करना होगा। हम तैयार हैं, टाइम अभी तैयार है, बस आपका इंतजार था और आप भी आ गए। गुड मॉर्निंग, हेलो, हेलो,
2: गुड मॉर्निंग,
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे भाई?
2: आप कैसे?
0: हम भी ठीक हैं। क्या नाम है आपका?
2: अमित।
0: आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है, देयर इज समथिंग रॉन्ग।
1: आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहे हैं बातें करने के लिए? इज इट
2: नहीं, मैं तो हेडफोन का इस्तेमाल कर रहा हूं।
1: अच्छा, बट फिर भी इसे डिसोर्टेड सी आ रही है आपकी आवाज, मतलब हमें थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है समझने में कि आप क्या बोल रहे हैं। बट क्या नाम बताया आपने अपना?
2: अमित कुमार।
1: अमित कुमार, ओके अमित। सो आपको राहत फतेह अली खान पसंद है?
2: जी बहुत।
1: आपने इनको कभी लाइव परफॉर्म करता हुआ देखा है?
2: नहीं कभी नहीं देखा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आई वॉच हिम।
1: You know, I'd definitely wish कि आप सही सही जवाब दे दो हमारे सारे सवालों का, ताकि आपको मौका मिल जाए कि आप इनको एटलीस्ट एक बार लाइव देख लो, ठीक है?
2: Sure.
1: इसके लिए मैं आपको बता दूं, 30 सेकंड्स का टाइम मिलेगा आपको, और 30 सेकंड्स के अंदर अंदर फटाफट आपको हमारे सवालों का जवाब जो है ये देना होगा। एंड अगर आपने सभी सवालों के सही सही जवाब दे दिए

0: तो आपका नाम हम इसरो में शामिल करेंगे, ठीक है?
1: ओके, तो तैयार हैं आप?
2: जी, आई एम रेडी।
1: ओके, अब टाइमर शुरू होगा, उसके साथ आपका वक्त शुरू हो रहा है अब।
0: आई आस्क द क्वेश्चन एंड देन द टाइमर विल स्टार्ट, ठीक है?
2: थैंक यू।
0: राइट अमित, ऑल द वेरी बेस्ट। आज का सबसे पहला सवाल आपके लिए, राहत फतेह अली खान का प्रोफेशन क्या है, सिंगर, एक्टर या क्रिकेटर?
2: सिंगर।
0: विच हिट सॉन्ग बाय राहत फतेह अली खान वॉज फीचर इन द मूवी ओम शांति ओम?
2: पास।
0: विच कंट्री अवॉर्डेड राहत फतेह अली खान द सितारे इम्तियाज, वन ऑफ इट्स हाईएस्ट सिविल ऑनर्स? Which popular song Rahat Fateh Ali Khan starts with the line "Taakte rehte tujhko saanj savere"?
2: Dabang.
0: Dabang? Gaana pucha tha aapne, movie ka naam bata diya. Char sawal ho paaye, aapne ek pass kiya aur ek galat answer diya. Humne pucha tha which country awarded Rahat Fateh Ali Khan the Sitara Imtiaz Award, jo one of its highest civilian honors hai. It's actually Pakistan. तो आपने हाँ, इसने इसका आपने गलत आंसर दिया। पहला सवाल कि उनका प्रोफेशन क्या है, सिंगर, एक्टर या क्रिकेटर, आपने सिंगर कहा, एब्सोल्युटली करेक्ट। और जो दूसरा सवाल था वो आपने पास कर दिया, तो उसका जवाब मैं नहीं बताने वाली। आई यूज द सेम क्वेश्चन सम अदर डे।
1: ऐसा करते हैं, आज इन्होंने इतनी सुबह सुबह कॉल किया ना, ही ट्राइड, इनका नाम ड्रो में शामिल कर देते हैं।
0: अच्छा, और इन्होंने कभी देखा भी नहीं ना उनको,
1: कभी देखा भी नहीं है ना। अमित, आपके मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स 4467?
2: Yes, thank you.
1: Okay, thank you so much. You know, सुबह सुबह आपने कॉल किया, we do not want to start your day with on a sad note, तो चलो।
0: इनको बड़ी दया आ रही है आप पे आज अमित।
2: Oh, thank you so much.
1: Thank you. You have a great day. तो अमित का नाम जो है ये ड्रो में हम शामिल कर रहे हैं, और कुछ और लोगों का नाम हम ड्रो में शामिल कर सकते हैं, provided आपको हम 2.5 minutes का टाइम देंगे।
0: फिर क्या होगा?
1: 2.5 minutes का टाइम आपको देंगे, आपको बस अपना नाम और अपना जो लोकेशन है वो टेक्स्ट करना है हमारे पास।
0: ओके, इंटरेस्टिंग।
1: बट ओनली स्ट्रिक्टली, वेरी स्ट्रिक्टली 2.5 minutes।
0: ओके, विद इन दैट टाइम फ्रेम ओनली।
1: हाँ, अपना नाम, अपना लोकेशन 5599 पर आप हमारे पास भेजें।
3: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
4: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
3: हाँ।

0: Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
0: Rashi Vibes.
2: चलिए देखते हैं दिन कैसा रहेगा आज का आपका. सबसे पहले मेष यानी एरीज, आज आपके लिए कहा जा रहा है कि बिजनेस ट्रेवल अच्छा जाएगा, कुछ फायदे के मौके टाइम एंड अगेन आपको मिलेंगे. समझदारी से काम करें, ख्याल रखें कि बेकार की बातों में अपना टाइम ना वेस्ट करें. आप ऑफिस में तरक्की हो सकती है और बिजनेस में थोड़ा स्पीड अप आप नोटिस करेंगे. उसके बाद वृश यानी टॉरस, कोई बड़ी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है. ऑफिस में दिन अच्छा जाएगा, कुछ सोशल वर्क करने के लिए आप इंस्पायर्ड रहेंगे और आज कई लोगों को आप इन्फ्लुएंस भी कर सकेंगे. मिथुन यानी जेमिनी, बिजनेस अच्छा चलेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए दिन बढ़िया है. दूसरों के काम में इंटरफियर ना करें और अपने हेल्थ का भी आज आप ख्याल रखें. और उसके बाद अब कर्क यानी कैंसर,
3: आज आपके लिए वैसे बताया जा रहा है कि जीवन साथी का हेल्थ जो है आपका थोड़ा बिगड़ा रहेगा, इसकी वजह से आप वरीड भी रहेंगे और गाड़ी चलाते समय किसी भी तरह की मशीनरी का इस्तेमाल करते समय आपको केयरफुल रहना है. कीमती चीजों को संभाल कर रखें, गुम हो गए या चोरी हो गए तो नुकसान बहुत होगा जिससे आपको परेशानी बहुत होगी.
2: और फिर उसके बाद सिंह यानी लियो, बिजनेस बढ़िया चलेगा, खुशियां होंगी, बॉसेस काम से खुश रहेंगे, किस्मत का साथ मिलेगा, सभी काम पूरे होंगे. जल्दबाजी ना करें और जो काम डिलेड थे वो भी आज पूरे हो सकते हैं.
3: कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आपका नौकरी पर काफी बड़ा प्रभाव जो है ये पड़ सकता है और इसी वजह से आपसे कहा गया है सोच समझकर फैसले जो है ये आप ले. दूसरों के झंझट में ना पड़े, पता चला किसी की मदद करने के चक्कर में खुद का नुकसान आप कर बैठे हैं. घर और बाहर काफी हैप्पी और अच्छा एनवायरमेंट रहेगा. यू एंजॉय योर डे टुडे.
2: तुला यानी लिब्रा, स्टूडेंट्स के लिए दिन बढ़िया है, आपके काम को भी प्रेज किया जाएगा, काफी बिजी रहेंगे. यू विल ट्राई टू बैलेंस एवरीथिंग और इसका कुछ असर आपके हेल्थ पर भी पड़ सकता है और ट्रेवल अच्छा जाएगा आपका.
3: वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है कि कोशिश अधिक करने की वजह से आपको फायदा वैसे कम होगा लेकिन और भी ज्यादा फायदा हासिल करने के लिए मेहनत करते रहनी पड़ेगी, कोशिश करते रहनी पड़ेगी आपको. आज आपके लिए कहा जा रहा है बिजनेस अच्छा चलेगा, एक्सपेंसेस में कमी हो सकती है. ऐसी आप के दिन जो है आज बीतेंगे जहां पर यू सी कम एक्सपेंस मतलब ज्यादा फायदा.
2: धनु यानी सेजिटेरियस, आज कोशिशें सफल होंगी, उन्नति करेंगे. जल्दबाजी में कोई नाम काम ना करें, कोई पुरानी बीमारी की वजह से आज आप परेशान हो सकते हैं.
3: मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कहा गया है कि आपकी कोशिशें सफल होंगी, नौकरी के मामले में जो भी प्रयास आप कर रहे हैं वो भी सफल होंगे और बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा चलेगा, ऐसा आपके लिए कहा जा रहा है.
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, कोई गिफ्ट वगैरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अचानक कहीं से फायदे के कुछ आसार नजर आ सकते हैं, बड़े प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा और एक्सपेंसेस भी आज आपके कुछ बढ़ सकते हैं.
3: और फाइनली मीन यानी पाइसेस, आपके लिए बताया गया है कि आज किसी से भी मजाक ना करें वरना मामला जो है आपके लिए गड़बड़ हो सकता है. नेगेटिविटी आज आपके आसपास बनी रहेगी तो कोशिश करें खुद को थोड़ा कंट्रोल करें, आप नेगेटिव सोच ना रखें मन में, गुस्से पर कंट्रोल करें, फालतू खर्च ना करें. आज बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की मांग जो है कि आपसे की जा रही है. सो ये थी आज के आपके राशि वाइब्स. उम्मीद करते हैं आपका आज का दिन बढ़िया और कमाल का गुजरे.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: We'll be right. I'll call the AA.
2: Award-winning road service. Just one of the many benefits of AA membership. With over 45 ways to save every day, it's the membership with more. Join us today at aa.co.nz.
3: The puffer you've been eyeing? Maybe it's a sign. Kathmandu's winter sale is on now. Enjoy 40 to 50% off our most loved puffer jackets. However you do winter, do it with Kathmandu.
4: Okay, everyone, I'm calling an important meeting for next Tuesday afternoon.
5: Sounds important.
4: It's bloody important. It's a bloody important meeting.
5: A bloody important meeting?
4: Bloody important. We're giving blood and plasma as a blood group.
5: Oh, I've always wanted to be in a group.
6: This week, get your blood group together to give blood or plasma. Go to nzblood.co.nz now to see if you can donate, book, and then send that bloody important meeting invite. Give blood. Give plasma. Save lives.
7: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
8: मुझे भी।
7: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
9: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
10: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
11: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz।
12: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune.

0: अलार्म।
1: चलिए देखिए आज के हमारे सेलिब्रिटी की पहचान आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, जो भी होगा ये पता चलेगा जब आवाज हम आपको सुनाएंगे।
2: बिल्कुल, तो हम तो आवाज सुनाने के लिए एकदम तैयार हैं, पर क्या आप तैयार हैं या नहीं ये आपको बताना है।
1: सो हैव अ लिसन और उसके बाद ट्राई करें आइडेंटिफाई करें कि ये आवाज किन की है। तो ये है आज की हमारी सेलिब्रिटी।
2: ये तो बहुत इजी है यार, शी इज सो पॉपुलर, आई डाउट एनीवन वुड मेक अ मिस्टेक विद दिस वॉइस।
1: ओके, सो अच्छी तरह से एक बार फिर आप आवाज जो है ये सुन लें।
3: It's fine to live with your parents because it's also common in India that we don't have to take appointments with our parents to meet for dinner. So.
1: तो अब बताएं ये आवाज किन की है?
2: तो अगर आपको आवाज पहचान में आ गई है, इनका नाम याद आ गया है, तो फटाफट हमारे पास आप मैसेज करें। समवन सो पॉपुलर, समवन ऑफ हर कैलिबर, इनका ये इंटरव्यू जो है काफी वायरल होता है हर बार, इनफैक्ट जब भी इनके बारे में बात होती है। रीजन बीइंग बिकॉज द वे शी हैड रिप्लाइड टू अ क्वेश्चन विच अ लॉट ऑफ पीपल फाउंड इंसल्टिंग। बट क्या आपने इनका ये वीडियो देखा है, इंटरव्यू देखा है? नहीं देखा है, पर क्या बिना देखे आप इनकी आवाज़ पहचान सकते हैं? इफ़ येस, तो फटाफट अपने आंसर्स 5599 पर हमारे पास भेजें। सबसे पहले आपको लिखना होगा BF, फिर यू आंसर योर नेम ऑन 5599।
0: Bollywood's most wanted.
4: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ। मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: news.co.nz.
1: News headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में, ऑकलैंड में एक शख्स चलते हुए प्रिजनर एस्कॉर्ट वैन के पीछे लटक गया, जिसके सोशल मीडिया वीडियो पर करेक्शंस डिपार्टमेंट ने सख्त चिंता जताई है। मेंस प्रिजन्स डेप्यूटी कमिश्नर लिस वोथन ने साफ किया है कि वो शख्स कोई प्रिजनर नहीं बल्कि पब्लिक का बंदा था और ड्राइवर्स को इस हादसे की खबर बाद में किसी और ने दी। न्यूजीलैंड के रिसोर्सेस मिनिस्टर शेन जोन्स और सरकार ये बताने से इनकार कर रहे हैं कि टोरंटो में माइनिंग कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका होटल कन्वेंशन सेंटर के बिल्कुल पास था या नहीं। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जोन्स ने इस कनाडा ट्रिप पर $63,000 खर्च किए, जबकि कैबिनेट ने सिर्फ $33,000 अप्रूव किए थे, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को बाद में बचा हुआ खर्चा अप्रूव करना पड़ा। इस ट्रिप पर दो लोगों के चार रातों का होटल बिल $13,397.52 आया, जिसका मतलब है कि हर रात एक शख्स को के रुकने का खर्चा लगभग $1,674.69 था। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के अंतर्गत फिलहाल इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच खेल जारी है। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और सात खिलाड़ी खोकर 186 रन बनाए। वेस्ट इंडीज अभी 3 ओवर्स के बाद 12 रन पर हैं। कल सुबह 1:30 बजे इंडिया बांग्लादेश से खेलेगा। उधर फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत ग्रुप बी के दो मैचेस अभी खेले जा रहे हैं। प्रथम हिस्से में आधे घंटे का खेल पूरा हो चुका है। स्विट्जरलैंड और कैनेडा निलोल से बराबर, जबकि बोस्निया हर्जेगोविना की जीत कतार के खिलाफ 2-0 से हो रही है। 10 बजे मोरक्को हाइटी से खेलेगा। स्कॉटलैंड की भिड़ंत ब्राजील से होगी और 1 बजे साउथ अफ्रीका साउथ कोरिया का सामना करेगा और चेचिया की भिड़ंत मैक्सिको की से होगी। इन सभी मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आएंगे।
0: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today.

0: RNZ.
1: वैसे आज नसरत अली ये भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बीवी हैं आपकी, बेटा है, और जितने भी रिश्तेदार हैं सभी उम्रदराजी की दुआएं आपके लिए मांग रहे हैं। अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आपको भी हम कहना चाहेंगे। इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और साथ ही में आज का हमारा सेलिब्रिटी अलम
2: फिलहाल के लिए चलिए आज देखते हैं कितने लोगों ने हमारे पास अपने अपने जो मैसेजेस है ये भेजे हैं हमारे सवाल के लिए। सबसे पहले मतलब हमने आवाज जो आपको सुनाई थी ऐश्वर्या राय बच्चन, ये था आज का हमारा सेलिब्रिटी अलार्म का सही जवाब। और जितने लोगों ने अपने आंसर्स भेजे एज एक्सपेक्टेड सभी ने यही जवाब दिया। सोम वॉज द फर्स्ट वन टू आंसर, जिसके बाद सरजीत और सनी है, साथ में विनील है मनुरेवा से, शुभम आपका भी आंसर हमें मिला है, मोनिशा है, तन्वी है, आपका भी जवाब जो है कि हमें मिल चुका है। इसके अलावा नजीब आपने भी अपना सही जवाब जो है कि हमें दिया।
1: राकेश हैं साथ में, किसी ने कहा है अमिताभ बच्चन या अभिषेक आई बच्चन लिखा है, और ओ ऐश्वर्या बच्चन, अच्छा सॉरी, नंदिनी है साथ में, फ्रांसीना है, रिया है, एक गलत आंसर मैंने देखा था अमिता है, अच्छा हाँ 9310 इन्होंने गलत आंसर भेजा था, कंगना रनावत
2: राइट। उसके अलावा निक का सही जवाब आया है। थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए।
1: हरी है पोकेनो में, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी।

0: Streaming on Rover.
1: Accurate traffic.
2: The LifeWise Trust Big Sleep Out. Please donate now.
3: A high of 16, cloudy and wet at times today. Into the city, Southern Motorway slowest of the bunch, 52 minutes Manukau to town. Slow all the way from Papakura, heavy most of the way in from Motahuhu. Slow both ways on the southwestern motorway at Mount Roskill and Whitty. Northwestern, 35 in from Massey. Slow Massey on and off to the CBD, heavy at St Luke's. Northern, 28 from Constellation. Fine to Milford, but heavy on and off from there.
2: Support Auckland's homeless by donating at bigsleepout.org.nz.
4: Bunnings Trade is here to help you get indoor projects sorted with 134 Trade. For stock queries, order and delivery updates, quick quotes and pricing, or general inquiries, call the team on 0800 134 872. Bunnings Trade, helping business is our trade.
5: Absolutely everything is on sale at Freedom. Last chance to get up to 60% off absolutely everything. Plus, enjoy free delivery. Hurry, sale must end Tuesday. Only at Freedom.
6: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम. परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV. जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
7: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927 88 600.

0: 10 मिनटों के बाद न्यूज इन स्पोर्ट्स अपडेट है। आपका ईस्टर 2027, जस्ट इमेजिन, खूबसूरत नज़ारे, नए दोस्त, रोड ट्रिप प्लेलिस्ट, बेहद लजीज खाना, हंसी मजाक, ये फिल्म नहीं लेकिन आपका ईस्टर 2027 हो सकता है।
1: बिल्कुल, ये सपने नहीं है, ये हकीकत हो सकता है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहे, ये सच में आपके साथ हो सकता है अगर आप चाहे तो। लेकिन कैसे जानने के लिए आपको बस सुनते रहना, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में हम आपको डिटेल्स देंगे जरूर, जो आपके ईस्टर 2027 को और भी कमाल और बेहतरीन जो है ये बना सकता है।
0: फिलहाल ऑस्ट्रेलिया का कई देशों में, कई सिटीज में आपने शायद पहले पढ़ा या सुना होगा, सिटी क्रायर्स होते हैं।
1: सिटी क्रायर्स क्या होता है?
0: सिटी क्रायर्स आप गूगल करके देख लीजिए, ऑफिशियल टाउन क्रायर्स होते हैं। और ये जो टाउन क्रायर हैं ऑस्ट्रेलिया के एक शहर के, इन्होंने गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर लिया है फॉर हिज पावरफुल वॉइस, जब इन्होंने चीखा एट 122.4 डेसिबल्स। और जोसेफ मैकग्रेल बेटअप, ये कैनबरा के ऑफिशियल टाउन क्रायर हैं। कैनबरा और क्विनबियन वहाँ के ये ऑफिशियल टाउन क्रायर हैं। और उन्होंने गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को बताया, हिज पाइप्स हैव नॉट ऑलवेज बीन सो पोटेंट। उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे उनकी आवाज़ बहुत भारी नहीं थी, बहुत शाय थे, और बाद में इन्होंने सेटर ज्वाइन किया एंड तब जाकर ही गोट ट्रेंड एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड इनको 2017 में टाउन क्रायर अपॉइंट किया गया था एंड स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन एंशंट एंड ऑनरेबल गिल्ड ऑफ ऑस्ट्रेलियन टाउन क्रायर्स कॉम्पिटिशन। और अब जाकर इन्होंने मई महीने में, लास्ट मंथ, जो रिकॉर्ड था इसे तोड़ा है एट 122.4 डेसिबल्स।
1: ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, नाउ आई नो व्हाट यू मीन। जो ऐसे अनाउंसमेंट्स करते हैं ना शहर में सड़कों पे घूम घूम के, उनको बोलते हैं ना सिटी क्रायर्स। सो वेरी इंटरेस्टिंग। और ऐसे ही बोलते हैं कि जब बचपन में कोई एक चीज़ आपके हित में ना हो, उस पर काम करने पर बड़े होकर जब वही चीज़ आपका पावर बन जाए, तो इट्स अ थिंग वर्थ टॉकिंग अबाउट।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 13 डिग्री टेम्परेचर अभी ऑकलैंड में आप फील कर रहे हैं. आज का हाई 17, ओवरनाइट कम से कम 9 डिग्री आज होने वाला है. बारिश होगी बाद में चलकर. आज शाम के समय कुछ गंभीर बारिश का अनुमान भी लगाया गया है. सनसेट आज का शाम 5:14 पर होगा.
0: ब्रेकफास्ट शो

0: Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: सो ट्रेंड पेट्रोल की बारी आई है. सबसे पहले तो ट्रेंड पेट्रोल में आपको यही बता दें कि पेट्रोल का प्राइस कितना है आज.
2: ट्रेंड करता रहता है,
1: ट्रेंड करता है यार. पेट्रोल प्राइसेस दैट मेक यू गो क्रेजी ऑल द टाइम. लेकिन आज आपको बहुत से गर्ल सर्विस स्टेशंस में और कुछ और भी स्मॉलर सर्विस स्टेशंस है यहाँ पर 18 सेंट्स ऑफ पर लीटर जो फ्यूल है ये मिलेगा.
2: 18 सेंट्स, दैट्स क्वाइट गुड.
1: 18 सेंट्स इज अ गुड डील. सो आप अगर फिल अप करने वाले हैं, टुडे इज अ गुड डे टू गेट दैट डन. और आप ये सॉर्ट आउट कराइए और उसके साथ साथ जानिए जैपनीज टेक्निक्स के बारे में. कहा जाता है कि जैपनीज कल्चर और जैपनीज टेक्निक्स कुछ ऐसे होते हैं जो आपके लाइफ को टोटली बदल सकते हैं इफ यू फॉलो देम. और अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो यू कैन सी द बिगेस्ट पॉसिबल चेंज जो आपको सच में बेहतर से बेहतरीन जो है ये बना दे. जैपनीज माइंड सेट कैन हील यू एंड आपके लिए एक ऐसा चेंज लेकर आएगा दैट यू विल थैंक इट. तो अगर इसके बारे में हम बातें करें सो सबसे पहला जो एक रूल होता है वो है यू डोंट नीड टू सॉल्व योर होल लाइफ टुडे. एक परसेप्शन बन जाता है ना हमारे माइंड में कि लाइफ में ये प्रॉब्लम है, लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आज ही अभी ही चलो इस पर काम करते हैं, शुरू करते हैं, हमें अभी इसका रिजल्ट ये चाहिए. पर ये एक परसेप्शन जो अपने जहन से हमें निकालना पड़ेगा कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रही हो, फैमिली से लेकर कोई इश्यूज हो या फिर आपके रिलेशनशिप को लेकर कोई प्रॉब्लम हो, वो इन दिस मोमेंट सॉल्व नहीं होगा. एक्सेप्ट दैट एंड देन वर्क ऑन इट स्लोली स्लोली. सॉल्व योर लाइफ बिट बाय बिट, नॉट टुडे. ये एक चीज आपको एक्सेप्ट करनी होगी और इससे आपको ज़्यादा आसानी होगी चीज़ों को डील करने के लिए, चीज़ों को सही करने के लिए. यू विल फाइंड योर पेस, यू विल फाइंड योर तरीका. और इसी वजह से ये भी आपको याद रखना चाहिए कि ये एक ऐसी चीज़ होती है जो स्लो एंड स्टेडी आपकी लाइफ में चेंजेस जो है ये लेकर आते हैं.
2: तो इन चीजों पर आप थोड़ा गौर जरूर करें. थोड़ी देर बाद व्हाट्स अ टेक में आज का टॉपिक जो है ये हम लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कि आज किस चीज़ के बारे में बातें जो है ये इस प्रोग्राम में हम करने जा रहे हैं. इन द मीन टाइम जो मैचेस हैं फीफा वर्ल्ड कप के, इन पर भी डिटेल्स आपको जल्दी से दे देते हैं. अभी जो आज के पहले दो मैचेस हैं ये खेले जा रहे हैं. एक मैच जो है दूसरे हिस्से में शुरू हो चुका है और अब स्विट्जरलैंड की जीत जो है ये कनाडा के खिलाफ 1-0 से हो रही है. दूसरे मैच में हाफ टाइम पर इट्स बोस्निया हर्जेगोविना 2 और कतार 1.
3: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today, Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Get 199 deals this week only at Trade Depot. Chest freezers, 199. 32-inch smart TVs, 199. Ceramic cooktops, 199. Laundry tub and cabinet, 199. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
2: Bunnings has lowest prices nailed.
3: Like CRC 420mm 556 multipurpose, just $9.57. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details.
4: Farmers Lingerie Week is now on with 25% off women's lingerie, including Burley, Triumph, Fendon, Jockey, Bonds and more. Plus, earn double Farmers Club points on all lingerie brands. Farmers Lingerie Week is now on. Conditions and exclusions apply.
5: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर लिव बेटर। फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
6: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
7: क्यों, क्या हुआ?
6: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
8: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
10: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
9: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
11: What's your take?
12: व्हाट्स योर टेक का वक्त अब हो चुका है ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, जबकि 17 मिनट हो रहे हैं अब 8 बजकर,
13: और द रश आवर जबकि आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं व्हाट्स योर टेक का। आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर आपको अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने, वी'd लव टू टॉक टू यू, रिमेंबर दैट। सो 0800-004-866 पर आपका कॉल इज वेलकम, और ऑल यू नीड टू डू इज अपने व्यूज हमारे साथ आपको शेयर करने हैं अबाउट द टॉपिक टुडे। आज का हमारा टॉपिक हमने बहुत बार सुना है, बहुत बार देखा है, बहुत बार पढ़ा है। इनफैक्ट आजकल सोशल मीडिया पे भी जब आप ओपन करो तो बहुत से ऐसे मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल बातें होती हैं, तो उस दौरान भी ये चीज मैंने बहुत बार बहुत से लोगों को कहते हुए सुनी है। आप अपना यू नो लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्रोबेबली माइग्रेट हो रहे हैं, एक नए देश जा रहे हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, आप अपनी नई गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं, अपना खुद का घर लेने के बारे में सोच रहे हैं, अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। कहते हैं कि लाइफ में ये जो बड़े बड़े फैसले हों, बड़े बड़े कदम उठाने हैं आपको, इस दौरान किसी से कभी भी कुछ भी मत कीजिए, अपना मुंह बंद रखिए बेसिकली।
12: ओके,
13: जब तक वो पूरा ना हो जाए अपना मुंह बंद रखो, ये हमेशा मैंने सुना है लोगों को कहते हुए। और कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि कई लोग ऐसा कर भी देते हैं, लाइक दे गो अहेड एंड दे कीप शट, जब तक उनका वो जो भी यू नो कदम है वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, वो जब तक पूरा ना हो जाए दे डोंट शेयर इट विद एनीवन, एनी पर्सनल गुड न्यूज दे डोंट शेयर इट विद एनीवन। बट मोस्ट सिचुएशंस में स्पेशली हमारी इंडियन कम्युनिटी में हमने नोटिस किया कि बहुत से रिलेटिव्स जो होते हैं ये थोड़ा नाराज हो जाते हैं, यू नो दे गेट ऑफेंडेड कि अरे आपके बेटे ने घर ले लिया बताया ही नहीं, टोंट टोंट में ऐसे बोल देंगे, या फिर अरे आपने तो बोला ही नहीं कि आपके घर नई गाड़ी आने वाली है, आपका बेटा विदेश जाने वाला है, ऐसे ऐसी बातें होती हैं ज़रूर. और दैट एक्चुअली बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर पीपल इन सम सिचुएशंस वेयर दे फील लाइक अरे ये क्या हो गया, ऐसे अच्छा तो बता ही देते, ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला. बट अगर हम आपसे सवाल करें विच साइड आर यू ऑन, अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो कि आपने ऐसा कुछ किया एंड इट वर्कड आउट फॉर यू एंड यू हैव नॉट शेयर्ड इट अनलेस एंड अंटिल वो चीज़ पूरी हो गई, या फिर आपने किसी से काम होने से पहले बोल दिया और वो काम नहीं बना और फिर उसके बाद आपके साथ कैसा बर्ताव हुआ, जो भी है ये अगर आप शेयर करना चाहें. बट लेट अस नो कि व्हाट्स योर रीज़न ऑफ पिकिंग अ साइड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. किसी से बोलना है आपका काम करने से पहले, काम होने से पहले, या नहीं बोलना चाहिए.
12: गुड मॉर्निंग सपना.
7: गुड मॉर्निंग विजय जी. गुड मॉर्निंग पूजा.
13: गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कैसी हो आप?
7: मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो?
13: बढ़िया है सपना जी, एकदम बढ़िया है. तो आपकी क्या राय है?
7: पूजा, टॉपिक बहुत सही है और ये ना नजर इज रियल.
13: नजर इज रियल.
7: मैं तो मीम में जवाब दे रही हूँ, पर नजर इज रियल होता है, बहुत होता है
13: आपके साथ. अच्छा,
7: के साथ तो होते
13: हैं. अच्छा, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? एनी एक्सपीरियंस दैट यू'ड लाइक टू शेयर? कि
7: समथिंग हुआ है. समथिंग.
13: अच्छा बताइए जरा.
7: दो बार हुआ है मेरे साथ ऐसा. एक्चुअली हमारा पहले एक साल पहले न्यूजीलैंड मूव होने का प्लान था.
12: अच्छा.
7: तो हम लोगों का था किसी को बताना नहीं है, बट मैं कुछ काम से अपने कजिन से मिलने गई और वहाँ मैंने बता दिया कि हम लोग मूव होने वाले. और उसके बाद एज आई केम बैक मुंबई, मेरी मदर इन लॉ गिर गई, उनका फ्रैक्चर हो गया और हमारा एक साल और आगे बढ़ गया मूव होने का.
13: अच्छा.
7: ऐसा. और उसके बाद अभी रिसेंटली मेरे पापा आने वाले थे और जैसे ही उनकी वीजा लगी हमने सबको बता दिया कि वीजा लग गई और पापा आएंगे. और क्लोजर टू द डेट पापा की ट्रेवल के मेरी मदर इन लॉ फिर बहुत बीमार हो गई और हम लोगों को जाना पड़ा, तो पापा का आना कैंसिल हो गया.
13: तो दो बार तो ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है
7: हमारे. हाँ, तो इसलिए अब कुछ भी, अभी जब पापा आए, फाइनली जब आए तो पापा जब यहाँ पहुँच गए ना ऑकलैंड एयरपोर्ट से, हमने सबको बताया कि पापा पहुँच गए, हमने नहीं बताया किसी को.
13: ओके. सो यू बिलीव कि सच में नहीं बताना चाहिए.
7: और मैंने सिर्फ हमारे साथ नहीं, हमने और लोगों के साथ भी देखा है ऐसा होता हुआ.
13: ओके.
7: बोल दो ना तो वो चीज कभी होती नहीं है.
13: ओके.
7: मतलब हमारी मेरी मम्मी भी बोलती थी कि नहीं, बहुत हूस हो जाती है इसलिए नहीं बोलना चाहिए. सिंधी में बोलते हैं वो लोग.
13: क्या हो जाती है?
7: तो नहीं बताना चाहिए. हूस हो जाती है, नहीं बोलना चाहिए. मतलब सब जने पूछ करके, नजरें आपके ऊपर होती है सबकी, फिर ऐसा होता है.
13: ओके.
7: एंड नजरें, इट इज पॉजिटिव नेगेटिव बोथ. तो
13: कौन एग्जैक्टली. ट्रू. थैंक यू सपना, थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया.
7: टेक केयर. थैंक यू. बाय.
12: 0800-800-004866 ये हमारा नंबर है. क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, स्पेशली समथिंग बिग इन योर लाइफ, या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं समथिंग बिग इन योर लाइफ, जब तक वो हो ना जाए तब तक किसी से नहीं कहना चाहिए. हाँ, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर आप बोल देते हैं तो वो नहीं होता है या फिर वो आप नहीं अचीव कर पाते हैं. क्या आप इस बात में मान्यता रखते हैं? तो
13: What about you? While we waiting for the calls, जब तक लोग हमारे पास कॉल कर रहे हैं, आपका क्या कहना है इसके बारे में?
12: मेरा ये कहना है, नजर वजर की बात तो मुझे नहीं पता, बट मेरा ये मानना है पर्सनली कि कुछ चीजें अपने आप तक ही हो तो अच्छा है.
13: अच्छा. ओके. You think कुछ चीजें खुद तक रखनी चाहिए?
12: Yeah, that's what I feel. Good morning. Hello.
11: Good morning जी, कैसे हैं दोनों?
13: बढ़िया जी. आप सुनाइए, आप कैसे हो?
11: Very well, thank you. I believe कहीं ना कहीं तो मन करता है कि इसी को नहीं मानना चाहिए. नो, आप आगे बढ़ रहे हैं, हमने अपने पेरेंट्स को सुना है. लाइक आई हैव हर्ड माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड एवरीबडी टॉकिंग अबाउट दिस, कि जब भी कुछ काम नया करना हो तो उसको यू शुड बी बीटिंग अराउंड, उसको जस्ट क्वाइट रखना चाहिए एंड जब हो जाए तब लोगों को बताओ. एंड आई एम नॉट टू श्योर बाकी पार्ट ऑफ इंडिया, पंजाब में तो ये चीज काफी मानी जाती है. बट कई बार लगता है कि यार ये क्या है ऐसा, यू नो मॉडर्न वर्ल्ड, व्हाट, हाउ डस इट मैटर, ये चीजें रियल है भी है कि नहीं, बट होती है. पर्सनल एक्सपीरियंस रिसेंटली ऑल्सो हमने कुछ नया काम शुरू किया, उसके बारे में माइंडसेट था कि शायद लोगों को बताएंगे तो काम बढ़ना चाहिए. बिफोर इवन स्टार्टिंग इट वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट. तो चलो, काम तो हमने शुरू किया बट विद लॉट ऑफ हर्डल्स. उसमें अगेन इट मे हैव हैपेंड क्योंकि वो होनी थी बट कुड हैव आल्सो हैपेंड कि वो नजर लगती है एंड यू नो व्हेनेवर यू स्टार्ट
13: व्हाटएवर द रीजन इज
11: वी रियलाइज दैट कि जब हम डिंडोरा पीट देते हैं पहले ही किसी काम का तो उसमें कुछ ना कुछ इवन दो यू आर वेरी पॉजिटिव एंड यू डू विद क्लियर हार्ट अपने अच्छे मन से आप हर चीज करते हैं
13: अड़चने आ जाती है
11: कुछ ना कुछ तो उसमें रुकावट आ जाती है हां जी
12: थैंक यू सर थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए आपका स्वागत है गुड मॉर्निंग हेलो
14: हेलो
12: जी भाई
14: जी भाई मॉर्निंग कैसे हो आप
12: गुड गुड गुड आप कैसे हो
14: पूजा जी गुड मॉर्निंग मैं ठीक हूँ मैं भी चलो मैं भी शेयर करता हूँ मेरा
13: हाँ जी बोलिए बोलिए दिनों के
14: साथ एनीवे यू नो ये मेरा वाइफ का एक्सपीरियंस था तो I applied for a visa for my wife and my daughter. So she got granted in another couple of weeks or something, you know.
12: Huh.
14: And her wife ne pata nahi sab kisko bola kahan se bola pata nahi and baat phail gayi and she got visa declined.
12: Acha.
13: Acha.
14: Jaise aaya sabko bol diya mera wife pata nahi kisko bol diya. I don't know. kisi na pata nahi jalat se kya hai. And she got a call and says that we have to send the passport back to immigration officer. And by then, she can investigate. Then there's got to be someone call and say blah, blah, blah. And I don't know. Aisa bhi hota hai.
13: So you've also experienced it.
14: Yeah, you never actually kisi ko batana nahi kuch chadar to kaam ho gaya agar ho bhi gaya tab tak aapka destination tha nahi pahunche na it's very secret rehna bahut zaruri hai
12: लोगों की नजर पत्थर फाड़ होती है
13: पत्थर फाड़
12: बट ऑन दी अदर साइड अडानी अंबानी को किसी की नजर क्यों नहीं
13: लगती ये एक बहुत कॉमन सवाल बहुत से लोग हमेशा पूछते हैं बट आई डोंट नो यार उनको नजर वो थोड़ा बट ऑन दी अदर हैंड एक और चीज है वो आपको ढिंडोरा पीट कर थोड़े ना बता रहे होते कि किस बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले कौन से यू नो कौन सा बिजनेस वो खरीदने वाले कहाँ पर पैसा भेजने वाले किसके साथ उनका क्या कुछ यू नो होने वाला है बिजनेस में दे डोंट शेयर ऑल दीज डिटेल्स तो हो सकता है ना दिस इज अनदर रीजन
12: किसी ने मैसेज किया है यस यू शुड कीप इट टू योरसेल्फ स्पीकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस माय हस्बैंड एंड आई डिसाइडेड टू मूव टू मेलबर्न When husband told his family and friends, all pushed him to not go. They told him all the negative things about starting up in a new country from scratch again. Guess my husband got cold feet, and we ended up staying in Auckland.
13: Oh, interesting. I believe that you should stay quiet about your plans until you have accomplished it. If you listen to successful people, one advice, always stay quiet about your plans. The Gita explains this. Leak of your goal.
12: तो आपकी भी जो राय है 5599 पर हमें भेज सकते हैं
9: Bollywood's most wanted.
15: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ
16: मैं लाऊं अपना A game.
9: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Vijay and Pooja.
1: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
2: Accurate traffic.
3: National Burns Awareness Month.
4: A high of 16. Showers, even rain on and off through the day. Coming into the city, Southern Motorway, the slowest of the bunch. 48 minutes, Manukau to town. Slow patches from Manurewa. Heavy Otahuhu to Remuera. Southwestern, slow northbound at Wiri. Southbound around Onehunga. Northwestern, 35 in from Massey. Slow from Te Aratu. Heavy Point Chef to Greylin. Northern, half an hour from Constellation. Slow there to the bridge.
3: Text BURN to 4499 for a $3 donation to help the BURN support group.
5: The Cooperative Bank has shared over $25 million in profit with our customers. Switch to the Cooperative Bank today and get a share of $25,000. Bank better, New Zealand. Apply by the 31st of July. T's and C's and eligibility criteria apply.
6: The King Living Winter Sale is on now. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale on now. Shop online or visit a King Living showroom today.
7: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है क्या आप तैयार हैं बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें गटरों को साफ रखें खुली चीजों को बांध लें अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें अभी की गई तैयारी बाढ़ के तनाव से बचा सकती है तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें अधिक जानकारी के लिए विजिट auckland emergency management.gov.nz/floods
8: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
9: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
10: मुझे भी
9: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियां पकाएं खुशियां खिलाएं

0: Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
1: अभी 24 मिनट रह गए हैं 9 बजने में. 9 पर न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे. और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना ने एक स्लीप और इंटीमेसी एक्सपेरिमेंट जो है ये किया था, और जहां पर पार्टिसिपेंट्स को कहा गया था कि वो अपना जो एक्सपीरियंस है उसे एक डायरी में लिखें, और उसके बाद पता है क्या रिजल्ट सामने आया. इस रिजल्ट में बात सामने आई कि स्लीपिंग next to someone you love can help you fall asleep faster. आपको अगर किसी ऐसे शख्स के साथ सोते हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं तो आपको नींद जल्दी आती है, डिप्रेशन कम होता है और आपकी उम्र भी लंबी होती है. जस्ट इमेजिन, इतने सारे फायदे होते हैं इसके. तो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना ने ये रिसर्च जो है ये किया था. बाय द वे, फीफा जो वर्ल्ड कप के मैचेस अभी खेले जा रहे हैं, बोस्निया हर्जेगोविना 2 कतार 1, और स्विट्जरलैंड की जीत अभी कनाडा के खिलाफ 2-1 से हो रही है. इस मैच पर और भी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे.
2: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz. Love.

0: वैसे हमने कहा था ना कि हर थर्सडेज को हमारी बातें जो है ये लॉजिक फाइनेंस के गुरु से भी होती हैं, तो कुछ देर से ही सही लेकिन गुरु आगे हैं लाइंस पर हमारे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग भाई।
1: गुड मॉर्निंग विजय भाई, कैसे हो?
0: एकदम अच्छा हूँ। और बताइए कि आज किन किस चीज़ के बारे में हम पर्टिकुलरली फोकस करने जा रहे हैं? अभी आई थिंक कल परसों में पढ़ रहा था, अरे भाई इनका तो लाइन ही ड्रॉप हो गया, कल परसों में पढ़ रहा था कि जो बैंक्स हैं ये इंटरेस्ट रेट्स वगैरह जो है ये चेंज कर रहे हैं। कुछ बैंकों के बारे में खबर आई थी कि यू नो मॉर्गेज रेट्स वगैरह जो है इसमें कुछ बदलाव हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो आज क्या स्पेशल है हमारे लोगों के लिए?
1: देखोगे तो they've started to उन्होंने थोड़े टाइम पहले हल्का सा रेट बढ़ाया था, बट they've now backtracking it and interest को वही जो उन्होंने बढ़ाया था उसको वापस नीचे लेके आ रहे हैं, so which is a very good sign and they can see that you know stability is coming और interest rates को वहीं पे रखना चाहिए, और उसकी वजह से जो हमारे buying की जो buyers जो buying कर रहे हैं उनकी जो powers है वो बढ़ेंगी, और वो बेसिकली बिकॉज बैंक्स आर लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ बिजनेस। और एक सबसे बड़ा चीज जो अपने फर्स्ट होम बायर्स के लिए आई जस्ट वांट टू क्लेरिफाई कि जो 5% डिपॉजिट है वो उसमें डेफिनेटली एक ऐसा एक कॉम्प्लेक्स चीज है, कई बार हर एक को समझ नहीं आती है, दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव अ चैट। बट 5% डिपॉजिट में एक मिथ बना हुआ है कि आपकी जो अगर सिंगल हो तो आपकी इनकम 90,000 होनी चाहिए, अगर आप कपल हो तो 150 होनी चाहिए तभी आप उसमें क्वालिफाई कर सकते हो कैंगोरा के नीचे, या अगर आप कीवी सेवर में 3 साल से हो तो तभी आप उसमें क्वालिफाई कर सकते हो फॉर द 5%। सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स अगर मैं आपको बोलूं कि 5% येस दे आर सम कंडीशंस दे आर अंडर द कैंगोरा, बट दे आर ऑल्सो फॉर द 5% banks are doing without Kangora as well, पर उसमें फिर कोई लिमिट नहीं है कि आपकी इनकम कितनी है, अगर सिंगल है तो सिंगल इनकम भी 150 हो सकती है, अगर कपल है तो कपल भी 250,000 इनकम पे हो सकता है, कार लोन्स हैं अगर यू नो, तो बेसिकली अगर आप कैंगोरा में जाते हो बोलते नहीं है ज्यादा कार लोन नहीं हो सकता या ज्यादा लोन नहीं हो सकता, बट ऐसी ये एक मिथ है बेसिकली। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एडवाइज एवरीवन कि अगर आप 5% डिपॉजिट पे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं उसमें क्वालिफाई नहीं करूंगा, तो दैट्स नॉट द केस एट ऑल। आप यू कैन स्टिल क्वालिफाई विद द 5%, यू जस्ट हैव टू पिक अप द फोन, टॉक टू मी, विल एडवाइज यू कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, और बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड टाइम क्योंकि इंटरेस्ट रेट इज वेरी स्टेबलाइज एट द मोमेंट, सो डेफिनेटली एंड द प्राइसेज आर ऑन द लोअर साइड। सबसे बड़ी बात है कि प्राइसेस लोअर साइड पे हैं, इंटरेस्ट नीचे है, यहाँ पे आप अपने आप को अगर लॉक कर दोगे क्योंकि इट इज अ कमिटमेंट राइट, घर तो लेना है, अगर आप किसी और का रेंट पे कर रहे हो व्हाई नॉट टू पे फॉर योरसेल्फ, और वो जो एक थिंकिंग है बहुत बड़ी थिंकिंग है, तो अगर वो थिंकिंग के बारे में थोड़ा सा भी अगर आप बीज डालोगे देन डेफिनेटली दैट बीज एक बड़ा पेड़ बन के आपकी लाइफ में इट इज गोना गिव यू अ बिग बिग काइंड ऑफ शेड की हाँ भैया वो डिसीजन जो लिया था वो बहुत बढ़िया था।
0: तो अगर कोई है जो चाहता है ये डिसीजन लेना या फिर ये कदम उठाना चाहता है, उसके बारे में सोच रहा है, हाउ कैन दे गेट इन टच विद यू?
1: मुझे भाई सिंपल लॉजिक लगाना है, लॉजिक फाइनेंस, लॉजिक फाइनेंस आप गूगल में सर्च करोगे यू विल गेट इन माय डिटेल्स और माय बिजनेस पार्टनर कमल डिटेल्स, बट अगर आपको डायरेक्टली मेरे से बात करनी है तो यस यू कैन कॉल 0800 लॉजिक जी व्हिच इज 0800 564-424, बट अगर आप 0800 लॉजिक जी टाइप करते हो अपने फोन पे दैट कम्स टू मी एंड दैट वे वी कैन हैव अ चैट।
0: थैंक यू सो मच गुरु आपके टाइम के लिए, अब नेक्स्ट वीक आपसे और भी बातें हम जरूर करेंगे।
1: थैंक यू विजय भाई,
0: थैंक यू भाई।

0: download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: Accurate traffic.
2: 15% off airport parking.
3: Cloudy today and wet at times, got a high of 16. Not bad on the northern coming into the city. 24 minutes in from Constellation Drive. Find a Glenfield, slow there to the bridge. Northwestern, 25 minutes in from Massey. It's eased up as well. Slow from Point Chef, just a little heavy at times. Southern, 42 Manukau to town. Slow from East Tamaki, heavy a lot of the way in. Southwestern, a bit slow at Mount Roskill and Whitty.
2: 15% off Auckland airport parking. Book now using promo code EARLYBIRD. Conditions apply.
4: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू, जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
5: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
6: Sorry about that.
5: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
6: Kogan Mobile, true Aussie value.
5: Terms and conditions apply.
7: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla Live.
8: Use your loaf and throw your burnt toast in your food scraps bin instead of the rubbish. Because every scrap counts. Tāmaki Tūtaki, Altogether Auckland.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
9: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoi and Hamilton. Throwback.
11: थ्रोबैक का वक्त अब हो चुका है, जबकि 10 मिनट रह गए हैं अभी 9 बजने में. अभी आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने उस रिसर्च के बारे में बताया था जो एक यूनिवर्सिटी में की गई थी, जहां पर रिसर्च के दौरान पार्टिसिपेंट से कहा गया कि आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसे एक डायरी में नोट करें. एंड देन द रिजल्ट केम आउट एज स्लीपिंग नेक्स्ट टू समवन यू लव कैन हेल्प यू फॉल अस्लीप फास्टर, reduce depression and even contribute to living longer.
12: This I agree with, कि अगर जो शख्स आपकी लाइफ में इतनी अहमियत रखते हैं, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, वो अगर आपके बाजू में हो तो सच में आप you feel very safe, relaxed. Yeah, it's basically like आपका पूरा का पूरा nervous system जो एकदम काम हो जाता है. And when that happens, तो of course it helps with your your thinking, your anxiety and all. तो ये सच है, दिस इज ट्रू. आई नो इट्स ट्रू बिकॉज आई एक्सपीरियंस इट एवरी सिंगल नाइट. कांट स्लीप विदाउट माई डॉटर नेक्स्ट टू मी. हमारे बीच में तो झगड़े भी हो जाते हैं, बट इट्स रियली इट्स अ वेरी अमेजिंग फीलिंग, यू नो.
11: तो गौरव का मैसेज जो है ये आया है, आई गॉट बीटन अप बाय माई वाइफ व्हेन आई सेड द सेम थिंग टू हर, आई ऑलवेज स्लीप फास्टर देन हर.
12: गौरव, माई गॉड,
11: जस्ट check out his intelligence, man.
12: His humor, sense of humor, बहुत अच्छा है. पर ये यही, अगर आपकी बीवी फिलहाल सुन रही होंगी तो जो आप उनको झूठ मूठ का बदनाम कर रहे हैं ना, सच में वो कर देंगी, क्योंकि बदनामी तो ऑलरेडी हो चुकी है उनकी ना. गाना बजा दो, हो गया. इससे आगे कुछ बोलना नहीं मुझे, आप शौक में चले गए क्या?
11: नहीं, शान और साधना सरगम से आज का हमारा अगला थ्रोबैक है, ये आप एंजॉय करें. इसके बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट हम पर हम लेकर आने वाले हैं.
12: वैसे क्या आपको पता है कि ये जो गाना भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, सेम गाना, सेम लिरिक्स, सेम एवरीथिंग, लेकिन दो अलग अलग है.
11: हाँ.
12: एक फास्ट वर्जन है जो अभी हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं, और दूसरा इसी गाने का एक स्लो वर्जन है. However, ये फास्ट वर्जन आपको फिल्म हंगामा में सुनाई दिया होगा, लेकिन जो उसका स्लो, जो रोमांटिक थोड़ा सैड भी वर्जन है, ये आपको फिल्म फुटपाथ में सुनने को मिलेगी. एंड इंटरेस्टिंगली बोथ दीज मूवीज रिलीज्ड अराउंड द सेम टाइम.

0: accurate traffic.
1: National Burns Awareness Month.
2: Cloudy and wet today, a bit windy, a high of 16 degrees. Coming in, motorways are easing up nicely. Southern, still a bit sluggish, 38 minutes Manukau to town. Fine to East Tāmaki, but quite heavy in from there. Northwestern, 25 minutes in from Massey. Slow from Point Chev, a little heavy around St. Luke's. Northern, 24 minutes in from Constellation Drive. Slow from Milford, a bit heavy at Waito Valley.
1: Text BURN to 4499 for a $3 donation to help the BURN support group.
3: TV Hi-Fi is celebrating its stunning new store at Newmarket this Thursday from 5pm with cost plus GST on products store-wide for 4 hours only. Don't miss out on huge savings only at JB Newmarket this Thursday, 5 to 9pm. JB, you've done it again.
4: Ready to escape and get rewarded with Singapore Airlines? Book your getaway with special fares to destinations across Europe, Asia and beyond and receive a bonus $150 Prezi card when you book online using your MasterCard. That's an extra $150 to spend in Singapore, Thailand, Vietnam, Delhi, London, and more. Escape the cold and book your 2026 getaway today at singaporeair.com. Hurry, deals end June 26. T's and C's apply.
5: Here's how to beat rising fuel prices with one easy step. Just step onto a bus, train, or ferry. Because travel on Auckland Transport buses, trains and inner harbour ferries is still capped at no more than $50 a week when you use your hop card. Track your progress in MyAT and see if your next trip could be free. Search AT 7-day fare cap for all the details and conditions, then just grab your hop card and save.
6: Winter aa gaya hai at Mitre 10 Mega Westgate of Henderson with deals on Karcher 18-volt garden skins or 20% off Mica Thermic and selected convection heaters. Plus, spend $20, enter online and be in to win 5 grand. Ends June 30th. T's and C's apply.
7: Hi New Zealand, this is Siddharth Randeria Gujubai.
8: And who Tejal Vyas?
7: Ame avi rahya chhe amaru navu nakkor super hit comedy natak Gujubai ni
8: exchange offer.
9: Friday 3rd July Victory Convention Center par Lending HQ, Sona Sansar and Tulip Financial Services presents Siddharth Randeria nu navu natak Gujubai ni exchange offer. Hasi hasi ne lotpot thewa taiyar thai jao. Tickets jaldi book kari le jao. Phone karo 021-244-6278 par.
10: Good morning, इस समय ठीक 9 बज रहे हैं.
11: हम News brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
12: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. Teachers are calling for support and guidelines to combat rising extremist views among students. The PPTA's Chris Abercrombie says it mainly involves boys aged 14 to 17 and spans anti-Semitism, far-right theories, misogyny and racism.
13: I've had students express the Holocaust denial to us. I'm a history social studies teacher, so when I talk about human rights, I've had students say, you know, not everyone deserves human rights.
12: An economist doubts there will be an upswing in the housing market for some time. Cotality found sales fell for a sixth consecutive month in May. Calvin Davidson says global turmoil has made everyone cautious.
14: Sellers aren't necessarily having to capitulate, but buyers also know that they've got the pricing power because there's so much choice out there. And I think that's really going to prevail regardless of what happens with Iran.
12: Hate Hone St John is hoping to raise $2 million in the next 24 hours. Every donation during this time will be matched dollar for dollar by a small group of private and corporate supporters. Elon Musk is no longer believed to be a trillionaire. His net worth has dipped after falls in the value of both Tesla and SpaceX. Forbes now puts his wealth at just over $970 billion. In sports, stifling hot conditions are forecast for the decisive third cricket test between the Black Caps and England in Nottingham, starting at 10 tonight. Pace bowler Kyle Jamieson is being rested, with either Blair Tickner or Mitchell Satner set to come in. Meanwhile, Matt Henry's become the first New Zealander since Sir Richard Hadlee in 1990 to top the ICC test bowling rankings. Bowling coach Jacob Oram.
15: The thing that stands out for me is how accurate he is and how he's able to execute pretty much from ball one. You don't get any looseness.
11: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
16: World's best, hamari good brands nahi hai.
11: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
10: 14.5 degrees temperature bhi aap feel kar rahe hain aaj ka hai. 17.18 kam se kam 9 degrees rahega. Barish hogi sham ke samay, gambhir barish ho sakti hai. Sunset sham 5:14 par aaj hoga.
11: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
17: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: What's going on? क्या बकते हो?
18: अरे कहना क्या चाहते हो?
19: तो आज का क्या बकते हो, आज का क्या बकते हो स्टोरी बड़ा इंटरेस्टिंग है. ऐसी बहुत सी वियर्ड चीजें जो है हमारे आसपास होती है, दुनिया भर में होती है, और इनकी जानकारियां क्या बकते हो में हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसके बारे में हम आपसे बातें करते हैं. टू मेक यू रियलाइज दिस इज अ वियर्ड वर्ल्ड, वोंट यू एग्री विद इट?
10: अब आप बोल रही हैं तो सही बोल रही होंगी.
19: अच्छा, सिर्फ मैं बोल रही हूँ इसीलिए?
10: हाँ हाँ.
19: वेरी नाइस. तो आज का क्या बकते हो दरअसल एक ऐसी स्टोरी है जहां पर बताया गया है कि एक शख्स जो है इनके बारे में ये जानकारी है. ये एक्चुअली कहाँ के है वो नहीं ज्यादा पता, लेकिन इनके बारे में एक स्टोरी आई है ऑन इंटरनेट. इन्होंने अपना एक खुद का बिजनेस शुरू किया है.
10: ओके.
19: और इन्होंने इस बिजनेस की एडवर्टाइजिंग जो है सोशल मीडिया पे डाली, और उसके बाद लोग थोड़ा ऐसे हैरान हो गए. प्राइस लिस्ट मांग रहे हैं इनसे वैसे लोग इनके बिजनेस का फायदा उठाने के लिए, क्योंकि एनी वट वाइज इनका बिजनेस बड़ा फ्लोरिशिंग है. इन्होंने अपना खुद का एक प्राइवेट शमशान भूमि जो है ये खोला है.
10: अच्छा.
19: एंड बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने लोगों को बताया कि देखो मैंने यहाँ पे शमशान भूमि खोला हुआ है, अब आप आइए हम आपको फूंक देंगे.
10: मैंने इनका वीडियो देखा है.
19: देखा है आपने ना?
10: हाँ.
19: तो वही मैं बोल रही हूँ, एग्जैक्टली कहाँ के वो मुझे भी नहीं पता, बट इज गोइंग वायरल.
10: अगर आप किसी को रिफा करोगे तो इतने में फूकेंगे, उतने में फूकेंगे.
19: वो डिस्काउंट भी दे रहे थे. Yes, true.
10: And the person asking the question was, you know, confused. मुझे फूक देंगे?
19: नहीं, वो शायद आपने डिफरेंट एक देखा. मैंने जो देखा उसमें खुद बोल रहे, सेल्फ प्रमोशन कर रहे, तो सेल्फ वीडियो बना रहे खुद से, और उस वीडियो में बता रहे कि देखो भाइयों, देखो दोस्तों, मैंने अपना खुद का शमशान भूमि जो ये खोला हुआ है, यहाँ पे ये सेवाएं मिलती हैं आपको, आप आइए हम आपको फूक देंगे. तो मैंने भी, ओ माय गॉड, व्हेन आई एक्चुअली सॉ द वीडियो आई वाज लाइक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बट जैसे कि मैंने कहा, इट्स अ फ्लोरिशिंग बिजनेस.
10: या अजीब दुनिया है भाई. फिलहाल 5 मिनट हुए हैं 9 बजकर थोड़ी देर बाद. अब अजीब दुनिया की जब आप बात करें, मैं भी आपको शमशान भूमि तो खोला है किसी ने और डिस्काउंट भी दे रहे हैं लोगों पर. वहीं पर अब दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है कि रोबोट्स अब भीख मांगने का काम करेंगे.
19: रोबोट्स?
10: हाँ.
19: भीख मांगेंगे?
10: भीख मांगेंगे.
19: क्यों, उनको क्यों भीख चाहिए?
10: उनको नहीं चाहिए, जिन्होंने बनाया है उनको शायद चाहिए होगा.
19: तो वो खुद नहीं जाएंगे काम पर, अब वो आउटसोर्स करेंगे अपने काम को.
10: स्ट्रीट बेगर्स बनाएंगे.
19: क्या बात है भाई, मतलब इसी की कमी थी.

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: सबसे पहले तो याद रखें कि फिजी इलेक्शंस वोटर रजिस्ट्रेशन ये कल से शुरू हुआ है और कल यानी फ्राइडे तक जारी रहेगा। दिन में 12 से रात 8 बजे तक आप जाकर रजिस्टर हो सकते हैं आगामी फिजी इलेक्शंस के लिए। मैंग्री सेंटर पार्क 101 रॉबर्टसन रोड मैंग्री आपको जाना होगा और यहां पर आप जाकर रजिस्टर हो सकते हैं। नए रजिस्ट्रेशन के लिए ओरिजिनल या सर्टिफाइड ट्रू कॉपी आपके बर्थ सर्टिफिकेट का और वैलिड फिजी पासपोर्ट जो है ये आपको लगेगा। रिप्लेसमेंट के लिए वैलिड फिजियन पासपोर्ट या वैलिड फोटो आईडी और साथ में सर्टिफाइड सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप या कन्फर्मेशन लेटर फ्रॉम फिजी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ये आपको लग सकता है। तो आप जाकर इस के लिए रजिस्टर हो सकते हैं।
4: दूसरी ओर रामलीला जो कि एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस आपके लिए हो सकता है, अ डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस। यू जस्ट नीड टू मार्क द डेट्स 8th of August को ये होगा, लेकिन और डिटेल्स आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे आने वाले दिनों में। न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये हो रहा है एंड श्री रामलीला जबकि आपके लिए लेकर आ रहे हैं। फॉर इंक्वायरीज आप मास्टर शोक से बातें कर सकते हैं 021-179-545-5459 पर।
3: ऑकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट की मासिक रामायण कथा ये होगी कल रात 7:15 से, याद रहे फ्राइडे 26 जून 7:15 ARST कम्युनिटी हॉल 53 स्किप्टन स्ट्रीट मैंगरी में। प्रसाद और भोजन का भी प्रबंध रहेगा तो आप जाकर इसमें जरूर हिस्सा ले सकते हैं।
4: और याद रहे गुंजू भाई ने एक्सचेंज ऑफर स्टारिंग सिद्धार्थ रंडेरिया, ये अपना गुंजू भाई प्रोडक्शंस का बहुत ही अमेजिंग शो गुंजू भाई ने एक्सचेंज ऑफर ये लेकर आ रहे हैं जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं 3rd of July को 7:30 PM से एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर। premierTickets.co.nz इट्स अ गुजराती शो, रिमेम्बर दैट। यहाँ पर एक बहुत ही अनयूजुअल एक्सचेंज में फंस जाते हैं गुज्जू भाई और इसके बाद क्या कुछ हिलेरियस मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जो आपके लिए हंसने का एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है। तो ये आप एक्सपीरियंस कर सकेंगे इस शो के जरिए। premierTickets.co.nz आपको विजिट करना है टू गेट द टिकट्स फॉर योरसेल्फ।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: 18 मिनट हो रहे हैं अभी 9 बजकर इस प्रोग्राम में, और अब देखिए स्कूली छुट्टियां जो है ये भी शुरू होने वाली है.
3: Absolutely, 3rd of July से जो स्कूली छुट्टियां हैं officially they start.
2: और ऐसे में विंटर भी है. अभी आज के मौसम को अगर देख लिया जाए, आज चलो ऐसा करते हैं कि कुछ रिकमेंडेशंस कि हम क्या कर सकते हैं विंटर में, खासतौर पर स्कूल हॉलीडेज जब की आने वाले हैं तो क्या प्लान कर सकते हैं. स्कूल हॉलीडेज ना भी हो तो विंटर में सम एक्टिविटी रिकमेंडेशंस जो आप करें.
3: राइट,
2: आई वुड से वन वुड बी डोमेन विंटर गार्डन्स.
3: ये क्या है?
2: ये विंटर गार्डन है.
3: कहाँ पे? ये
2: डोमेन में.
3: अच्छा, तो यू कैन गो एंड जस्ट विजिट इट.
2: और दिस इज वन ऑफ द हिस्टोरिक ग्लास हाउसेस, और इट्स हीटेड टू ट्रॉपिकल टेम्परेचर्स. एक लश वार्म सेंचुरी मिलता है, तो आप जाकर यहाँ घूम सकते हैं.
3: एंट्री फी वगैरह क्या है यहाँ पे जाने के लिए?
2: आप चेकआउट कर सकते हैं ना.
3: ओके, सो डोमेन विंटर गार्डन्स इज योर रिकमेंडेशन, और अगर आप चाहे तो आप जरूर जाकर ये ट्राई कर सकते हैं. कीपिंग इन माइंड, यू नो, हम इतना बिजी हो जाते हैं अपने डे टू डे लाइफ में दैट वी फॉरगेट टू एंजॉय आवर डेज, आवर एवरी सिंगल डे दैट वी आर ब्लेस्ड विद ईच मॉर्निंग. पर एक और एक जरूरी बात ये भी है कि लाइफ इज सो फास्ट फास्ट यहाँ पे, मतलब काम पर जाओ, वापस आओ, खाना बनाओ, खाओ पियो, बच्चों को हेल्प करो टू गेट देयर होमवर्क एंड थिंग्स एंड स्टफ सॉर्टेड, एंड देन जस्ट लाई डाउन इन बेड एंड गो टू स्लीप एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वेक अप एंड डू द होल थिंग अगेन. बट आई हैव गॉट एन आइडिया जो आप अपनी फैमिली के साथ ट्राई कर सकते हैं. एब्सोल्युटली फ्री. और ये एब्सोल्युटली फ्री चीज आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपके घर में कहीं पर बाहर आउटडोर स्पेस है, you've got a good enough space for you yourself or for आपकी फैमिली, तो आप अपने घर पे ही कर सकते हो ये. एंड अगर नहीं है तो यू नो यू कैन गो टू सर्टन पार्क्स एंड स्टफ लाइक दैट. समिट्स वगैरह भी यहाँ पे होते हैं जहाँ पर ये हो सकता है, दो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ वहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा. बट इफ यू आर इन योर ओन हाउस ओन स्पेस तो आप जरूर ट्राई कीजिए. यू जस्ट नीड a small place जहाँ पर आप ऐसे बाहर जो वुडन फायर प्लेस है ये शुरू कर सके. यू नो दोस बिग क्या बोलते हैं उसको, हांडी जैसी चीजें होती है, आई जस्ट डोंट नो हाउ टू से इट. जो फायर प्लेस आप बाहर जलाते हैं उसके लिए जो भी सामान आपको चाहिए वो फायर प्लेस आप जलाओ. और आसपास अपनी जो कुर्सियां वर्सियां है ये लेकर आप आउटडोर कुर्सियां वगैरह जो ये लेकर आप जाओ बैठो. एंड बच्चों को अगर हॉट चॉकलेट चाहिए, आपको कॉफी या चाय चाहिए, गेट दैट डन, लिटिल बिट ऑफ स्नैक्स एंड लुक एट द स्टार्स. क्योंकि न्यूजीलैंड की खूबसूरती यहाँ का नेचर तो है ही, पर आपको पता है न्यूजीलैंड इज सो ब्लेस्ड एंड सो लकी कि यहाँ पे जो नाइट स्काईज होते हैं बेसिकली दे आर वन ऑफ द क्लियरेस्ट, सम ऑफ द क्लियरेस्ट इनफैक्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में. आप अगर ऐसे ही किसी डार्क स्पॉट में बैठ सकते हैं बाहर एंड यू कैन जस्ट एंजॉय द स्काई, एंजॉय द ब्यूटी. आई डू इट समटाइम्स बट मैं इतना प्लान के साथ नहीं करती हूँ. आई जस्ट वॉक आउट ऑफ माई हाउस और जो मेरा आगे पार्किंग एरिया है वहाँ पे जाके खड़े होके आई लुक एट द स्टार्स, आई लुक एट द मून, आई एडमायर द ब्यूटी. कितना खूबसूरत लगता है कभी कभी. आई क्लिक सम फोटोज टू, दो मेरे फोटोग्राफी स्किल्स उतने अच्छे नहीं हैं, बट दिस इज वन सच एक्सपीरियंस दैट यू माइट रियली एन्जॉय. इफ यू गॉट लिटिल किड्स, उनको साथ में लेकर आप जब जाते हो यू कैन कैरी अ बुक और सो, स्पेशली जब आप अपने घर के बैकयार्ड में कर रहे हो तो you read them stories, you sit down, you chit chat with them, you just enjoy that moment and it sounds really beautiful, lekin jab aap experience karoge with your loved ones, with your family around, it'll be even more beautiful. Aur agar ise aur bhi grand banana chahte hain aap to simple cheez yehi hai ki aap apni jo extended family hai unko invite kijiye, unke sath ek backyard you know क्या बोलते, देयर इज अ टर्म फॉर दिस वर्ड जो बाहर आग जलाते हैं यार, फायर, कैंप फायर समथिंग, व्हाट इज इट कॉल्ड, हां समथिंग लाइक दैट. उस नोट पे ये आप कर सकते हो.
2: ओके, सो ये हो गया.
3: इट्स चीप, इसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे एंड इट्स फन एंड रिलैक्सिंग एट द सेम टाइम.
2: अगर आप ऑकलैंड में रहते हैं तो आल्सो थिंक अबाउट विंटर ऑन वाहिकी.
3: हां,
2: या द इंटरेस्टिंग थिंग इज विंटर में भीड़ बहुत कम होती है वहां पर
3: वाहिकी में.
2: हां, और कोजी लंचेस जैसे आपने कहा कि यू नो कैंप फायर्स और वर्ल्ड क्लास वाइनयार्ड्स वगैरह जो है ये सब कुछ आप यहाँ एंजॉय कर सकेंगे. थिंक अबाउट इट ना, रिसर्च कर ले. और अभी आपको क्या करना है, अगर विंटर में आपको एक रोड ट्रिप पर जाना हो, अपना रोड ट्रिप या विंटर रोड ट्रिप डेस्टिनेशन आप हमें बताएं. कहाँ जाना आप पसंद करेंगे?
3: मुझे लगा था प्लेलिस्ट बनवाएंगे आप, इवन दैट वुड हैव बीन इंटरेस्टिंग। अच्छा वो कल करेंगे हम।
2: तो विंटर रोड ट्रिप डेस्टिनेशन ये क्या होगा आपका, आपका रिकमेंडेशन क्या होगा, व्हाट वुड बी योर विंटर रोड ट्रिप रिकमेंडेशन? बहुत सारे लोग फका पापा जाते हैं ना।
3: हाँ वो क्या बोलते हैं, माउंट रोहपेयू,
2: हाँ वहाँ जाते हैं।
3: सो स्नो माउंटेन देखने के लिए। सो आपका रिकमेंडेशन, यू कैन गिव अस अ कॉल इवन 0800 हम 0800 4866 पर अभी, एंड यू कैन लेट अस नो। और अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे तो टेक्स्ट कर सकते हैं 5599 पर, एंड देन यू कैन लेट अस नो कि आपका विंटर जो रोड ट्रिप डेस्टिनेशन रिकमेंडेशन क्या होगा।
2: तो शुरू हो जाए, एंड थोड़ी देर बाद आपके रिकमेंडेशन जो है ये हम चेकआउट करेंगे।
0: Hollywood's most wanted.
4: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ।
5: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: तो ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा जारी है और एक ही रिकमेंडेशन आया है। हाँ हाँ, एक सिर्फ ओनली वन रिकमेंडेशन जो हमने पूछा था कि अगर आपको
1: मतलब क्या बोल रहे हैं,
0: एक रिकमेंडेशन अगर आपको देना हो फॉर अ रोड ट्रिप ड्यूरिंग विंटर तो वो क्या होगा? और
1: अल्टीमेटली बहुत से लोग जिन्होंने कभी विंटर या क्वींसटाउन एक्सपीरियंस नहीं किया उनका यही रिकमेंडेशन होगा जो निशा ने कहा है, क्वींसटाउन। और जिन लोगों ने शायद एक्सपीरियंस किया एंड दे फॉलन इन लव तो वो भी यही रिकमेंडेशन ही देंगे, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ नाइस रोड ट्रिप्स जो आप कर सकते हैं क्वींसटाउन में भी, और स्पेशली विंटर के दौरान, लाइक क्वींसटाउन इज नोन फॉर इट, राइट? बट आपके रिकमेंडेशंस होंगे, ऐसा तो नहीं कि विंटर में आप कहीं घूमने नहीं जाते, इज इट लाइक दैट कि आप विंटर में नहीं जाते कहीं घूमने के लिए? और अगर जाते हैं देन व्हाट इज योर रोड ट्रिप रिकमेंडेशन, ये हमने आज आपसे पूछा है, तो वो आप हमें जरूर बता सकते हैं।
0: भाई क्या पक रहा है सुनील पाल और समय रैना के बीच?
1: अब क्या हो गया भाई?
0: अभी आपने नहीं देखा ना इंडियाज क्या बोलते हैं उसको,
1: इंडियाज गॉट लाइट एंड, मैंने देखा
0: हाँ सीजन 2 जो आया है, पहले एपिसोड जो है उसी में ही समय राणा ने सुनील पाल को निशाना बनाया।
1: वो पता नहीं, मैंने वो नहीं ध्यान दिया।
0: आई थिंक ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन जो है समय ने आई थिंक कॉन्टेस्टेंट से पूछा था कि आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो जो कॉन्टेस्टेंट है उन्होंने जवाब दिया और उसके बाद समय राणा ने कहा कि give that to Sunil Pal too. Sunil Pal ko bhi de do wo.
1: Oh God, why would he do that?
0: I don't know. I think the Kapil Sharma show mein ye dono ek saath aaye the. Usse pehle hi Sunil Pal ne kuch comment wagera kiya tha Samay Raina ke baad, and then Kapil managed to get them both together on one stage.
1: Yes.
0: And wo kafi hilarious raha dekhne mein. तो अब जब समय राणा ने ये कहा तो अब सुनील पाल चुप तो बैठने वाले हैं नहीं।
1: अब उन्होंने क्या किया?
0: उन्होंने भी कहा, उन्होंने जाकर सोशल मीडिया पर लिखा है, जहां है गालिया वहां है आलिया।
1: ओ, आलिया के ऊपर क्यों डिग लिया? बट व्हाट डिड शी डू?
0: क्योंकि समय राणा ने जब वो कमेंट किया था कि आप ब्रश या फिर आप वो
1: टूथपेस्ट
0: सुनील, तो शी वॉज सीन लाफिंग एट दैट रिमार्क। अब मैंने तो उतना ध्यान नहीं दिया कि वो हंस रही थी या नहीं, क्योंकि मैं तो वो जो कॉन्वर्सेशन है उस पर ध्यान दे रहा था। और फिर बाद में आलिया ने ये भी मेंशन किया कि उन्होंने वो एपिसोड देखा था जिसमें समय राणा और सुनील पाल आए थे कपिल शर्मा शो में। तो आई थिंक उसको लेकर सुनील पाल को उतना अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया। So,
1: I really don't know what to say in this particular situation. I don't know what the equation is, who's right, who's wrong, and I don't even want to get into it. But ये थोड़ा अभी ऐसा लग रहा है जा रहा है आगे ना?
0: But that it's quite interesting. तो ये differences last year सामने आए थे जब सुनील पाल ने India's Got Talent को काफी criticize किया था उनके explicit language के लिए और controversial humor के लिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया था कि समय जो है क्लीन कॉमेडी की आर्ट जो है कपिल शर्मा से सीखें। एंड देन जवाब में अपने स्टैंड अप स्टिल अलाइव में समय टुक एन एम एट हिम डिस्क्राइबिंग हिम एज इनसिक्योर और फ्रस्ट्रेटेड। और फिर बाद में अब प्रीमियर सीजन
1: जो सुनील पाल का ये जो स्टेटमेंट जो अभी आपने बताया कि उनको क्लीन कॉमेडी सीखनी चाहिए, और जो आपने बोला था वो जब उन्होंने वो सारे यू नो स्टेटमेंट्स रिलीज किए थे उस दौरान मैंने देखा था वो, एंड आई टोटली डिसएग्री विद हिम, बिकॉज अगर सुनील पाल ये बोल रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो इज गॉट द राइट टू से इट इन सच अ मैनर। बिकॉज अगर आपने अपना सपना मनी मनी देखी हो जिसमें ये भी जिस फिल्म का हिस्सा थे, ही वाज पार्ट ऑफ दैट मूवी, ही डिड अ लॉट ऑफ कॉमेडी इन दैट मूवी ऑन द सेम कॉन्टेक्स्ट व्हिच इज नॉट क्लीन एट ऑल।
0: ओके, तो वैसे एक और शख्स जिन्होंने समय राणा को काफी क्रिटिसाइज किया था वाज मुकेश खन्ना, याद है ना?
1: हाँ याद है बिल्कुल,
0: मुकेश खन्ना ने काफी क्रिटिसाइज किया था। और ये जो फर्स्ट एपिसोड जब एयर हुआ था इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 का, उसके बाद समय सरप्राइज्ड फैंस बाय अपीयरिंग इन एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन विद मुकेश खन्ना।
1: एब्सोल्युटली इनफैक्ट वो जो मोबाइल ब्रांड है आईआई समथिंग करके कुछ तो नाम है उस मोबाइल ब्रांड का, उस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए बोथ ऑफ देम हैव कम टुगेदर, एंड आई एम लाइक सरप्राइज एंड शॉक्ड एट द सेम टाइम, बिकॉज मुकेश खन्ना ने भी कई तरह के क्या बोलते वो क्लेम्स किए थे कि ऐसे शख्स के साथ वो कभी स्पेस नहीं शेयर करेंगे। आई एम वंडरिंग लाइक हाउ ही सेड दैट एंड नाउ ही इज अग्रीड टू डू दिस।
0: एब्सोल्युटली
1: अरे यार हो गया ना, कभी कभी कुछ शब्द याद नहीं आते हैं तो फिलर्स में ऐसे ही शब्द निकलते हैं, बट एनीवेज
0: एब्सोल्युटली। अभी 23 मिनट रह गए हैं 10 बजने में।
2: मॉर्निंग्स मेड बेटर,
3: दो फ्राइंडा, चार टोस्ट, बटर जैम और एक स्पेशल चाय।
2: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
4: ड्राइविंग यू होम, द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
5: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
6: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
7: वो भी आई लव यू वाला।
6: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दूसरी बना रहा था बेटा।
7: अच्छा आप तो
6: आए आए बताओगे यार।
4: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
8: It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
9: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
10: Kyun? Kya hua?
9: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi to itne documents maange ki bas poochho hi mat. Ek hafta ho gaya, no response. Phir tumne Guru ka number diya aur bas agle din paise mere account mein. Guru तो हो जा शुरू वाला काम है।
4: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424। फिल्म बिल्कुल फेक और डेंजर एकदम रियल। इंडियाज फर्स्ट 2000 करोड़ फेक फिल्म वेलकम टू द जंगल, स्टारिंग अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, परेश रावल, रवीना टंडन, दिशा पटानी, जैकलिन फर्नांडिस एंड मेनी मोर।
11: एक जबरदस्त कहानी है।
12: और टाइटल क्या है फिल्म का?
11: वेलकम टू द जंगल।
4: वेलकम टू द जंगल रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 26 जून। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स। रेटिंग TBC।
13: From DC Studios, Supergirl has landed in cinemas now. Starring Millie Alcock with David Corenswet as Superman and Jason Momoa as Lobo. Don't miss this epic galaxy-hopping blockbuster. Supergirl in cinemas now.
14: Let's get to it.
13: Rated M.
15: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
4: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
15: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
4: Available at selected branches. T's and C's apply.
16: Some things belong in a warm home. A cup of tea, a cozy hot water bottle, a steaming hot bowl of soup. In homes just like yours, serious burns happen every day, especially to curious little hands over winter. Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. What's going on?
0: कोटलिटी ने अपना लेटेस्ट बाया क्लासिफिकेशन डाटा जो है ये रिलीज कर दिया है, जिसमें ये बात सामने आई है ओवरऑल न्यूजीलैंड प्रॉपर्टी सेल नंबर्स जो है ये अभी भी गिर रहे हैं। फर्स्ट होम बायर्स जो है ये बहुत एक्टिव हैं एंड दे नाउ मेक अप 27.7% ऑफ ऑल परचेसेस, और फर्स्ट होम बायर्स आर मेकिंग अबाउट 2% मोर परचेसेस पिछले साल के मिलान में, और मार्केट में ये सिंगल लार्जेस्ट कोहोर्ट बन चुके हैं। और इस साल के पहले पाँच महीनों में 36,152 प्रॉपर्टीज जो है ये बिके, डाउन 4.7% लास्ट ईयर इसी टाइम में। लेकिन फर्स्ट होम बायर्स ने 10,025 प्रॉपर्टीज खरीदी, अप फ्रॉम 9,000 पिछले साल इसी टाइम में। 9,794 प्रॉपर्टीज फर्स्ट होम बायर्स ने खरीदा था। कोटालिटी के जो चीफ प्रॉपर्टी इकोनॉमिस्ट हैं केल्विन डेविडसन, उन्होंने बताया कि एक कंटिन्यूड स्ट्रेंथ देखा गया है फर्स्ट होम बायर्स में, और उनका मार्केट शेयर जो है ये और बढ़ता जा रहा है फ्रॉम हाई रिकॉर्ड हाई टू रिकॉर्ड हाई, और वो और ज़्यादा डील्स जो है ये कर रहे हैं। और सिंप्लिसिटी के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना है शमुबिल एक्वाब, उनका कहना है कि फर्स्ट होम बायर्स कुड आल्सो बी मोटिवेटेड टू बाय नाउ बाय द प्रॉस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स राइजिंग इस साल बाद में, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अभी अच्छा टाइम है, मोमेंटम है, तो वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं।
1: ओके, देयर यू गो, तो अभी वी कैन टेक हीड ऑफ द एडवाइस, और अगर आप भी अपना प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं, इट्स बीइंग सेड इट्स अ गुड टाइम, सो यू कैन आल्सो गेट दैट डन। ऑन द अदर हैंड, खबरें आ रही हैं अबाउट नन अदर देन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड डेम जेसिंडा आर्डर्न, इनको एक और एक खिताब से नवाजा गया है। दी ऑनररी डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर इसे माना जाता है। शी वॉज वन ऑफ द 9 पीपल जिन्हें रिकोगनाइज किया गया फॉर मेकिंग एन एक्स्ट्रॉर्डनरी इम्पैक्ट इन फील्ड इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स, साइंस, स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स। Jacinda Ardern ने कहा है that she was humbled to receive the award and highlighted Oxford का support for her work on empathetic leadership जो वो करती थी, and the ceremony took place during a record heat wave जो UK में फिलहाल फेस किया जा रहा है, leading to a relaxed dress code of course that she had followed, और the previous recipients of the honor included Nelson Mandela and Dame Judi Dench as well.
0: Okay. तो और भी स्टोरीज हैं जो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे इस प्रोग्राम में। अभी 17 मिनट रह गए हैं 10 बजने में।

0: समय देख ले भाई, अभी 12 मिनट रह गए हैं 10 बजने में। 12 मिनटों के बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपकी खातिर इस प्रोग्राम में हम लेकर आएंगे। लेकिन एज यूजुअल जाने से पहले आज की दो बातें हैं। पहली बात
1: सुनाइए,
0: सही समय पर गलत जगह से निकल जाना भी एक आशीर्वाद है।
1: सही समय पर गलत जगह से निकल जाना भी एक आशीर्वाद है। वेरी नाइस एंड इट्स वेरी ट्रू एक्चुअली। लाइफ में अगर आप कहीं किसी गलत सिचुएशन में फंस गए और सही समय पर नहीं निकल पाए तो और फंसते जाएंगे ना।
0: दूसरी बात, कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं।
1: That is also true. No one might have ever thought about it.
0: Exactly.
1: But it is very true. चले इन्हीं दो बातों के साथ अब आपसे चाहेंगे इजाजत जाने की। अपना और अपनों का ख्याल रखेगा। हमारी और आपकी मुलाकात वो तो होगी अब कल एक बार फिर ठीक सुबह 6 पर। ऐसा लग रहा है कि अभी सप्ताह की शुरुआत हुई थी एंड ऑलरेडी वी आर एट द एंड ऑफ द वीक। बट उम्मीद है कि आज का ये सफर आपने एंजॉय किया। विल सी यू टुमारो।

0: चाहे आप हम के दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Auckland Transport is upgrading your rail network this July as we get closer to more trains more often with City Rail Link in 2026. Between Thursday 9th July and Sunday 12th July, all train lines will be closed for a City Rail Link timetable trial and for essential rail upgrades. This is the best time for AT and our partners to carry out the upgrades. Buses will replace all impacted services. For details, visit at.govt.nz/matariki2026.
2: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
3: अच्छा,
2: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं।
3: मिसेस सिंह,
4: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
5: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
6: HBO Max is the all-killer, no-filler.
7: So wait, a streaming service that's full of the good stuff and no boring filler?
6: Exactly.
7: Right, we'll see. What have they got?
6: There's HBO original series The White Lotus, House of the Dragon, Euphoria, The Last of Us, The Sopranos, hit movies like Wuthering Heights, Superman, one battle after another, and then there's Friends, The Big Bang Theory.
7: Whoa, okay, I get it. Fair call.
6: HBO Max, all-killer, no-filler. Stream now.
8: Sorry to interrupt, but we know someone who's perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They've got so much going for them. Can we set you up with Auckland?
9: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
10: MediaWorks complaints. How can I help?
11: I've got this ad going around and around and around in my brain. And it's all because of you guys.
10: Thank you.
11: It's all I can think about.
10: What does it sound like?
11: Yeah, I'd rather not.
10: Go on, why don't you have a crack?
11: Okay, got a plumbing problem.
10: Oh, I need a bit more than that.
11: They've got your back.
10: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
11: Oh, okay.
12: There's no better plumber to give it a crack.
10: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
11: No, I want a plumber.
13: Advertise with
14: Media Works.
13: New Zealand listens to us.
15: Hum. Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
16: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 10. Alarm bells have been raised about extremist views in the classroom. The PPTA has approached the government for support and guidelines. President Chris Abercrombie says teenage boys appear more susceptible.
17: That manosphere aspect to it, you know, the role of man and woman be subservient, and some of the sort of neo-Nazi far-right aspect to it as well.
16: The Prostate Cancer Foundation has serious concerns about at-home testing. It warns PSA kits shouldn't be used without the guidance of a medical professional. Chief Executive Peter Dickens says a DIY approach does bring risks.
18: Men don't receive the informed discussion recommended by clinical guidelines around false positives, false negatives, overdiagnosis and overtreatment.
16: The Crown Range Road in Otago has been closed due to heavy snow and vehicles becoming stranded. The Queenstown District Council urging people to avoid the area and travel with care elsewhere. It says Lindis Pass is also icy after temperatures plummeted to -4. And ferries across the Cook Strait have been canned due to large southerlies set to hit. Both Blue Bridge and Inter-Islander have issued alerts to passengers, which also includes services tomorrow. And in sport, the first group has been decided at the FIFA Football World Cup on TVNZ+.
19: Switzerland, top Group B, and they reach the knockout stages of the World Cup once again.
16: Yeah, the Swiss securing a 2-1 win over co-hosts Canada, who finished second and also automatically qualify for the round of 32. Bosnia and Herzegovina also poised to progress after beating Qatar 3-1. Football updates brought to you by Hisense.
15: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
14: The highs of 17 and overnight temperature of 9. Aaj ka forecast bataya ja raha hai kuch odd showers dopahar ke baad badhti chali jayengi, possibly heavy rainfall aur easterly south ki taraf bhi mud jayengi. It feels like 14 degrees right now. 5:14 par sunset bataya gaya hai.
15: Non-stop Bollywood.
20: Jo bhi karte shiddat ke saath karte
15: hain. Playing Bollywood's biggest hits. My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
21: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye, kyunki aa rahi hai
15: My Time with Kashika.
14: Namaskar and a very very good morning to you people. How are you? Thursday, 25 June ka din ho gaya aur aapke birthday anniversary hai, to happy happy birthday. Happy anniversary to you. Are bhai, aap log kahan hain? Kya kar rahe hain? Kaise hain? Bahut kuch kar rahe honge aur ab to planning bhi chal rahi hogi ki Saturday night ye karne wale hain, Friday night ye karne wale hain aur Sunday night ko hum unwind karne wale hain. Okay. In sab cheezon ke beech mein aapne apne liye time kahin adjust kiya hai ki nahi kiya hai? बहुत से लोग अपना टाइम एडजस्ट करते हैं, लेकिन मैंने भी सोचा कहीं ना कहीं अपना टाइम मैं ज़रूर एडजस्ट कर लूँ. तो नेक्स्ट वीक के बाद मैंने भी सोचा थोड़ा सा अनवाइंड कर लूँ, थोड़ा सा रिलैक्स चिलैक्स कर लूँ घर में. तो बस अपने मी टाइम को मैं बिल्कुल बरकरार रखने वाली हूँ, लेकिन आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कहीं ना कहीं अपना थोड़ा सा समय अपने लिए ज़रूर निकालिए. बस जब समय निकालने की बात करते हैं ना, तो भाई एक बहुत लॉन्ग वीकेंड आ रहा है ईस्टर 2027 में, और ऐसे में वो ईस्टर वीकेंड आपका हो सकता है. जानना चाहेंगे कैसे? उसमें हो सकता है एक कुछ सनराइज के व्यूज, कुछ नई दोस्तियाँ, कुछ रोड ट्रिप की प्लेलिस्ट, कुछ ज़बरदस्त खाना, बहुत सारे हंसी मजाक के साथ. अरे अरे, ये मूवी नहीं, ये आपकी बनाई हुई कहानी होने वाली है. एंड प्रॉबेबली इस ईस्टर 2027 में आपके साथ हो सकती है. जानना चाहेंगे क्या है? वैसे मैं नहीं अभी बता सकती, लेकिन स्टे ट्यून. आपके बारे में, आपके आपको लेकर क्या प्लानिंग करी गई है, ये भी बताएंगे थोड़ी देर बाद. स्टे ट्यून एंड कीप हमिंग ऑन. हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स. मैं कशिका, कशिश फूड्स की ओर से आपके लिए माय टाइम लेकर आ जाती हूँ मंडे टू फ्राइडे 10 से 12 बजे के दरमियान. आज जो मेरे एक्सपर्ट अड्डा में बात करने वाली हूँ, टॉपिक है, एक क्वेश्चन है जो मेरे पास कई बार आया है, लेकिन मैंने सोचा आज इज़ द राइट डे, क्योंकि आज बादल भी आने वाले हैं. कल सब बादल थे, कल भी बादल हैं, तो ऐसे में क्या हो सकता है? सोचो सोचो सोचो. बट अभी के लिए गाना बजाती हूँ.
15: बजाओ क्या?

0: Sports Adda.
1: तो मैं बात कर रही थी कि भाई ये मौसम कैसा भी होता है, चाहे कह दें कि बादल है कि तूफान है कि धूप है, सनस्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जो प्रॉबेबली हमें हमेशा इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारी स्किन जो है हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार होती, चाहे वो पीक हीट का टाइम हो या विंटर का सन हो या बारिश हो या ग्रे मतलब स्काई हो समय पे। तो ये सनलाइट जो है हमेशा कहीं ना कहीं से हमारी कांस्टेंट कंपेनियन बनी रहती है और इसका इम्पैक्ट हमें बहुत जल्दी पता लगने लग जाता है। दैट इज़ वाई SPF जो होता है वो आपको इस सीजनल स्टेप से बचा के रखता है और आपकी स्किन के लिए एक प्रोटेक्शन भी बन जाता है। अब मैं इस SPF को काफ़ी हद तक अप्रिशिएट करती हूँ और इस्तेमाल भी करती हूँ। डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है कि जो पिगमेंटेशन जो है ना, अर्ली फाइन लाइंस हैं या अनइवन स्किन टोन आपकी होती है या स्टबन डलनेस फेस पे होती है, ये सडन नहीं होती है, ये बिल्टअप होती है डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। और ये रियल चैलेंज आपके लिए आता है जबकि आपको पता नहीं चलता कि सिंपली आप इसे क्या किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना, जस्ट स्टिक टू सनस्क्रीन। आई अंडरस्टैंड कई लोग अलग फील करते हैं, पिल्स लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं और कभी कभी आपको लगता है कि ग्रीसीनेस होने लगती है ह्यूमिडिटी के साथ, या एक स्टेप आगे चल के आप प्रॉबेबली ब्यूटी के ट्रीटमेंट्स वगैरह भी करते हैं। सम थिंग्स समटाइम्स डू हेल्प, बट एक डिसिप्लिन फॉर SPF इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SPF अब एक एसेंशियल चीज़ बन चुकी है जो एक स्किन की हैबिट है, वेदर यू आर इंडोर्स या आउटडोर्स या क्लाउडी वेदर में भी आप हों, सन का एक्सपोजर आपको होना ही होना है। और ये जो है एक हैबिट अगर आप फॉर्मुलेट कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए एक मॉइस्चराइज

0: विजर और एक सन प्रोटेक्शन दोनों का काम SPF कर लेती है। SPF आपके लिए 365 डेज का साथी बन जाता है। लाइट वेट है, बड़ा कंफर्टेबल है, आप यू नो अपने पर्स में भी इसको रख के लेके जा सकते हैं। हर 4-5 घंटे में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये स्किन केयर के जो रूटीन्स होते हैं उनसे मैं थोड़ा अलग रहती हूँ। आई प्रेफर ये हार्ड कोर फैक्ट बिलीव करने में कि SPF रियली वर्क्स। और दरअसल ये इसी की वजह से शायद आप कहीं पे भी हों, चाहे वो हीट आ रही है या फिर ठंड के मौसम में, SPF को बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स में सेरामाइड्स हैं, हाइलोक्रोनिक एसिड है, और आप जो है डिफरेंट इश्यूज जो है इसको इनसे एड्रेस कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट फॉर प्रोटेक्शन, इट इज़ अ वेयरेबल थिंग। इसकी सेरामाइड्स आपकी स्किन को एक बैरियर की स्किन बैरियर की तरह बन जाते हैं, और ये आपके पोल्यूशन और हीट से भी बचाते हैं। और जो हाइलोरोनिक एसिड है ये आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देती है और टाइट फील कराती है और ड्राइनेस से बचा देती है। ऑनेस्टली इट्स अ हेल्थी वे टू लुक एट यू एज वेल एज आपकी फ्लॉलेस स्किन के लिए। कुछ स्टेप्स हैं जो आप इनको फॉलो करेंगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। सो वॉट इज़ योर नेक्स्ट थिंग विच यू विल बी डूइंग? जाएंगे मार्केट में और SPF खरीद के लाएंगे। कमिंग अप नेक्स्ट इज डेफिनेटली सिक्स वर्ड स्टोरी।
1: माय टाइम विद कशिका।
2: आजकल तो चल रहा है बहुत न्यूज़ में, आप भी तो नहीं?
3: लेडीज एंड जेंटलमैन,
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: anywhere you get your podcast.
1: Here for your chance to score a share of $250,000 Club Plus dollars. By simply scanning your Club Plus card at Foursquare, you could be a winner, free chicken dinner. Yeah! Foursquare. What'll it be today? T's and C's apply.
2: Wo indelible Holmes wali kahani sunao na.
3: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
4: And award goes to Indelible Homes.
3: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
5: Kahani of Indelible Homes.
6: Oh my, oh my. Bray South Road, greater than ever.
7: South Auckland's buses just became a lot better.
6: Weymouth Road, way better buses.
7: With better bus routes, more frequent buses, more early morning and late night buses, and more.
6: Woody, no worries. MIT, A-OK.
7: Search AT Better South Auckland Buses for details.
6: Airport, got your transport.
7: Then turn up and go.
8: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number, यार.
9: क्यों? क्या हुआ?
8: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई, तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, no response. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
10: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
11: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी. Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
12: The King Living Winter Sale is on now. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale on now. Shop online or visit a King Living showroom today.
0: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
13: Office Shoutout.
14: ऑफिस शाउट आउट में मेरे दोस्त जो हैं वो सुन रहे हैं. आई थिंक क्वींसटाउन से निशा, आई थिंक आप ही सुन रही हैं शायद, एंड वेलिंगटन से ऐश. वेरी कूल, रिलैक्स, चिलैक्स टाइम एडजस्ट करते हुए ईस्टर वीकेंड की प्लानिंग करने वाली, वेरी हैप्पी एंड मस्ती करने वाली. गुड मॉर्निंग काशिका जी, ऐश फ्रॉम वेलिंगटन. थैंक यू सो मच, यू मेड माई डे. यस, मस्ती मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं करूं, लेकिन मैं चाहती हूं ये मस्ती मैं आपके साथ करने वाली हूं थोड़ी देर बाद, जहां पे मैं आपकी एंट्री लूंगी फॉर राहत फ़तेह अली खान के कॉन्सर्ट के लिए, डबल पास के लिए. भाई कॉल करना है अभी? नहीं अभी नहीं, अब रुक जाइए, मैं जब आवाज़ दूंगी. मगर अब रेडी रहना, तीन सवाल के जवाब आपसे मैं पूछूंगी, बहुत सिंपल होगा, डोंट वरी. मैं कुछ घुमाऊंगी फिराऊंगी नहीं, इतना नहीं ये ट्विस्ट करने वाली हूँ. बहुत इजी इजी सवाल होंगे, जो पूछूंगी ना वो पहले ही बता दूंगी कि हाँ भाई उसी के आसपास ही सवाल होगा. ठीक है, चलिए ये बात तो हो गई तय, लेकिन अभी के लिए ऑफिस शाउट आउट तो मैंने आपको दे दिया. याद रखिए, जितने भी हमें हमारे गुज्जू भाई बहन सुन रहे हैं, आपका फेवरेट यानी कि सिद्धार्थ रंधेरिया आ रहे हैं और ये अपने गुज्जू प्रोडक्शंस, सिद्धार्थ रंधेरिया गुज्जू प्रोडक्शन लेकर आ रहे हैं नए प्रोडक्शन में गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफ़र. और इस एक्सचेंज ऑफ़र में क्या एक्सचेंज करने वाले हैं पता नहीं, कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग्स हो जाएंगी, कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हो सकता है उसमें हो, और कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जो उसमें आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के हंस सकते हैं. और इस गुजराती ह्यूमर को डेफिनेटली इंजॉय करने के लिए आप 3 जुलाई यानी नेक्स्ट फ्राइडे के दिन तैयार हो जाइए विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में शाम 7:30 बजे. premiertickets.co.nz के जरिए आप ये टिकट जाकर खरीद भी सकते हैं. तो याद रखिएगा, गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफर, और लेकर इसे आ रहे हैं सिद्धार्थ रंधेरिया, द लेजेंडरी एक्टर. ही इज रियली अमेजिंग. चलिए यहाँ से अब मैं आपको लेके चलती हूँ टॉप हिट की ओर.
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: शिकार।
1: वाह,
2: हाउ
1: अद्भुत।
3: वैसे बात तो ये है दैट बीफ के जो प्राइसेस हैं बताया जा रहा है दे सपोज टू स्टे हाई, बट कंज्यूमर्स यहाँ हैं या नहीं हैं ये बात कंफर्म करनी पड़ेगी। तो न्यूजीलैंड का सप्लाई यह है बहुत स्लो स्टार्ट में इस साल आगे बढ़ा है और बैंक ने फोकस किया 3-4% फुल ईयर प्रोडक्शन जो है लोकली, लेकिन ग्लोबली अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ये सप्लाई थोड़ी सी कम हुई है लगता है स्पेशली हियर। सो अबाउट अ क्वार्टर ऑफ आर बीफ गोज विद अबाउट 3/4 ऑफ द फैटियर बीफ जो कि हैमबर्गर्स में इस्तेमाल किया जाता है एंड द पीपल इन यूएस दे लव देयर बर्गर्स। सो यस दीज प्राइसेस आर वेरी हाई और कंज्यूमर्स जो हैं इनको पता है कि सीलिंग पर पहुंच चुका है एंड प्रोबेबली इट्स द इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ द डिमांड।
4: थोड़ा सा हॉल बना दे।

0: Eat better, live better.
1: Eat better, live better. And of course, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं किसी ना किसी तरीके से आप लोगों को जिताने की कोशिश करूं. लेफ्ट, राइट, सेंटर, हर तरह से मेरी कोशिश रहती है. तो राहत फतेह अली खान 25 तारीख को पहुंच रहे हैं. टेलीफोन लाइन अब मैंने अपनी यहाँ पे जो है खोल दी है और आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझे कॉल करें. तीन सवाल आपसे पूछने वाली हूँ. उन तीन सवालों का आपको जवाब देना है. बहुत सिंपल होगा, डोंट वरी. तो इनकी सोल स्टरिंग सूफी या कव्वाली या बॉलीवुड के गाने आप डेफिनेटली सुनना चाहेंगे और ये ट्रस्ट अरीना में परफॉर्म करेंगे 25 जुलाई के दिन. जेके स्टार प्रोडक्शंस ये पहले भी इनको लेकर आ चुके हैं, राहत फतेह अली खान जी को. गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस भी लेकर आए हैं शहजादा प्रोडक्शंस के साथ. टिकट्स इसकी dryticketscom के जरिए अवेलेबल हैं. डबल पास जीतने के लिए बस मैंने लाइंस आप समझ लीजिए खोल ही दी हैं. और जब मैं कहती हूँ कि मैं जब लाइंस खोलने वाली हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप एक मौका जो है कोशिश कीजिए कि आपके लिए अच्छे से जाएँ. एंड ओके, आई हैव अ कॉलर हियर ऑलरेडी. बातें कम, काम ज्यादा. गुड मॉर्निंग. हम
2: गुड मॉर्निंग. कशिका जी कैसे हो?
1: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
2: बस मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ.
1: अच्छा
2: जी,
1: तो मेरे तीन सवाल. सपना
2: जी,
1: आप वही हो जिन्होंने एयरपोर्ट पे मिली थी?
2: हाँ.
1: देखो मैंने कैसे पहचान लिया.
2: तो मेरा नंबर सेव्ड है आप लोग के पास?
1: नहीं नहीं नहीं, तो मेरे को लगा कि वही हो. आवाज से पहचाना. देखो हम आवाज की दुनिया में बिलीव करते हैं.
2: गुड गुड गुड, सही है.
1: और आपने मेरे शो में फोन किया था.
2: हाँ, एक्चुअली कशिका जी मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे अटेंड करना है कॉन्सर्ट, इसीलिए आई कॉल रिपीटेडली कि शायद मिल जाए.
1: अच्छा,
2: क्योंकि चांसेस
1: चलो ये बताओ ये हाँ. इतने सारे प्रमोटर्स जो राहत फतेह अली खान जी को लेकर आ रहे हैं तो किसी एक प्रमोटर का नाम आपको याद है?
2: नहीं.
1: हाय हाय, क्यों ऐसा?
2: कल देखा तो था कहीं.
1: ओह माय गॉड, ऐसा क्यों करते हो? अच्छा चलो
2: नहीं,
1: मेरा
2: हम सब नहीं, मैंने वो देखा नहीं है. और नेक्स्ट
1: क्वेश्चन, ये जो गाना था हाँ. तुम जो आए जिंदगी में बात बन हाँ. गई, याद है हाँ. किस पर फिल्म आया गया था? कौन सी फिल्म थी?
2: ये भी याद नहीं आ रहा है. अरे यार कैसे भूल गई
1: मैं. इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग है एंड इतना
2: गाना तो बड़ा ब्यूटीफुल.
1: हाँ बहुत अच्छा है. ओके,
2: सोलफुल
1: सॉन्ग है. आपका ऐसा कौन सा सोलफुल सॉन्ग है जो आप कनेक्ट करते हैं अपने पार्टनर के साथ?
2: वो मैंने आपको बताया था शायद पहले भी, वो तुम्हें तुझे देख देख जीना जिया धड़क धड़क जाए.
1: कलयुग फिल्म का गाना जो है,
2: कलयुग का. हाँ हाँ.
1: ओके अच्छा ठीक है. अच्छा ये बताइए, चलिए एक दो आपको मौके में और कोशिश करती हूँ. ये पता है आपको कि कौन सा वेन्यू है जहाँ होने वाला है?
2: हाँ, ट्रस्ट
1: अरेना हेंडरसन. चलो, और अगर ये टिकट अगर आपने नहीं जीती तो आपको पता है आपको कहाँ से खरीदनी है टिकट?
2: ड्राई टिकट्स.
1: अच्छा चलो, अब तीन सवालों के जवाब.
2: बहुत महंगी है.
1: इसीलिए हम कहते हैं कि जब अर्ली बर्ड होता है वो टिकट आप प्रोमो कोड के साथ खरीद लीजिए फिर लोग लास्ट डे तक वेट करते हैं.
2: वो है ना बहुत एक्सपेंसिव होता है, अफोर्ड नहीं कर सकता हर कोई जाना
1: वहाँ. अच्छा चलो ठीक है, मैंने आपका नाम ड्रॉ में ऐड कर दिया. ठीक है,
2: थैंक यू सो मच. थैंक यू,
1: बाय
2: बाय.

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: गाड़ी चलती रहे, टेंशन

0: Toy plus 24-hour mobile service. For bulk orders, call Ron on 022-175-3941 or visit rpstires.co.nz or their Facebook page. RPS Tires. Drive safe, drive smart.
1: Your local board does all sorts of things in your community. That local event you love, the playground down the road, the park where you spend time with family and friends. And every 3 years they plan what to do next. Now's the time to let them know what you think is important where you live. Visit akhaveyoursay.nz/local board plans. Tell us by 23 July. Local voices, local choices. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland.
2: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
3: मुझे भी
2: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए.
4: Sorry to interrupt, but we know someone who's perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They've got so much going for them. Can we set you up with Auckland?
5: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
6: MediaWorks complaints. How can I help?
7: I've got this ad going around and around and around in my brain. And it's all because of you guys.
6: Thank you.
7: It's all I can think about.
6: What does it sound like?
7: Yeah, I'd rather not.
6: Go on, why don't you have a crack?
7: Okay, got a plumbing problem.
6: Oh, I need a bit more than that.
7: They've got your back.
6: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
7: Oh, okay.
8: There's no better plumber to give it a crack.
6: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
7: No, I want a plumber.
9: Advertise with MediaWorks. New Zealand listens to us.
10: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो.
11: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है. सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
12: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz.
13: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
14: मैं ड्रीम डायरी की बात करती हूँ तो आपको बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि ड्रीम डायरी में आपका सवाल आया है कि आपने ड्रीम किया अबाउट व्हीकल्स. अब व्हीकल कौन सा व्हीकल है पता नहीं, बट जो भी है, लेकिन एक व्हीकल एक्चुअली बताता है कि कितने इन्फ्लुएंशियल हैं आप और आपकी पर्सनैलिटी में क्या प्रोग्रेस आ रही है सिचुएशन के साथ साथ. किस टाइप का व्हीकल है आपका एटीट्यूड, उससे पता चलता है. आपकी अप्रोच टू लाइफ सिचुएशन पता चलता है. और जो लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, दिखता है कि गाड़ी ड्राइव करते हुए आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में भी पता चलता है. एंड यू हैव यू नो लाइक बीन अ गाइड एज वेल टू पीपल. जो खासतौर पर गाड़ी राइड करते हुए दिखते हैं, ड्राइव करते हुए दिखते हैं, उनकी पर्सनालिटी दिखाई देती है कि वो कितने इन्फ्लुएंशियल बन जाते हैं. कुछ व्हीकल्स जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं साइकोलॉजिकल स्टाइल और साथ साथ कभी कभी जैसे आप कुछ गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, कुछ फियर्स को आप अवॉइड करना चाहते हैं. कुछ चीप या रन डाउन व्हीकल्स अगर आपने उनको ड्रीम किया है तो लगता है कि आप वनरेबल हैं और या फिर आपके रिसोर्सेज में कुछ कहीं कहीं कमी आ रही है. अगर एक्सपेंसिव पावरफुल व्हीकल्स को आप देखते हैं तो एक इफ़ेक्टिवनेस, एक डायरेक्शन आपको मिलती है एंड यू आर अनस्टॉपेबल टूवर्ड्स योर ड्रीम. ऐसा होता है, ऐसा आई एम वेरी श्योर, क्योंकि मैं आई यूज़ टू ड्रीम अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ कार एंड देन फाइनली व्हेन आई मैनेज टू गेट इट आई सेड ये मैंने ड्रीम की थी गाड़ी और ये मुझे गाड़ी मिल गई. एंड इट्स लाइक अ लग्जरी कार, यू कैन कॉल इट. बट यस, मतलब ये मैनिफेस्ट नहीं कहूँगी मैं, बट आई कैन से दैट हाँ, ये कभी कभी ऐसे ड्रीम ना ट्रू हो जाते हैं. तो आई रिमेंबर दैट एंड आई थॉट आज इस बारे में मैं डेफिनेटली आपके साथ बात करूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ मैं शेयर कर सकती हूँ। चलिए एक ऐसे गाने की तरफ चलते हैं जो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत दिनों बाद आप इसे शायद सुन पा रहे हैं। गाना अमेजिंग है और गाया भी अमेजिंग अमेजिंग लोगों ने है, यानी कि इसे गाया है आतिफ असलम ने एंड आलिशा चुनॉय ने। अब गाना आई एम वेरी श्योर जो आतिफ असलम के फैंस हैं समझ ही गए होंगे।
13: दिल

ये पर्टिकुलर फिल्म ऐसी थी जो कि मैं कह सकती हूँ एक फिल्म से इंस्पायर हुई थी, स्लीपिंग विद द एनिमी, और उसके ऊपर इतनी सारी फिल्में बनी थी, बहुत सारी फिल्में थी, बहुत सारी फिल्म जो थी लोगों ने उसको बहुत अच्छी तरह यू नो रिलेट भी कर पा रहे थे, और आई थिंक फिल्म वॉज अ हिट. एंड वेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी, इट इज़ याराना ऑफ 1995, जिसमें माधुरी दीक्षित थी एंड राज बब्बर जी इसमें एक नेगेटिव रोल अदा कर रहे थे. एंड आई एम श्योर इस फिल्म में ऋषि कपूर थे उनके साथ में. तो गाना काफ़ी खूबसूरत है इस फिल्म के, बहुत सारे गाने बहुत अच्छे थे, लेकिन उनमें से एक सॉन्ग था जो काफ़ी डिफरेंट था, बट स्टिल इट वॉज़ ब्यूटिफुल. सुनते हैं.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू, जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
6: Okay, listen up team. Don't forget your bloody important meeting this week to get blood or plasma. If you want to get involved, go to nzblood.co.nz, book, and then send that bloody important meeting invite. Give blood, give plasma, save lives.
7: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla live.
8: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian. Sorry about that. But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
9: Bunnings has lowest prices nailed.
10: Like CRC 420mm 556 multipurpose, just $9.57. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Bunnings
11: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
12: As a baby, I was burnt in hot water.
13: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
14: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
15: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
0: Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
16: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. Teachers here say they're battling anti-Semitic, racist and misogynistic views from students in the classroom. The PPTA has found young men in particular are being driven into extreme online groups. President Chris Abercrombie says educators are crying out for help.
17: Our teachers want this now, so we're taking the bull by the horns and looking at creating the guidelines ourselves. We've also been working with the Online Safety Coalition to try to get some more regulation.
16: A warning that DIY prostate screening is ineffective without medical guidance. Peter Dickens from the Prostate Cancer Foundation worries reliance on at-home PSA test results will lead to missed treatment opportunities.
18: It's the second leading cause of cancer death in men in New Zealand, and we estimate that around 42,000 men are living with a prostate cancer diagnosis.
16: National is promising to support households move to solar power if re-elected. It would introduce a home energy fund to offer low-interest, long-term loans that are repaid through rates. And the Greens want to overhaul the laws around conservation land. If elected, they'll scrap the government's ongoing reforms which allow for it to potentially be sold for development. In sport, Football First and Switzerland have beaten co-hosts Canada 2-1 to top Group B at the FIFA World Cup. The Canadians finished second to also automatically qualify for the knockout rounds, and Scotland in a big match against Brazil will have the result of that at midday. Football updates brought to you by Hisense. And England are the first cricket team through to the T20 World Cup semi-finals after beating the West Indies by 38 runs at Lord's. The White Ferns need to beat England on the weekend for any chance to make it through.
0: Sports News. brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Ross Skill.
19: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस. शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.
20: सूचित किया जाता है कि भूरा जोकन लिमिटेड सुवा के स्वर्गीय जय नारायण जोकन की पत्नी रजनीश सेन, अंजनीश जयंत, मोहनीश और रोविन जोकन की माँ, हॉटन स्ट्रीट सुवा की भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोकन केला की मृत्यु हो गई है. अंतिम संस्कार आने वाले शनिवार को दोपहर 1 बजे वातुवाका सिमेट्री में किया जाएगा. ज़्यादा जानकारी के लिए 022-332-6843 पर आप संपर्क कर सकते हैं. सूचना दोबारा सुने, भूरा जोकन लिमिटेड सुवा के स्वर्गीय जय नारायण जोकन की पत्नी रजनीश सेन, अंजनीश जयंत, मोहनीश और रोविन जोकन की माँ, हॉटन स्ट्रीट सुवा फीजी के भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोकन क्योला की मृत्यु हो गई है. अंतिम संस्कार आने वाले शनिवार को दोपहर 1 बजे वातुवाका सिमेट्री में किया जाएगा. जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 022-332-6843 पर आप संपर्क कर सकते हैं. सूचित किया जाता है कि एलएसली के चंद्रा नायडू स्वर्गीय जी नायडू के पुत्र अविनेश नायडू और प्रिया रेड्डी के भाई सैमन स्ट्रीट ऑकलैंड के अरुणेश रामालू नायडू की मृत्यु हो गई है. अंतिम संस्कार आज दोपहर 2 बजे मैनकाओ मेमोरियल गार्डन में किया जाएगा. सहानुभूति के लिए आप 027-200-3343 पर संपर्क कर सकते हैं. एलएसली के चंद्र नायडू और स्वर्गीय जी नायडू के पुत्र अविनेश नायडू और प्रिया रेड्डी के भाई सैमन स्ट्रीट ऑकलैंड के अरुणेश रामालू नायडू की मृत्यु हो गई है. अंतिम संस्कार आज दोपहर 2 बजे मैनकाओ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा. सहानुभूति देने के लिए आप 027-200-3343 पर संपर्क कर सकते हैं.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम की तरफ अगर हम देखें तो दी हाइज ऑफ 17 ओवरनाइट टेम्परेचर ऑफ 9 आज का फोकस बताया जा रहा है और शावर्स एक्सपेक्टेड हैं. हैवी रेनफॉल दोपहर के समय भी पड़ सकती है. सनसेट 5:14 पे बताया गया.
0: माय टाइम विद कशिका ब्रॉट टू यू बाय कशिश फूड्स. ईट बेटर लिव बेटर.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन दिल थाम के बैठे क्योंकि आ रही है
3: माय टाइम विद कशिका.
1: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू. 25 जून का दिन है. 11:05 होने वाले हैं एज आई स्पीक और ऐसे में आपका साथ निभा रही हूँ मैं कशिका 12 बजे तक. और मेरी पूरी कोशिश है आपके साथ कई बातें शेयर करूँ. 6 वर्ड की स्टोरी भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. तो 5599 पे आप मुझे ज़रूर टेक्स्ट कर सकते हैं. कोई और बात, कोई और कुछ चल रहा है तो ज़रूर मुझे बताइए. वैसे अनफिल्टर्ड मैं आपके साथ साथ कुछ नए टॉपिक्स लेकर रुजबे एंड सैंडी आ चुके हैं. और ये एपिसोड है जहाँ एआई स्पेशलिस्ट दर्शित पांडे सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर जो है सरको के ये कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताने वाले हैं. 5599 पे टेक्स्ट करें अगर आप इनका पूरा ऑडियो सुनना चाहते हैं. ब्रेकफास्ट कैचअप आपको 5599 पे भी मिल सकता है बीएफ लिखने के बाद.
0: बचाओ क्या

0: Matter.
1: Eat better, live better. मैं अगर बच्चों की बात मैं अगर करूँ तो ना, कई बार बच्चों के टैंट्रम्स बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं. उन्हें देते कुछ है, उन्हें पसंद कुछ नहीं आता. अगर एक न्यूटेला का सैंडविच उन्हें पकड़ा देते हैं लंच बॉक्स में, वो खाते नहीं और वापस लौट कर आ जाते हैं. डिनर टेबल पर फिर एक बैटल होता है कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे ये नहीं खाना. फसी ईटिंग इसको बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज पिकी एंड सेलेक्टिव ईटिंग. इट्स वेरी कॉमन एंड इट्स वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एज वेल, जहाँ पर ये एक पेरेंटिंग का इशू बन जाता है. ये नहीं कह सकते बच्चे किस तरह से शेप अप कर रहे हैं पेरेंट्स, बट ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बच्चों की. एक रिसर्च के ज़रिए पता चला है कि जो फूड फसीनेस होती है बच्चों की ईटिंग हैबिट्स के साथ, वो शेप अप होती है बाय कमर्शियल इंटरेस्ट. अब कमर्शियल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जो वो लोग टीवी पर देखते हैं और उसके बाद वो उस चीज़ से इफ़ेक्ट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं. कभी कभी ऐसा भी होता है, बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंसेस उनकी होती हैं कि भाई मुझे तो अब ये बर्गर खाना है इस जगह का, सो एंड सो जगह का, वहीं के खाने बर्गर्स, वहीं के चिप्स खाने हैं. ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं होता है? ये इम्प्लीकेशन बच्चों के हेल्थ की तरफ बढ़ते हैं. कुछ टेंशंस बिटवीन पेरेंट्स एंड बच्चे, ये भी बढ़ता चला जाता है. और फिर आप उनको हार कर कहते हैं तुम कुछ तो खाओ और लेके चले जाते हैं. 30% तक के बच्चे होते हैं 2 to 6 ईयर ओल्ड जो फसी ईटर्स बन जाते हैं. एंड ये पीक होती है जब बच्चे 3 साल की उम्र के होते हैं. ये जो ओरिजिन होती है फसीनेस की, ये मुझे लगता है साल दर साल चली आती है. मगर आजकल की जो फूड कंपनीज हैं इस रिसर्च के ज़रिए इस पर कैपिटलाइज करते हैं और कोशिश करते हैं प्रोडक्ट्स को ऐसे मार्केट करने के लिए ताकि बच्चे उसको पसंद करें, अट्रैक्ट हों, और पेरेंट्स उसकी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं. सो एक पेरेंट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं इस चीज़ के लिए कि भाई इनको हेल्थी ईटिंग करनी है. और कंसर्न जो होने लग जाती है उनकी बढ़ने लग जाती है. कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है, ये नहीं खाना चाहिए, बर्गर बहुत अनहेल्थी होता है, लेकिन बच्चे हमें तो बर्गर ही खाना है. ऐसा होता है, ये इम्पॉसिबल चीज़ें कई बार होती हैं और कई बार ये फसी ईटिंग सिम्टम्स बन जाते हैं. सो ट्राई एंड सी इफ़ यू कैन कट डाउन देयर कमर्शियल इंटरेस्ट, यानी कि जब टेलीविज़न है या उनके स्क्रोलिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. बच्चे आजकल के बहुत जल्दी स्क्रोल करने लग जाते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू स्टार्ट मेकिंग देम अंडरस्टैंड जब वो छोटे से ही उम्र के हैं.
0: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Twitter. Six word story.
1: अगर मैं सिक्स वर्ड की स्टोरी कहूँ और कहूँ कि बीत कितना इजी बन गया है, मतलब आई फील नाउ दैट यू ऑल हैव बिकम प्रो ऑन ऑल दीज थिंग्स. सो बिग थैंक यू टू 1297 एंड 8323. ओके, आपने कुछ भेजे हैं डिटेल्स, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. अ क्राई रिंग्स आउट, लाइफ बिगिंस. अ क्राई रिंग्स आउट, life begins. Bachcha paida ho gaya and life begins. All right, this is nice. Head on a pillow, not sleeping. Head on a pillow, not sleeping. Neend nahi aa rahi hai, kya wajah hai bhai, kya soch rahe ho? Acha, thank you very much. Aapne ye baatein batayi, bahut hi acha laga. Kuch football ke updates bhi maine lekar aa rahi hu aapke liye. And something about एक ऐसा एक्टिव वोल्केनो जिसके बीच में हम रहते हैं, हमारे आसपास ही है. क्या है, क्या नहीं है, ये डिटेल्स बताती हूँ थोड़ी देर बाद. सुनते चले जाइए हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स रोवा ऐप के जरिए. अगर आप हमें सुन रहे हैं तो मैं कौशिक आपका साथ निभा रही हूँ 12 बजे तक.
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.
1: अगर मैं टेबल की बात करूं ऑफ फीफा वर्ल्ड कप तो मेक्सिको इज़ ऑन टॉप विद 6 points एंड साउथ कोरिया इज़ ऑन 3 points. और आज देखते हैं कि शेजिया क्या करते हैं. 1 बजे इनका मैच है अगेंस्ट मेक्सिको और साथ साथ साउथ अफ्रीका का भी आज मैच है दोपहर 1 बजे अगेंस्ट साउथ कोरिया. सो देखते हैं कि ये पॉइंट्स में आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं. लेकिन हाँ, हमारे साथ साथ आप जुड़े रहिएगा ये जानने के लिए कि अब आगे क्या होता है. और वैसे फुल टाइम में स्विट्ज़रलैंड एंड कनाडा में स्विट्ज़रलैंड की जीत हुई और बोस्निया और कतर के बीच में बोस्निया की जीत हुई.

0: Rashika.
1: Wow.
2: How?
1: Adbhut.
3: एक बात सुनकर कभी कभी थोड़ा सा डर लगता है, बट ये माउंट रुआपेहू के बारे में बताया जाता है कि मॉडर्न मॉनिटरिंग सिस्टम के अनुसार पता चल रहा है कि रुआपेहू में राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग चल रही है और कुछ इन्फॉर्मेशन के जरिए पता चलता है ये जब वोल्केनो इरप्ट हुआ था 1995 में. साइंटिस्ट का कहना है कि न्यूजीलैंड इज़ फार बेटर इक्विप्ड जहाँ ये डिटेक्ट कर सकते हैं, वार्निंग साइंस डिटेक्ट कर सकते हैं. एंड जो एक ड्रामेटिक 1995 का इरप्शन था उससे उसके बाद सो वॉल्केनिस का ये भी कहना है, क्लियर पिक्चर उनके सामने आ जाती है. एंड कई 30 ईयर्स से ये इसको ये प्लान करते जा रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया कि 24/7 ये मॉनिटरिंग सेंटर है जहाँ पर ऑन कॉल हैं ये वॉल्केनोलॉजिस्ट जो आपके लिए ऑन कॉल रहते हैं और बिल्कुल प्रिपेयर हैं फॉर ऑल द प्रोसीजर्स. साइंटिस्ट, सिविल डिफेंस, एमरजेंसी मैनेजर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स गैदर करे ओकाहनू में जहाँ पे उन्होंने मार्क किया 30 ईयर्स ऑफ इरप्शन. और फिर 30 ईयर्स उन्होंने कहा था कि ये नेटवर्क के जो स्पार्क्स थे, जो सेंसर्स थे, ये उस समय उस तरह से नहीं डिटेक्ट कर पा रहे थे, बट अभी इन्होंने इन सब चीज़ों से बहुत कुछ हासिल किया है और बहुत कुछ सीखा भी है. एंड दे आर वेरी स्मार्ट इन ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ. सो इट्स लाइकली टू बी इरप्टेड. उनका कहना ये है कि वी आर लकी दैट वी हैव गॉट द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड. और कहा यह जाता है कि इन 100-200 ईयर्स इस तरह से कभी कभी ये एक करवट लेता है, मगर बिगर इरप्शन जो होती हैं वह डरा नहीं रही हूँ. लेकिन कहा जा रहा है कि रुआपेहू इज़ वन ऑफ द एक्टिव वॉल्केनोज और एक डिसेंट चांस है कि एक इरप्शन का इट कुड हैपन. ओके, सो एवरी 50-100 ईयर्स इट हैपन्स. वी आर जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट सम थिंग्स विच कैन बी हैपनिंग कभी भी हो सकता है. इट्स स्टिल एन एक्टिव सिस्टम और ये हिस्ट्री में अभी तक नहीं आया. इट्स अ बिग वोल्केनो एंड स्टिल इट्स गॉट प्लेंटी ऑफ लाइफ इन इट.
4: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स.
5: When winter bites, Rebel delivers. Shop great deals on hoodies, sweats, jackets and vests built to keep you moving when it's cold. Plus, get 30% off all Huffa adult clothing. These winter deals and more are on now, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
6: Otara, oh yeah.
7: South Auckland's buses just became a lot better.
6: Grey South Road, now even greater.
7: With better bus routes, more frequent buses and more.
6: Weymouth Road, way better buses.
7: Search AT, Better South Auckland Buses for more.
8: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
9: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
10: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz.
11: It's the final days to get a massive 30 months interest-free store-wide at Big Save. Do you need a washing machine, dryer, fridge or dishwasher today? Big Save's big whiteware deals are on today. Get a Robinhood 6.5kg washing machine only $3.98 or a Samsung 310-litre fridge only $8.99. We have heaps of stock. Take it home today. Get New Zealand's best value whiteware from only $3.98. Must end Monday only at Big Save.

अब किस चीज़ को रेस्क्यू करें और किस चीज़ को हम यू नो रिसाइकल करें. वैसे देखा जाता है ना, कुछ हमारे वर्न आउट जो टी शर्ट्स होती हैं और उनको हम रीयूज़ करते हैं टॉवल्स की तरह, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और डोनेट भी करते हैं कुछ चैरिटी में है, बिल्कुल डेफिनेटली. लेकिन घर में हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम, जैसे हमें लगता है थोड़ा टूट रहा है या उसके ब्रिस्टल्स निकल रहे हैं, तो हम टूथब्रश जो होता है उसे फेंक देते हैं. लेकिन एक बात बताती हूँ, वो टूथब्रश जो होता है ना, वो कुछ टाइल के ग्राउट में घुस सकता है, कहीं ऐसी जगह घुस सकता है, जैसे कि प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स में हम उसको डेफिनेटली उनको क्लीन कर सकते हैं. और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बिल्कुल इस्तेमाल करने में समझ में नहीं आता क्या किया जाए, लेकिन बहुत आसान तरीके से हम इन चीज़ों को रिसाइकल कर सकते हैं. अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो आप मुझे 5599 पर ज़रूर टेक्स्ट कर सकते हैं.

तो चलिए फिर इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है गुरुवार, बृहस्पतिवार या वीरवार, जो भी इसे कहना चाहें आप। और अभी के लिए चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे आपसे फिर मैं मुलाकात करती हूँ। जाते जाते इतना ही कहना चाहती हूँ कि भाई, अपने लिए वक्त आपने निकाला या नहीं निकाला कुछ अपने कल के प्लानिंग में, कल की प्लानिंग से लेके संडे की प्लानिंग तक में थोड़ा सा अपने लिए समय ज़रूर निकालेगा, क्योंकि मैं आपकी रिमाइंडर क्लॉक आपको ये हमेशा बताती चली जाती हूँ कि टाइम इज़ मनी। एग्जैक्टली। चलो इसी नोट पर, दिस इज़ काशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी हम स्टूडियोज़। आपका साथ निभाने के लिए आ रहे हैं नन अदर दैन केतन, इनका साथ ज़रूर दीजिएगा। दिस इज़ काशिका वंस अगेन सेइंग बाय।